ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि। तदनुसार 13 जून 2026 सुबह के 5:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर पांच मिनट पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर बॉलीवुड की अपडेट्स और गानों के साथ लेकर आएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम सुनना मत भूलिएगा, प्ले इट कूल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और आपके साथ मैं जुड़ चुका हूँ आशुतोष, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और सुबह, शनिवार की सुबह हम आ चुके हैं और ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही है ना, इस मौसम को और भी खूबसूरत बना रही हैं। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और बिल्कुल आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में, क्योंकि हम जब कुछ सोचते हैं और कुछ हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे जो कठिन काम होता है उसको समझना, उसको जानना, उसको संभालना, वो होता है हमारा मन। और कहते भी हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, यानी कि जीत और हार का असली मैदान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच कैसी है ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। और यहीं से शुरू होती है मन को नियंत्रित करने की जो यात्रा होती है, और उसी यात्रा में हम उसको संभालते हैं, उसको बिल्कुल संजो के रखते हैं, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है। और

भी आपने गौर किया होगा कि सुबह उठते ही मन कभी उत्साहित हो जाता है तो कभी बिना कारण के ही उदास हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? मन बिल्कुल एक उस प्राणी की तरह होता है कि जो बिल्कुल एक विचार से दूसरे विचार पर लगातार छलांग लगाता चला जाता है। और आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भी हमारा मन अक्सर तीन जगह भटकता रहता है कि बीते हुए कल की चिंताओं में कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ गलतियाँ हुई जिनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, आने वाले कल की आशंका के बारे में भी हम बिल्कुल सोचते रहते हैं लगातार, जो कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं, और वर्तमान को भूल जाते हैं। मतलब जो जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उस पर ही हम फोकस नहीं करते हैं। और जब मन पर नियंत्रण नहीं होता है तो छोटी छोटी बातें भी तनाव बन जाती हैं, लेकिन जब मन नियंत्रित होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ भी अवसर में बदलने लगती हैं। और ऐसा लगता है कि यस, ये बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और इसको मैं बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ। और आपको भी यही करना है, बस अपने मन को कंट्रोल में रखना है और बस आज के दिन में जिएंगे तो, वर्तमान में जिएंगे तो आपको हर चीज हासिल होगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आशुतोष के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं उसी सकारात्मक सोच की, जिसके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और बिल्कुल इस सोच का एक जादू होता है। और सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में समस्या नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि समस्याओं के बावजूद उम्मीद बनाए रखना। और मान लीजिए कि बारिश हो रही है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया, और वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि वाह क्या मौसम है, बड़ा सुहाना मौसम है और आज तो दिन ही बन गया। तो बस फर्क यही है कि बारिश वही है। और बिल्कुल जीवन में उनकी सोच का जो फर्क होता है ना, वही एक दूसरे से हमें अलग करता है। और इस सोच से हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे अंदर ही है, हमारे कंट्रोल में है पूरा। और घटनाएँ हमें प्रभावित कम करती हैं, लेकिन उनके बारे में हमारी सोच हमें ज़्यादा प्रभावित करती है। तो हमें उस सोच को अच्छा रखना है और मन को नियंत्रित बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। और बिल्कुल अब एक बिल्कुल ऐसे सवाल आता है कि हम उसको कैसे अपने बेनिफिट में ला सकते हैं। तो बिल्कुल इससे क्या होता है कि तनाव में आपकी बहुत ज़्यादा कमी आती है। और जब आप हम हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ना, तो मन शांत होकर सोचता है और तनाव बिल्कुल अपने आप ही कम होने लगता है। और बिल्कुल शांत मन एक सही दिशा हमें दिखाता है, और साथ ही साथ हमारे रिश्तों को बहुत बेहतर बनाता है। हमें गुस्सा कम आता है और शब्द संयमित होते हैं, और बिल्कुल उससे हमारे जो रिलेशन होते हैं ना, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया ना, उसने पूरी दुनिया को बिल्कुल जीत लिया, क्योंकि उसको जो चुनौतियां होती हैं ना, बिल्कुल डरा नहीं सकती, उसको डिगा नहीं सकती। वो हमेशा अपने जो राह पर है, लगातार निरंतर चलता चला जाता है। और सकारात्मक सोच जो होती है, लोगों में एक तनाव कम करती है और बिल्कुल उनको एक अलग ही लेवल की शक्ति प्रदान करती है। तो बिल्कुल आपको भी इस सोच के साथ आगे बढ़ना है, इस दिन को बहुत अच्छा बनाना है। क्योंकि जब दिन अच्छा होता है ना, तो हमारे आने वाले जो दिन होते हैं ना, बहुत अच्छे होने लगते हैं, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने लगते हैं, और हम एक पॉजिटिव इंसान के रूप में उभरने लगते हैं। और सभी लोग हमसे प्यार करने लगते हैं, हमसे मोहब्बत करने लगते हैं, और आपको दुनिया बहुत हसीन लगेगी। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए सुप्रभात आशुतोष के साथ।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

और अपने आप से एक सकारात्मक संवाद आपको करना है कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं हर परिस्थिति का सामना बिल्कुल कर सकता हूँ बिना किसी रुकावट के। तो जीवन का सबसे बड़ी जीत यही है कि हम किसी को हराएंगे नहीं, लेकिन बल्कि खुद को, अपने मन को जीतेंगे और उसको साधेंगे। और मन हमारा जब शांत होता है तो विचार बिल्कुल हमारे स्पष्ट हो जाते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तो रास्ते दिखने लगते हैं, और जब रास्ते दिखने लगते हैं तो मंजिल दूर नहीं लगती। तो बिल्कुल सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है, और ये अभ्यास हर सुबह एक नए विचार की शुरुआत के साथ हो सकता है। और इसी सकारात्मक संदेश के साथ बिल्कुल मैं आपसे अनुमति लेता हूं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम समर्पण। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय, जहां पर परीक्षित जी सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं कुछ। क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसको समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं, फिर संहार करते हैं? अरे वो तो अनंत शक्ति परमात्मा है, तो उनमें तो अनंत शक्तियां हैं श्री कृष्ण में, तो किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर वो अपने आप को ही खिलौने बनाते हैं और अपने आप से ही खेलते हैं? फिर बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को ही कैसे बनाते हैं, और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा भी देते हैं? भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं, अचिंत्य हैं, चिंतन के परे हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लीलाओं का रहस्य समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान तो अकेले ही हैं। उन्हें बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ धारण करना पड़ता है, या फिर वो अनेक अवतार ग्रहण करते हैं और फिर प्रकृति के गुणों को धारण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित जी कह रहे हैं कि देखिए, आप तो शब्द ब्रह्म यानी वेदों के और ब्रह्म तत्व यानी भगवान का जो तत्व है, दोनों को ही अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, क्योंकि जब महाराज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी को

अपने गुरुदेव के रूप में ग्रहण किया है तो प्रश्न तो वो उन्हीं से ही पूछेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हे गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर आप भव रोग के वैद्य भी हैं। ये जो भव रोग है ये कैसे कटेगा, इसका जो चिकित्सक है ये बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप तो इसके चिकित्सक भी हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भव रोग क्या है, और ना केवल जानते हैं आप इसे हटा भी सकते हैं। इसीलिए आपने मेरे हृदय को समझकर उसकी उपयुक्त चिकित्सा करने में अपने आप को लगा दिया है, आप मेरे चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। तो आपने जब गोविंद के गुणों का वर्णन किया, बस उस वर्णन को सुनते ही मेरे हृदय का अंधकार दूर हो गया और मैं ये समझ गया कि जीव का एकमात्र कर्तव्य है श्री कृष्ण लीला कथा का श्रवण और कीर्तन, और ये आपके उपदेश से मुझे समझ आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि श्री भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे उस सृष्टि का पालन करते हैं और कैसे संहार ही कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो अनंत अचिंत शक्ति के आश्रय हैं। श्वेता श्वेतरोपनिषद में कहा गया है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। ये शक्ति भगवान की अपनी स्वाभाविक ही शक्ति है, उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ा है, किसी ने उन्हें दिया नहीं है, इसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, ये तो उनके स्वरूप में ही है अनंत शक्तियां। और उनमें भी जो दो शक्तियां हैं जिनको लेकर भगवान सृष्टि का खेल खेलते हैं, संसार लीला खेलते हैं, वो है उनकी माया शक्ति, और जिन जीवों पर कृपा करते हैं, जीवों के साथ संसार लीला खेलते हैं, वो है जीव शक्ति, और जो उनकी मुख्य शक्ति है जिसका सहारा लेकर वो अपने नित्य सिद्ध परिकरों के साथ खेलते हैं, अपने नित्य सिद्ध धाम में, गोलोक धाम में, गोकुल धाम में, तो वो है उनकी स्वरूप शक्ति यानी चित्त शक्ति। तो नित्य धाम में जो श्याम सुंदर अपनी मधुर लीलाओं में निमग्न होते हैं, गोपियों के साथ, श्री राधिका के साथ, नंद बाबा, यशोदा मैया और भी उनके जितने भी परिकर हैं उनके साथ, वो सब उनकी चित्त शक्ति से ही उत्पन्न हैं, उनकी स्वरूप शक्ति से। और ब्रह्मांड में जो निर्माण है, ब्रह्मांड का पालन है, ब्रह्मांड का संहार है, ये सब उनकी माया शक्ति का खेल है ना। तो जब भगवान अपनी माया शक्ति के साथ खेलते हैं, तब प्रकृति में तीन गुण विक्षुब्ध हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो साम्य अवस्था में रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। जैसे ही भगवान पुरुष अवतार के रूप में इनको देखते हैं तो इनमें क्षोभ आ जाता है, ये विचलित हो जाते हैं, इनके विचलन से महत्त्व आदि की सृष्टि होती है, और फिर ये ब्रह्मा मरीचि आदि के साथ माया शक्ति को लेकर खेलते हैं, यानी तब ये ब्रह्मा मरीचि आदि को माया शक्ति के साथ खिलाते हैं, तब स्थूल प्रपंच की सृष्टि होती है। तो भगवान की ये जो अद्भुत क्रीड़ा है, इसका तत्व जब कोई हृदंगम नहीं कर पाता है, तो वो अनेक मत की सृष्टि कर लेता है, क्योंकि वो भक्तिहीन होता है, शास्त्र के अर्थों को वो जानता ही नहीं है, तो अनेक प्रकार के मत अपने दिमाग से वो बना लेता है और तब ऐसा ही उपदेश देता है, और जो जीव हैं, जो भटक रहे हैं, उनकी तत्व दृष्टि में बाधा पैदा कर देता है, वो भी कभी नहीं देख पाते हैं। तो महाराज परीक्षित बहुत अपने आप को दीनता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं अपने गुरुदेव के समक्ष, और कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं तो क्या ही हूं, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं, और मुझमें भक्ति भी नहीं है, शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, तो मैं इस माइक क्रीड़ा का तत्व भला क्या समझूंगा। तो भगवान पुरुष रूप में प्रकृति के प्रति ईक्षण करते हैं,
प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और महत्त्व आदि की सृष्टि होती है। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि अनेक रूप वो स्वयं धारण करते हैं, किसी रूप में प्रकृति का सत्व गुण, तो किसी रूप में प्रकृति का रजोगुण, तो किसी में प्रकृति का तमोगुण लेकर के वो खेलते हैं। तो हे गुरुदेव, इस खेल का असली तत्व ना जान करके मैं संदेह के सागर में पूरी तरह डूब गया हूँ। आप तो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में ही पूरी तरह से निष्णात हैं, दोनों ही तत्वों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपके अलावा इस संदेह को दूर करने का उपयुक्त पात्र भला कौन है? आप ही हैं। तो महाराज परीक्षित शिव भगवान की चित्त शक्ति की लीला को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इसीलिए वो पहले भगवान की माया शक्ति की लीला के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। वस्तुतः तो वो भगवान की जो स्वरूप शक्ति के साथ भगवान की क्रीड़ा है, यानी ब्रज गोपिकाएं उनके साथ जो उनकी क्रीड़ा है, या जो उनके परिकर हैं मधुमंगल आदि सखागण, उनके साथ जैसे भगवान खेलते हैं, आनंदित होते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, वो रसोवे सह हैं, रस का आस्वादन करते हैं, रस का परिवेशन करते हैं, भक्तों को रस का आस्वादन कराते हैं, तो वो है रस भक्ति। तो रस भक्ति में अगर कोई सीधा प्रवेश करना चाहे तो वो फिर मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि पहले उसे भगवत तत्व पता होना चाहिए, फिर उसे माया शक्ति क्या है भगवान की ये भी पता होना चाहिए, माया क्या करती है ये भी पता होना चाहिए, हम क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि जैसा कि देखने में आता है, लोग सीधे ही भगवान की रस कथाओं में प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान श्री राधिका के साथ निकुंज में जो लीला कर रहे हैं, तो उस लीला का तत्व तो बड़ा भारी तत्व है, उसे ना जान करके वो प्राकृतिक नायक नायिका की तरह उसका श्रवण करते हैं और फिर हृदय में दोष उत्पन्न हो जाता है भगवान के प्रति और वो नरक में जा गिरते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो देखा जाए, जाननी जो चीज आवश्यक है वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता को तत्वतः जानना जरूरी है। भगवान ने क्या कहा है हम जीवों के लिए, भगवान कैसे हैं, ये प्रकृति क्या है, काल कर्म योग भक्ति क्या है, सिद्धि क्या है, बहुत कुछ भगवान ने बताया है, ये तीन गुण क्या हैं, सब कुछ बताया है भगवान ने। ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये सब जानते नहीं हैं और सीधा ही कहीं सुनते हैं राधे राधे राधे राधे, तो हम सोचते हैं हाँ हे राधे तुम ही सब कुछ हो, तुम मेरी हो, तुम ये हो, तुम मेरी स्वामिनी हो। कुछ नहीं जाना, ना गीता जाना, ना भागवत जी को समझा, ना भगवत तत्व समझ में आया, बस एक भाव को लेकर के दौड़ रहे हैं, तो क्या हाथ लगेगा। तो लीला की माधुरी सौंदर्य भगवत तत्व का गहन अनुभव कुछ हाथ नहीं लगेगा, सब कुछ ऊपरी तौर पर होता रहेगा लेकिन अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवत तत्व को जानने के लिए बहुत ज्यादा सदाचार की आवश्यकता होती है, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होती है, महत कृपा की आवश्यकता होती है, तब भगवान की स्वरूप शक्ति की लीला समझ में आएगी। तो इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज ही भक्ति प्रारंभ की, आज ही गले में हरिनाम की माला लटकाई और आज ही शुरू हो गए भगवान की निकुंज लीलाओं के बारे में जानना। आज ही जानेंगे, आज ही हम भी राधा रानी की दासी हैं ये भाव लेकर के आज ही प्रारंभ हो गए, तो एक ना एक दिन गिरेंगे, एक ना एक दिन गिरेंगे। क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान की करुणा क्या है, भगवान कितने पुरुष अवतार लेते हैं, कैसे सृष्टि करते हैं और कैसे पालन कर रहे हैं और कैसे संहार होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। कैसे कणकण में भगवान है और कैसे असीम होते हुए भी ससीम है, भगवान में ये विरुद्ध धर्म कैसे हैं, ये सब जानना तो बहुत जरूरी है। तो ये सब ना जान करके अगर हम सीधा निकुंज लीला क्या है उसे जानना चाहेंगे,
तो हम

0: अपने आप को ठग लेंगे, है ना। इसीलिए देखिए महाराज परीक्षित बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से ये नहीं पूछा कि भगवान की चित शक्ति की लीला बताइए, भगवान जो अपनी स्वरूप शक्ति के साथ खेलते हैं शिवृंदावन धाम में, हमें रास लीला बताइए, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। वो पहले जानना चाहते हैं कि भगवान तत्वतः क्या हैं, कैसे लीला करते हैं, कैसे एक ही भगवान एक ही हैं, चूंकि वो अखंड अद्वय ज्ञान तत्व हैं ठाकुर जी, एक हैं वो दो नहीं हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत जी कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, है ना, और वही अनेक रूपों में आ जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आप मेरी ही पूजा करते हैं क्योंकि मुझसे ही ये सब कुछ प्रकट है, तथापि आप मुझे प्राप्त नहीं करेंगे उनकी पूजा करके, क्यों, क्योंकि आप अविधि पूर्वकम पूजा कर रहे हैं, अर्थात पानी जड़ में डालना चाहिए और हम फूलों में डाल रहे हैं, फलों में डाल रहे हैं, पत्तों में डाल रहे हैं, हम उनकी चकमक चकमक से प्रभावित हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब प्रकट कहाँ से हुए। तो प्रकट तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ही है सब कुछ सब कोई। तो इसीलिए एक भगवान कैसे अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक पुरुषावतार धारण करते हैं, अनेक पुरुषावतारों में वो क्या क्या करते हैं, कैसे वो विराट पुरुष का रूप भी धारण करते हैं, कैसे हर चीज वही है, ये सब तो जानना आवश्यक है, तब तो कहीं भगवान की स्वरूप शक्ति समझ आएगी। तो इसलिए माया शक्ति की लीला के बारे में प्रश्न किया है हमारे महाराज परीक्षित जी ने, और सुखदेव गोस्वामी जी ने जब उत्तर देना प्रारंभ किया है तो पहले अपने ईष्ट के चरणों में नमन किया है। तो किस प्रकार से नमन किया है, क्या प्रार्थनाएं की हैं सुखदेव गोस्वामी जी ने, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले याद कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जिनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हमने पिछली बार इन प्रार्थनाओं को शामिल किया था अपने कार्यक्रम में, जहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ने 12वें श्लोक में कहा, नमः परस्मये पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनामंतर भवाय अनुपलक्ष वर्तमने। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला के लिए सतो रजो और तमो गुण रूपी तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं और जिनकी महिमा भी अनंत है। हमने पिछली दफा चर्चा की थी कि भगवान ही

तीन गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, है ना। यही समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परमात्मा के रूप में हमें देख रहे हैं, साक्षी हैं, अनुमंता हैं, अनुमति दे रहे हैं, अनुमति प्रदायक हैं। और जब कोई भजन करता है भगवान का, तो फिर भक्त के हृदय में उनके अभीष्ट ही आकर विराजमान हो जाते हैं। तो इनको कैसे प्राप्त किया जाए, इनका स्वरूप क्या है, ठाकुर जी कैसे हैं? अगर कोई अपने दिमाग से चिंतन करने बैठे तो वो चिंतन कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका स्वरूप तो शास्त्र बताते हैं, और शास्त्र भी समझना सबके बस की बात नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? वही उपाय है जो परीक्षित जी ने किया। उन्होंने श्री सुखदेव जी के चरण की शरण ग्रहण की। तो जीव को ऐसे ही किसी तत्वज्ञानी महात्मा के चरणों की शरण ग्रहण करनी होगी, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, यानी जो शास्त्रों के मर्म को जानते हो, और जो भगवत अनुभव में कुशल हो, भगवत अनुभव भी उनको होता हो। ऐसा जो महान भक्त है, वही जीव का कल्याण कर सकता है, वही सब बता सकता है, क्योंकि उसी के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, प्रकट रहते हैं, और उसको माध्यम बनाकर ही भगवान अपनी उपलब्धि का मार्ग बताते हैं। और फिर दूसरा श्लोक भी हमने आस्वादन किया था, एक बार फिर से ये श्लोक आपके लिए प्रस्तुत है, जहां सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, भूयो नमः सद्वृजिन अच्छिदे असताम संभावाया अखिल सत्वमूर्तये पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिता नामानु मृग्यदाशुषे। 13वें श्लोक में कहा कि हम बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तुओं का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। आहा, कितने प्यारे हैं भगवान। देखिए, लोग भगवान पर आरोप लगा देते हैं, ये भगवान ने क्यों नहीं किया, अगर इतना ही दुख देना था तो हमें संसार में क्यों लेकर के आए, अरे उसे सुखी रखा है, हमें दुखी रखा हुआ है। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने बारंबार कहा है कि अगर आपको शाश्वत सुख और आनंद चाहिए तो भगवत प्रेम प्राप्त कीजिए। माया में आपको ये आनंद मिलेगा नहीं, क्योंकि माया की सृष्टि की मैंने और माइक वस्तुओं का विनाश भी मैं कर देता हूं, यह होगा ही। तो जिस भी माइक वस्तु से हम दिल लगा रहे हैं वो तो एक ना एक दिन जानी ही है, वो तो हमेशा के लिए आई ही नहीं है। जीव हमेशा के लिए विद्यमान रहता है, क्योंकि भगवान का शाश्वत अंश है। तो दुख कैसे मिटेंगे? दुख मिटेंगे भगवान के चरणों की शरण लेने से। इसीलिए भगवान अपने शरणागत भक्तों के समस्त दुखों को मिटा देते हैं, वो उनका दुख देख नहीं पाते। भगवान का कार्य ही यही है कि भक्तों को संतुष्ट किया जाए। तो भगवान अपने प्रेम का दान करते हैं। अगर कोई कहे कि मैं तो भगवान से बहुत प्रेम करता हूं, और उसने कह दिया, और बाकी सारा समय तो हम देख रहे हैं कि कहीं से तो ना वो भगवान के लिए आंसू बहाता है, ना व्याकुल है, ना भगवान की कथाओं को सुनता है, ना उनकी पूजा पाठ करता है, ना उनका ध्यान करता है, कोई क्रिया तो है ही नहीं, तो प्रेम कैसे हो गया? अरे इस संसार में भी अगर हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो कितनी क्रियाएं करते हैं, कितना उसकी चापलूसी करते हैं, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर के जाते हैं, उसके सुख में दुख में साथ देते हैं, क्या नहीं करते हैं हम। ये भी एक मिशन होता है। तो हम जब इस संसार में किसी से प्रेम चाहते हैं और किसी को प्रेम करना चाहते हैं,
तो उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, है ना। और हम यहां कह देते हैं हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु भगवान का भाव ही हमें नहीं पता होता, ना हम गीता भागवत जान पाते, ना हमारी कोई रुचि बनती श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है, श्रीमद् भागवत ही क्या वस्तु है, इन सबको जानने की कोई रुचि नहीं बनती है। ना हम भगवान की पूजा करते हैं, ना उनका नाम लेते हैं, ना उनकी कथाओं को श्रवण करने में हमारी रुचि है, रुचि ही नहीं है। और हम कह रहे हैं हम तो बहुत प्रेम करते हैं, तो ये कैसा प्रेम है। तो वास्तव में सत्य यह है कि प्रेम हम भगवान से कर नहीं सकते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई मुझे पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, सुबह उठ रहा है, स्नान कर रहा है, मंगल आरती कर रहा है, ध्यान कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, हरिनाम का जाप कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उत्कंठा युक्त कार्य कर रहा है, उत्कंठा से युक्त होकर के, व्याकुलता से युक्त होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है, तो भगवान उस चेष्टा से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपनी आह्लादनी शक्ति की वृत्ति प्रेम भगवान उसके हृदय में डाल देते हैं। तो भगवान ही अपने प्रेम का दान करते हैं। हम कभी भी भगवान से अपने आप प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम तो भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, भगवत प्रेम। और फिर जो दुष्ट हैं, जो बहुत ही दुष्टता करते हैं, असुर, तो कहीं असुर बढ़ते ना जाएं, कहीं असुर सब कुछ समाप्त ना कर दें, तो भगवान उनको मुक्ति दे देते हैं उनको मार करके। जब भगवान उनको मारते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। कौन सी मुक्ति मिलती है? वही जो निर्विशेष ज्योति का जो भजन करते हैं, भगवान की शारीरिक अंग कांति का जो भजन करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में समाना चाहते हैं, वो जो लोक है ज्योति का लोक, वहीं ये लोग भी चले जाते हैं। तो सांसारिक बढ़ती को रोक करके भगवान उन्हें मुक्ति दे देते हैं। चलो भाई, तुम बार बार आओगे इस संसार में, बार बार उत्पात पैदा करोगे, चलो आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं जाओ उसी ज्योति लोक में, वहां स्वरूप का जो आनंद है, यानी भगवान की ही तो अंग की प्रभा है, वो तो आनंद से भरपूर है, तो उस सत्तात्मक आनंद का भोग कर लो, जाओ, अब तुम्हें आना जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें मुक्ति मिल गई। और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, उन्हें भी उनकी अभीष्ट वस्तु का दान देते हैं। देखिए, प्रेम का दान देते हैं भक्तों को, जो दुष्ट हैं उनकी सांसारिक बढ़ती को रोकते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो राधा गोविंद के चरण चाहिए, हम तो हे राधा गोविंद आपकी सेवा को चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, आपकी सेवा ही चाहिए, तो भगवान उन्हें भी उनकी अभीष्ट वस्तु का दान देते हैं। यानी भगवान की कृपा से जीते जी उनको भगवत लीलाएं स्फुरित होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब शरीर छूटता है तो भगवान उन्हें अपनी ही पार्षद का स्वरूप प्रदान करते हैं, ऐसा शरीर जो आनंद का बना होता है, आनंदमय शरीर, और उस आनंदमय शरीर को प्राप्त करके वो भगवान की सेवा को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया ही गया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम, जहां जाकर कोई वापस नहीं आता है, वो आनंदमय धाम मेरा है, परम धाम, तो उस धाम को प्रदान करते हैं और उस धाम में सेवा को प्रदान करते हैं, उस धाम में अपने जैसा रूप भी प्रदान करते हैं, अपने जैसा ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं, अपना सामिप्य भी प्रदान करते हैं। तो भगवान किसी से भी पक्षपात नहीं करते, क्योंकि सच में चर अचर सब प्राणी तो उनसे ही प्रकट हैं, तो सबका ध्यान उन्हीं को रखना है। तो भगवान बड़े ही कृपालु हैं, जो जैसा उन्हें चाहता है
वो उसे वैसा ही देते हैं। जो उनसे दूर जाना चाहता है, माया में मग्न होना चाहता है, तो माइक वस्तुएं प्रदान करते हैं, ठीक है इसमें मग्न हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए माइक संसार भी बना डाला है। तो जो जैसा चाहता है भगवान उसे वैसी ही गति प्रदान करते हैं, है ना। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।

ये थी कृष्ण प्रेमधारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

गुड मॉर्निंग। जी हाँ, ये है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और चैनल है आपका अपना AIR जी, आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और मैं हूँ आपके साथ सैटरडे की मॉर्निंग में संजीव श्रीवास्तव संचो। बहुत ही प्यारी सी मुलाकात आज आपसे रहेगी पूरे घंटे, और फिर मुलाकात होगी 9 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने में। लेकिन फिलहाल बहुत ही प्यारी सी बात के साथ आज के कार्यक्रम का करते हैं शुभारंभ। बिल्कुल जी, दौलत और ओहदे इंसान को क्षणिक तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा व्यवहार इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है ना? सच बात कही ना मैंने? जी, इसलिए हमेशा इंसानियत को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। प्रायोरिटी में क्या चीज़ शामिल है क्या नहीं, ये हमें तय करना खुद होगा। फिलहाल एक बहुत ही प्यारे से वंदन के साथ उस परम सत्ता को जिसने हम सबको रचा।

जी हाँ, यह आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। वक्त हो गया है 7:12, बिल्कुल जी, और 13वें मिनट की तरफ सेकंड की सुई लगातार दौड़ रही है स्टूडियो में। बाहर मौसम बहुत ही सुहाना है, हालांकि ये जो ज़बरदस्त गर्मी का मौसम होना चाहिए था इस वक्त जून में, कहते हैं तपती दोपहरी, लेकिन जो लगातार लुका छिपी हो रही है मौसम की, वो एक तरह से हम फिलहाल सोचें तो हमें लगता है कि सुखद है, लेकिन सही मायने में देखें तो ये एक प्रकृति के बदलाव को भी दर्शाता है कि जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा गर्मी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आशाएं रखते हैं, उस वक्त मौसम में ठंडक है। आपको सिर्फ पंखे में भी सोना जो है वो चादर ओढ़ के सोना पड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रकृति का जो रूप है वो चेंज हो रहा है, और पर्यावरण के लिए ये उचित नहीं है कि जब जो मौसम आए हम उस मौसम में उसका पूरा आनंद लें, और प्रकृति उसी मौसम के साथ हमें प्रकृति को स्वागत करना चाहिए भी। जी, आज 13 जून है, और 13 जून के साथ 2026 का ये वर्ष है। अगर हम अपने ग्रेगोरी कैलेंडर की बात करें तो 164वां दिन है, और अभी इस वर्ष में 201 दिन शेष हैं, और आज भी अगर हम

बात करते हैं किसकी की, अगर आज हम बात करते हैं इतिहास की, तो हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ें, कोई ना कोई घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं। बहुत सारे विशेष व्यक्तित्व किसी ने हर दिन जन्म लेते हैं और हर दिन हम हमारे बीच से हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो कुछ ऐसा करके जाते हैं कि उनका नाम आज भी हमारे जहन में और इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाता है। 1940 में, 1940 में, सब जानते हैं कि स्वतंत्रता को हमने इतनी आसानी से नहीं पाया। इसके पीछे हजारों लाखों लोगों का बलिदान है, तब हम आज स्वतंत्र देश में, अपने इस खुले भारत में सांस लेते हैं। 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई थी आज के दिन। इसके अलावा अगर हम 1944 की बात करें तो ऐसी भारतीय महिला तीरंदाज का आज के दिन जन्म हुआ जिन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में अपना नाम रोशन किया। उनका नाम है दीपिका कुमारी, हम उनकी चर्चा जरूर करेंगे। और प्रेम धवन साहब जी, हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार, 1923 में आपका भी जन्म हुआ। इसके अलावा 1999 में मेजर मनोज तलवार भारतीय सेना के जावान सैनिकों में से एक रहे और आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथ ही भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमरकर 1967 में आज के दिन आज उनकी भी पुण्यतिथि, हम उनको भी नमन करते हैं। 2016 में मुद्रा राक्षस भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार, उनका आज के दिन निधन हुआ, हम उनको भी नमन करेंगे। तो कार्यक्रम चलता रहेगा और आपको हम सुनाएंगे साथ ही बहुत ही प्यारे प्यारे से नगमे। तो फिलहाल एक और बहुत खूबसूरत संगीत आपके लिए, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

जी हाँ बिल्कुल, हर तरह से जैसे सांसों को जरूरत होती है अपने जीवन की, इसी तरह से हमारे इस शरीर को भी जरूरत होती है योग की। धन संपदा अर्जित करने का उद्देश्य, आनंदमयी और आरामदायक जीवन प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, वैसे ही योग भी एक प्रकार से जीवन की एक संपत्ति है, क्योंकि ये पूर्ण आराम की स्थिति लाता है। वास्तव में योग मानव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। योग हमें तनाव मुक्त चिंता रहित जीवन जीने के उपाय बताता है, ऐसी तकनीकें देता है जो हमें सिर्फ ना सिर्फ मन से बल्कि तन से भी स्वस्थ रखती हैं। इसलिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और योग करते रहिए।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर

जहाँ ये आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सैटरडे की इस मॉर्निंग को आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संजू। वक्त हो गया 7:22 पूरे हो चुके हैं भाई, 23वें मिनट की तरफ सेकंड की सुई दौड़ रही है। लगातार वक्त की बात मैं करता हूं क्योंकि वक्त अगर आपके हाथ से निकल गया, फिसल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज एक बहुत ही खास दिवस है जिसकी हम आपसे बात करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। जी हाँ बिल्कुल, यह है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हर साल 13 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों का उत्सव मनाना, उनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को रोकना और इस अनुवांशिक स्थिति के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना। अक्सर एल्बिनिज्म से ग्रस्त लोगों के साथ समाज में कई बार भेदभाव जैसी स्थिति पैदा होती है और ये दिवस उन चुनौतियों को सामने लाता है और ये सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि एल्बिनिज्म वाले से जो ग्रस्त पीड़ित व्यक्ति हैं उनको भी समाज में पूर्ण गरिमा और समान अधिकारों के साथ जीने का अवसर प्रदान हो। और ये बिल्कुल हमारा सबका भी एक लक्ष्य होना चाहिए, हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस धरा पर हम रहते हैं, वहाँ रहने वाले सभी जीव जंतुओं के साथ हम बिना किसी भेदभाव के प्रेम भाव से समानता का व्यवहार करें और हमारा संविधान भी हमें यही सिखाता है ना। और रही बात हमारे देश भारत की, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि यानी संपूर्ण धरा, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। जब संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है तो उसमें रहने वाले सभी लोगों के साथ हम समान हो सकते हैं ना, है ना। चलिए एक और बहुत प्यारा सा नगमा आपके साथ, क्योंकि समान हम तब होते हैं जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, है ना। और ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

पुनः अभिनंदन आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आप शनिवार की सुबह को सुन रहे हैं, मैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर, और मैं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। बिल्कुल जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत सारे व्यक्तित्व के बारे में और उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन के दौरान अपने करियर में ऐसा कुछ किया जो आज भी हमारे हृदय में अंकित है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आज प्रेम धवन साहब की। प्रेम धवन साहब का हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म 13 जून 1923 को अम्बाला में हुआ। आज उनकी जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी आपके सहपाठी रहे। बिल्कुल, आपको बताएं कि दोनों ने मिलकर अपने समय में अपने कॉलेज की पत्रिका में काफ़ी शानदार राइटिंग की। साहिर लुधियानवी गज़ल लिखते थे तो प्रेम धवन गीत लिखते थे। हाँ बिल्कुल, आपको बताएं हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन साहब ने हिंदी फिल्मों के लिए कई विख्यात जो प्रख्यात लोकप्रिय गीत रहे हैं वो लिखे हैं। प्रेम धवन साहब न केवल गीतकार थे बल्कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, नृत्य निर्देशन किया और इसके अलावा अभिनय भी किया। प्रेम धवन जी ने पंडित रविशंकर जी से संगीत और पंडित उदय शंकर जी से नृत्य की शिक्षा ली और भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी मुख्य रचनाएं बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, जैसे चंदा मामा दूर के हर कोई जानता है, सबकी जबाँ पर हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन छोड़ो कल की बातें, है वतन है वतन हमको तेरी कसम, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो चलिए, और इनकी जो मुख्य फिल्में रही हैं उसमें रात के अंधेरे में, पवित्र पापी, नया दौर, जिद्दी, शहीद, उन्हीं की फिल्म की एक रचना हम समर्पित करते हैं उनके नाम से, उनके सभी फैंस के नाम से और देश के लिए जो उन्होंने कुछ लिखा, देशभक्ति के प्रति उनका जो भाव था उसको भी ये समर्पण है।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। बिल्कुल, एक और ऐसे व्यक्तित्व की बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ जिनको जब हम जिनके बारे में हम जब स्मरण करते हैं तो बिल्कुल सल्यूट करने को दिल करता है, नमन करने को दिल करता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ मेजर मनोज तलवार की। भारतीय सेना के जावाज सैनिकों में से एक मेजर मनोज तलवार ऐसे सपूत थे जो जिन्होंने देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही वीर सपूत मेजर मनोज तलवार साहब का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ, और जब देश के दुश्मनों ने अपने नापाक इरादों से देश के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मनोज तलवार ने अपने साथियों के साथ शत्रुओं को करारा जवाब दिया। 13 जून को करगिल में दुश्मनों को ढेर करने के बाद टुटू की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराने के बाद आप शहीद हो गए। सल्यूट है, सलाम है ऐसे जाबाज सैनिक को जो देश की स्वतंत्रता में, देश की आजादी के लिए अपने जीवन को ही न्यौछावर करने से बिल्कुल नहीं चूका। मेजर मनोज तलवार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और हम सब सिर्फ इतना कहते हैं कि देखिए, हम जो आज देश में खुली सांस लेते हैं, हम जो आज देश में बहुत ही खुशी के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ आज जीवन व्यतीत करते हैं, उसके पीछे ना जाने कितने लोगों की कुर्बानियां हैं, कितने लोगों के बलिदान हैं। और आज भी हमारी सेना के सारे जवान, हमारे तीनों फोर्सेस के जो जवान हैं और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, या फिर देश की सेवा में लगे वो जवान जो आपके सामने नहीं आते, वो सब मिलकर आज देश की सुरक्षा में बिल्कुल मुस्तैद प्रहरी बनकर खड़े हैं। और उनके प्रहरी बनने की वजह से ही हम लोग आज सुरक्षित और समृद्ध रूप से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने देश को नमन, उन सभी जवानों को सल्यूट हमारी तरफ से।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। शनिवार की सुबह है भाई, छुट्टी का दिन है ना बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये काम का दिन है ना। हर दिन हर व्यक्ति के लिए बड़ा विशेष होता है और शायद कुछ लोगों के लिए और भी ज़्यादा, क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो कुछ खास करने का एक लक्ष्य लेकर जीवन में आते हैं और उसको ढाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं, उस मुकाम पर जहाँ शायद हर किसी के लिए पहुंचना मुश्किल नहीं होता। हालांकि अगर आप ठान लें मन से तो हर किसी के लिए सारा कुछ करना संभव है, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम की चीज़ मनुष्य के व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। सिर्फ आपके अंदर कितनी कृत संकल्प है, आपका दृढ़ संकल्प कितना मजबूत है, ये बड़ी बात है। मैं बात कर रहा हूँ आज दीपिका कुमारी महतो जी की। आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।

जून 1994 को गीता जी का, गीता कुमारी महतो का जन्म हुआ रांची झारखंड में। बिल्कुल, आपको बताएं कि भारतीय महिला तीरंदाज के रूप में विख्यात दीपिका कुमारी महतो ने अपने, मतलब कहते हैं कि अपने निशानेबाजी के खेल में शुरुआत करने वाली दीपिका कुमारी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है। निशानेबाजी में झारखंड की गोल्डन गर्ल कही जाती हैं आप, और हाल ही में जारी विश्व रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष पर पहुंच गई हैं। जया, उन्होंने हाल के विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। दीपिका ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में कोरिया की अनसान से 0-6 से हारकर ओलंपिक पदक की रेस से बाहर हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जो स्पोर्ट्स है, खेल है, वो जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि वो उस भाव का खेल है कि हम बस निरंतर अपना कर्म करेंगे। अब उसमें सफलता मिलती है या नहीं, ये हमारे कर्म के द्वारा निर्धारित नहीं होता। आपको अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2012 में, और आज आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पूरी आकाशवाणी की तरफ से, और आपके सभी चाहने वालों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यूं ही देश का नाम रोशन करती रहें, आगे बढ़ती रहें, उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ती रहें। बिल्कुल, हम आकाशवाणी हैं, और आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक आपसे हमेशा संगीत की बात करता है। इसलिए एक बात मैंने अभी जीवन में कही कि हार और जीत, जैसा कि मैंने अभी बात की, वो जीवन का एक हिस्सा है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात आपके जीवन में आए, तो आप उसमें हमारा एक दूसरे का साथ दीजिए। यकीन मानिए, ये साथ आपको हमेशा के लिए उस बाधा से, कठिनाइयों से दूर कर देगा।

जी हाँ, अभी सिर्फ 4 मिनट का वक्त रह गया है, 8 बजे तक मुझे आपसे मुलाकात करनी है, अभी 4 मिनट और फिर 9 बजे आपसे मिलूंगा। लेकिन मेरे बाद 8 बजे से 9 बजे तक आपके पास होंगे बिल्कुल आशुतोष जी, बिल्कुल। और मैं आपको भी एक और ख़ास व्यक्तित्व की बात ज़रूर बता देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करते हैं विनायक पांडुरंग कर्मकर की। जी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार आप रहे हैं, अपनी मूर्तिकला के माध्यम से उन्होंने देश विदेश में बहुत सम्मान अर्जित किया। भारत सरकार ने वर्ष 1964 में मूर्तिकार विनायक पांडुरंग को पद्मश्री से पुरस्कृत किया। जी हाँ, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में अगर कुछ ठान लेते हैं तो उसको करने से चूकिए मत, क्योंकि हार और जीत ये हमारे लक्ष्य पर निर्भर नहीं करती। जीवन में दोनों चीज़ें आती हैं, जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, लेकिन अगर हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं तो एक दिन जीत हमारी होती है। फिलहाल नमस्कार, मुझे इस प्रोग्राम में यानी गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में दीजिएगा इजाज़त। अभी आपसे मुलाकात होगी आशुतोष की, लेकिन 9 बजे आपसे पुनः मिलने आऊँगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एब्सोल्युटली 8:01 और 53 सेकंड हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का अगला सफर शुरू हो चुका है आपके साथ। मैं हूं आशुतोष, आकाशवाणी 92.6 पर, और फिलहाल शनिवार की सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगर आज वैसे सेकंड सैटरडे और छुट्टी का दिन है, और अगर आप छुट्टी नहीं मना रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, लगातार बने रहेंगे और इस सफर को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। ऐसे ही लगातार बहुत सारी अपडेट आपके लिए यहाँ पर हम देंगे आपको, और इस मौसम को तो खास तौर पर एंजॉय करना है हमारे साथ आपको। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6। गुड मॉर्निंग।

एब्सोल्युटली. और जब आप मिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है दिल को. और फिलहाल जो टेम्परेचर है ना वो भी हमें सुकून दे रहा है. फिलहाल 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है और बादलों की लुकअप हो चुकी लगातार चलती चली जाएगी आपके साथ आज के दिन. और मौसम बहुत सुहाना है और इस मौसम को आपको एंजॉय करना है हमारे साथ. हम आपके बहुत ही बेहतरीन नगमे यहाँ पर सुना रहे हैं और सनराइज़ हो चुका है 5:22 पर और सनसेट होगा आज 7:20 पर. तो पूरा दिन आपके पास है इस वक्त. और क्या करना है आपको, हमारे साथ जुड़े रहना है, सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो 102.

6.6। और अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं ना, तो बिल्कुल आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप थोड़ी वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ख़ास तौर पर पानी आपको रेगुलर पीना है, और अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, अच्छी चीज़ें खानी है, और जंक फूड को अवॉइड करना है, और क्या करना है, अच्छे अच्छे गाने सुनने, अपनी थाट को अच्छा रखना है। और बिल्कुल एक अमेजिंग गीत के साथ जब हम जुड़ते हैं ना, तो वो हमें एक प्रोसेस में ले जाता है, और उस प्रोसेस में आप जब जुड़ते हैं ना, तो बहुत आनंद मिलता है। जैसे कि अभी हम अगले वाले गीत में आने वाले हैं और इस गीत को सुनेंगे, और उसके बाद बहुत ही अमेजिंग अपडेट इंतजार कर रही है आपका। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

जी, और मॉर्निंग का रिदम तो अब सेट हो चुका है और बिल्कुल आपके दिल में क्या है बिल्कुल हम बखूबी जानते हैं, और इतना अच्छे से जानते हैं कि आपको बिल्कुल मालूम नहीं होगा। सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और फिलहाल दिल्ली लगातार रफ्तार में चलती है और उसकी रफ्तार और भी तेज़ होने वाली है, क्योंकि अगर आप रोज़ाना अगर आप INA धौलाकुआं और IGI एयरपोर्ट के रास्ते पर ट्रैफिक में फंस कर परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार खबर आ चुकी है। राजधानी दिल्ली में जल्द ही INA से IGI एयरपोर्ट तक नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को लंबी ट्रैफिक कतारों और जाम से राहत दिलाना है। और बिल्कुल ये एलिवेटेड कॉरिडोर बारापोला कॉरिडोर से जुड़कर एयरपोर्ट तक तेज और निर्बाध यात्रा का रास्ता तैयार करने का बिल्कुल एक मकसद बनेगा, और इसके बनने से दक्षिणी दिल्ली सरायख्वाली खां और आसपास के इलाकों से एयरपोर्ट पहुँचने के बिल्कुल पहले की तुलना में आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और ये कॉरिडोर बारापोला मार्ग से जुड़कर एयरपोर्ट तक सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी देगा, और जिससे रोजाना लाखों यात्रियों को फायदा मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव को देखते हुए इस परियोजना को दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में एक नई दिशा के तौर पर देखा जाएगा, और इससे न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा बल्कि ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कमी आएगी। और बिल्कुल अगली बार जब आप उड़ान पकड़ने निकलें तो बिल्कुल अपनी हवाई यात्रा के लिए निकलें तो और भी ये आसान होने वाला है। तो उम्मीद बिल्कुल करेंगे कि आप और भी इस सफ़र में बहुत ही एंजॉय करते जाएंगे और ट्रैफिक से बिल्कुल बचते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली बदल रही है और आपके रास्ते भी बिल्कुल नए तरीके से बदल रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ बिल्कुल हमारे साथ आपको सुनते रहना है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 102.6 पर। आपके साथ मैं हूँ आशुतोष, और बिल्कुल इस अमेजिंग ट्रैक के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, और स्टे ट्यून्ड सुनते रहिए हमारे साथ। और समय अगर आपको ट्यून इन करना है तो मिला लीजिए हमारे स्टूडियो की घड़ी से 8:15 और 25 सेकेंड्स। स्टे ट्यून्ड।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एब्सोल्युटली। और इन भाई साहब ने तो अपना बिल्कुल कर लिया टाइम की 9 बजे क्या करने वाले, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, आपको सुनते रहना है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 8:27 हो चुके हैं और सैटरडे मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और अमेजिंग अपडेट भारतीय रेलवे की ओर से आपके लिए आ रही है। और बिल्कुल भारतीय रेल जो कि देश की जीवन रेखा कही जाती है और हर दिन करोड़ यात्री को अपनी मंजिल तक पहुँचाने का ये काम करती है, और उनका विशाल नेटवर्क बिल्कुल आपके सफ़र को बहुत आसान बना देता है, और ये साथ साथ आर्थिक और सामाजिक धड़कन भी है हमारे देश को जो जोड़ती है। और इतने बड़े नेटवर्क की सुरक्षा हमेशा से बड़ी प्राथमिकता होती है, और इसी दिशा में भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि देश भर के रेलवे स्टेशनों पर अब व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट और अग्नि सुरक्षा जांच कराई जाएगी। और बिल्कुल कल्पना कीजिए, एक व्यस्त रेलवे स्टेशन और हजारों यात्रियों की आवाजाही और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बिजली के नेटवर्क, खान पान की दुकानें और अनेक सुविधाएं, और ऐसे में आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कितने ज़रूरी हो जाते हैं, और इसका अंदाज़ा आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी जोनल रेलवे और मंडलों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने स्टेशनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को विस्तृत समीक्षा करें उसकी। और इस ऑडिट के दौरान स्टेशन परिसरों में लगे फायर एक्सटिंग्विशर्स और हाइड्रेंट सिस्टम, स्मोक डिटेक्ट

जाएंगी, वहाँ आवश्यक सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। और साथ ही साथ बिल्कुल रेलवे जो है, हमारी जो रेलवे स्टेशन है, आधुनिक सुरक्षित और आधुनिकता के मामले में बहुत आगे हैं, और यात्री अनुकूल इनको बनाया जा सके, और सुरक्षा, सतर्कता और विश्वास, इन्हीं तीनों स्तंभों पर टिका है एक बेहतर सफ़र। और भारतीय रेलवे इस प्रयास के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हर यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और हर यात्री तक पहुँच बहुत आसान होगी उसकी, और वो मंजिल तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंच पाएगा। फिलहाल आपको सुनते रहना हमारे साथ गुड मॉर्निंग डेलिया से। फिलहाल स्टे ट्यून्ड और बिल्कुल सुनते रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग डेलिया से।

एक हाथ में किताब होनी चाहिए और दूसरे हाथ में रंगों का सपना, लेकिन अगर उन्हीं नन्हे हाथों में औजार, बोझ या फिर मेहनत का भार आ जाए तो बचपन कहीं खो जाता है। जी हाँ, आज 12 जून को दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और एक ऐसा अवसर जो हमें उन लाखों बच्चों की ओर देखने और सोचने के लिए प्रेरित करता है जिनका बचपन आज भी काम के बोझ तले दबा हुआ है। इस दिवस की शुरुआत बच्चों को शोषण, मजबूरी और असुरक्षित कार्यों से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई थी, और ये इस दिन सरकारें, सामाजिक संगठन और उद्योग जगत और आम नागरिकों को एक मंच पर लाकर बाल श्रम उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों का संदेश देता है। और इस वर्ष 2026 का थीम है बाल श्रम को रेड कार्ड, यानी कि बच्चों के लिए निष्पक्ष अवसर और बड़ों के लिए सम्मानजनक रोजगार। और साथ ही साथ इस थीम ने हमें बच्चों खेल की दुनिया की उस भाषा का संदेश के जरिए हमें संदेश देती है जिसे हर कोई समझता है। जैसे कि खेल के नियम तोड़ने पर खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया जाता है, वैसे ही समाज को बाल श्रम से जुड़ी कुप्रथा को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना चाहिए। और सोचिए, एक बच्चा स्कूल की घंटी सुनने के बजाय किसी दुकान पर काम कर रहा हो, खेल के मैदान से में दौड़ने के बजाय किसी कारखाने की में घंटों मेहनत कर रहा हो, और ये केवल उस बच्चे के का नुकसान नहीं है बल्कि समाज और देश के भविष्य का भी नुकसान है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सपने, ये हर बच्चे का अधिकार है, और जब कोई बच्चा श्रम में उलझ जाता है तो उसके विकास की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। लेकिन बदलाव संभव है जब हम बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, जब हम बाल श्रम करवाने वालों का विरोध करते हैं, और जब हम ज़रूरतमंद परिवारों के समर्थन के लिए आगे आते हैं, तब हम एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। तो बिल्कुल इस विश्व बाल श्रम दिवस पर हम संकल्प करें कि हर बच्चे को उसका बचपन, उसकी शिक्षा और उसके सपने लौटाएंगे, क्योंकि बच्चों के हाथ में काम नहीं, कलम, किताब और उज्जवल भविष्य होना चाहिए। और बाल श्रम को रेड कार्ड दिखाइए और बचपन को उसका अधिकार दिलाइए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। तो आज आपको कोई भी ऐसा बच्चा मिले तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए और उसके लिए कुछ ऐसा कीजिए कि उसका भविष्य बिल्कुल बदल जाए और वो आपको ज़िंदगी भर याद रखे। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। वक्त हो चुका है 8:42 और 30 सेकेंड्स। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डम।

0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल दिल्ली में मानसून दस्तक देने की तैयारी में हो और बादलों की आहट अब हल्की हल्की सुनाई देने लगी है, लेकिन इसके साथ ही एक पुराना सवाल फिर से सबके सामने आ गया कि क्या राजधानी में एक बार फिर से जल भराव की स्थिति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ही हमारे RWA सभी ने मिलकर एक ये गुहार लगाई है सभी से कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि इस बार बारिश में सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति ना बने और घंटों ट्रैफिक जाम से सभी को दो चार ना होना पड़े, घरों बाजारों में पानी भरने जैसी समस्याएं ना हो, इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ नालों की समय पर सफाई, जल निकासी व्यवस्था की नियमित निगरानी और पंपिंग स्टेशनों की कार्यक्षमता की जांच और जल भराव वाले संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहाँ विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए। और साथ ही साथ बिल्कुल सरकारें भी इसमें जुट चुकी हैं इस काम में और विभिन्न एजेंसियाँ भी बिल्कुल जुट चुकी हैं और कई स्थानों पर वहाँ पर नालों की सफाई भी हो रही है। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि शहरीकरण की वजह से तेज रफ्तार में बढ़ती आबादी और जल निकासी तंत्र का बढ़ता दबाव मानसून के दौरान चुनौतियों की ओर बढ़ जाता है। इसलिए केवल हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, अपने आप पर भी कोशिशें करनी है, कुछ ना कुछ करनी है और सभी नागरिकों को इसमें उतनी ही भागीदारी देनी होगी। और सड़कों पर फेंका जो गया प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स हैं, कचरा है, अक्सर नालियों में जमा हो जाता है और वहाँ से वो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ना उसको ख़राब कर देता है और जिससे कि बारिश का पानी निकल नहीं पाता और वहाँ पर जल भराव जैसी समस्या पैदा हो जाती है। तो इसलिए असली परीक्षा तभी होगी जब मानसून की पहली तेज़ बारिश राजधानी की सड़कों पर दस्तक देगी। तो आइए इस मानसून को अपने आसपास की नालियाँ हैं ना और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई में सहयोग करें और

और बिल्कुल हम अपनी दिल्ली को जल भराव से मुक्त करें और जागरूक नागरिकों के साथ साथ हम सभी प्रभावी प्रबंधन में संयुक्त प्रयासों के साथ उसको संभव बनाएं। और बारिश का स्वागत हमें करना है, बिल्कुल तैयारी के साथ करना है। और बिल्कुल फिलहाल जो हमारे श्रोता हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस वक्त, और उनको भी हम शामिल कर लेते हैं अपने इस कार्यक्रम में। फिलहाल हमारे साथ कौन जुड़े हैं? राजेश भल्ला जी मेरठ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असम से हितेंद्र दास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ डॉली इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से, गाने बहुत एंजॉय कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राजकुमार संतानी इस वक्त अकोला महाराष्ट्र से गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बाल श्रम दिवस की भी बहुत बहुत ये इस हमें शुभकामना दे रहे हैं। साथ ही साथ ये हैं सुनील कुमार इस वक्त, और ये हैं बदायूनी से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और बिल्कुल आप भी बस यहीं कनेक्ट रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, और सुनते रहिए क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक का सिलसिला कभी नहीं थमता, और इन्फॉर्मेशन लगातार आपके लिए रहती है, और एंटरटेनमेंट लगातार बना रहता है आपके लिए। फिलहाल बस अब आशुतोष लेता है अनुमति, स्टे ट्यून्ड और बस अपना साथ यूँ ही बनाए रखिए। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आंखों से होके दिल में उतर जाएंगे, दिल में उतर कर तस्वीर बन जाएंगे, नजरों को झुकाकर चलना वरना जमाने को तुम्हारी आंखों में हम नजर आएंगे। जी हाँ, आपकी आंखों में हम हैं, आपके दिल में हम हैं, हम हैं आपके अपने आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, संजू प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, वेलकम।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ बिल्कुल, यह है आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। शनिवार की सुबह मेरे साथ यानी मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, जहाँ भी जा रहे हैं आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, लेकिन ख्याल रखिएगा कि रोड पर आप चलते हैं तो बिल्कुल दूसरे का भी ख्याल रखना जरूरी है और अपनी सेहत का भी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो बड़ा ही लुका छुपी का मौसम चल रहा है इस वक्त। आज दिल्ली में, हमारी दिल्ली में कुल मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस, यानी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादलों की लुका छुपी में सूर्यदेव लगातार बने हुए हैं और कुल मिलाकर ह्यूमिडिटी का लेवल जो है, मतलब आर्द्रता का स्तर, नमी का लेवल 65% है और हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मौसम में बदलाव है तो ये सेहत पर भी असर डालता है, इसलिए ख़ास ख्याल रखिए अपने गले का, ख़ास ख्याल रखिए अपने शरीर का। थोड़ा गर्म पानी का सेवन कीजिए, एकदम ठंडा गर्म मत होने दीजिए शरीर को, और एकदम धूप से आके, बाहर से आके फ्रिज को खोल के उसमें से ठंडी बोतल निकाल के गटागट मत पी जाइए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। घड़े का पानी पीजिए, बहुत ही शानदार होता है। सुराही का पानी पीजिए, बहुत बढ़िया होता है, सेहतमंद। और हल्का गुनगुना पानी पीजिए, हल्का सा शहद डाल लीजिए, और भी अच्छा होगा। और हमारे साथ सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, तो ये द बेस्ट होगा।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक और प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। आपको बता दें आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संजू। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, इतनी अपील करना चाहूँगा कि हालांकि सैटरडे और संडे में, क्योंकि वीकेंड होता है तो ट्रैफिक का जो लोड है वो कम होता है ट्रैफिक्स पे अमूमन जो वर्किंग डेज है उनके मुकाबले में, लेकिन फिर भी आप जब भी आप घर से निकल रहे हैं तो अपने वाहन की पूरी सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक के नियमों का पूरा पालन कीजिए। अगर आप टू व्हीलर

पर निकल रहे हैं तो हेलमेट लेकर चलिए, अपनी आरसी, अपना लाइसेंस, अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट साथ में रखिए, और इसके अलावा अगर आप फोर व्हीलर्स पर आगे निकल रहे हैं तो उसके साथ भी यही चीज़ें लागू होती हैं। और साथ साथ अगर आप रोड्स पर चल रहे हैं तो बिल्कुल जो लेन है उसका ख्याल रखिए, जिग जिग जिग जैक में गाड़ी मत चलाइए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे दौड़ाते हैं और वो सिर्फ ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है बल्कि दूसरे जो कम्यूटर्स हैं, जो दूसरे जो सड़क पर निकल रहे हैं वाहन लेकर व्यक्ति, उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। हर रेड लाइट्स पर रुकिए, इंतज़ार कीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि रेड लाइट्स होने के बाद अगर एकदम से, अगर जो रेड से पहले येलो होती है हम उस पर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि जो दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है कई बार वो स्पीड से निकलने की कोशिश करता है कि मेरी लाइट ख़त्म हो रही है, ऐसे में भी संभावनाएं होती हैं दुर्घटनाएं होने की। तो वेट कीजिए और जब देख लीजिए कि ट्रैफिक पूरी तरह से दोनों तरफ से हट गया किसी भी क्रॉसिंग पे, चौराहे पे, और आपकी लाइट ग्रीन हो चुकी है पूरी तरह से, तो एक दो सेकेंड के बाद में आराम से निकल जाइए, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। और निश्चित रूप से हम तो आपका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम हैं आपके आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुनते रहिए हमारे साथ, और आपके लिए फूल बरसा रहे हैं हम, क्योंकि हम आए हैं आपके लिए।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, कैसा लगता है आपको सुनना आकाशवाणी रेनबो, हमें ज़रूर बताइए। और अब से कुछ देर बाद यानी 10:05 पर आपके साथ होंगी मैचलेस म्यूजिक आर में हरप्रीत कौर, और 11:05 पर आपके साथ होंगे बॉलीवुड ट्रेल्स में संतोष राव। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिएगा इजाज़त। प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने से आपसे अगली मुलाकात जल्द होगी, इसी दुआओं के साथ। फिलहाल आपसे कहता हूँ बाय बाय, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस शहर जा रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की सातवीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैंडिडेट्स भी शामिल हुए। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। लॉस एंजलिस में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दैट वॉज जस्ट स्वीट ट्रैक, मुझे कितना प्यार है तुमसे, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना. नाउ एज आई प्रॉमिस आई शेयर वन इंटरेस्टिंग ट्रिविया अबाउट द मूवी विद यू. यू नो दिस मूवी वॉज एक्चुअली रिलीज्ड इन द ईयर 1962. इट वॉज अ टाइम वेन कलर्ड फिल्म वर ऑलरेडी मेकिंग देयर वे, बट दिस फिल्म इज ब्लैक एंड वाइट. येस, दिस फिल्म इज ब्लैक एंड वाइट इन एन एरा वेयर कलर फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग देयर अपेयरेंस. द म्यूजिक ऑफ द फिल्म वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर. And this film was actually a remake of the Tamil film Shabash Meena. So it's a very hilarious comedy. I've seen it. And when I was watching this movie as a kid, I remember I was asking, you know, I was wondering, actually asking to myself, why this movie is black and white when I've seen other Shammi Kapoor Ji's movies in colored, screen. And of course, the visuals were all colorful, beautiful. Why this movie is black and white? So I got my answer there. And now it's time for me to take a short break. I'll be right back. You stay tuned to Akash Shwani Rainbow, because Bachelor's Music Hour has just begun and it has started taking its true shape. So I'm going for a short break. You stay tuned.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के

साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बॉलीवुड की चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: जी हाँ, यह है बॉलीवुड ट्रेल, जिसमें हम बातें करते हैं ढेर सारी बॉलीवुड से जुड़ी हुई। और आज भी बातें होंगी बॉलीवुड की। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे पूछा जाएगा एक सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। तो बने रहिएगा एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ठीक 12 बजे तक।
1: यूपी वाला ठुमका लगाओ,
0: लगाइए लगाइए यूपी वाला ठुमका।

जी हाँ दोस्तों, यही शर्त कि जो जिस स्टेट से आता है उसको राज्य के डांस करके दिखाना होगा। जी हाँ, ये शर्त रखी थी किसने? पार्श्व गायक मीका ने बुधवार को, जब वो अपना 50वां जन्मदिन मुंबई में बड़े धूमधाम से मनाने के लिए अपने खास दोस्तों को इनवाइट कर रहे थे। सोनू निगम आए और उन्होंने हर घड़ी बदल रही गीत भी गाया और भंगड़ा डांस भी किया। वहीं कपिल शर्मा ने भी ठुमका लगाया अपनी पत्नी गिनी के साथ, तो गुरदास मान, शंकर महादेवन, उषा उत्थुप ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर रंग जमाया। और जब इतने महारथी एक साथ जमा हो ना, तो रंग तो जमना ही था। वैसे कुछ ऐसा ही रंग जमाया दिल्ली में कई कल प्राइड मंथ फेस्टिवल ने, जहां एनएसडी के कलाकारों ने रंग जमाया प्ले बदसूरत कॉमेडी रोस्टर दिल्ली शो के माध्यम से। अब सोचने वाली बात है कि दिल्ली हो या मुंबई, जब रंग चढ़ा है मस्ती का, तो अपन भी गीत संगीत के माध्यम से अपने मूड को फ्रेश करते हैं और आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं आज का वो सवाल जिसका सही जवाब, और सबसे पहले सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। आज आपको बताना है कि मीका ने बॉलीवुड में पहला गीत कौन सा गाया था। जी हाँ, सवाल बहुत आसान है, अगर कठिन लग रहा है तो उसके लिए मैं आसान कर दूंगा। जी हाँ, सवाल के लिए आपको तीन ऑप्शन भी आज दे दूंगा। सवाल थोड़ा कठिन क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है। पहला ऑप्शन है, जो पहला गीत उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गाया था, वो था ऑप्शन ए सावन में लग गई आग, बी था दिल में बजी गिटार, और सी था मौजा ही मौजा। 9868107070 पर भेजिए मैसेज और बताइए मीका ने हिंदी फिल्म में पहला गीत कौन सा गाया था, या यूं कह सकते हैं कि उनका डेब्यू गीत फिल्मों के लिए कौन सा था। 9868107070 पर भेजिए सही जवाब।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11:16:50। दोस्तों कल 12 जून को बॉक्स ऑफिस पर वैसे तो कई फिल्में रिलीज हुई हैं। अगर हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और रीजनल सब की बात करें तो लगभग 20 फिल्में ऐसी रिलीज हुई हैं, लेकिन हम आज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे चार फिल्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म मैं वापस आऊंगा। कंगना रनौत की भारत भाग विधाता, विक्रम भट्ट की फिल्म हॉन्टेड 3D और मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर की। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैं वापस आऊंगा की। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि इम्तियाज अली जब भी फिल्म बनाते हैं ना, तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक एहसास बन जाती है ना। और ये फिल्म भी एक एहसास है, भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी के बीच जन्म लेने वाली यादों की। नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांग रैना, दानिश पंडोर, मनीष चौधरी, रजत कपूर और अंजना सुखानी का अभिनय और इम्तियाज अली जी का निर्देशन दर्शकों को कितना अपनी ओर आकर्षित करता है इस फिल्म को देखने के लिए, आइए बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली जी, जो हमारे साथ बिल्कुल लाइव मौजूद हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हेलो
1: हेलो
0: इम्तियाज जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: सबसे पहले आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अच्छा इम्तियाज जी, आपने रॉकस्टार, तमाशा, हाईवे, जब वी मेट में हमेशा पर्सनल प्यार दिखाया, लेकिन इस फिल्म में लव के साथ साथ बंटवारे का दर्द भी आपने शामिल कर दिया, ये शिफ्ट क्यों?
1: ये शिफ्ट नहीं है, ये भी एक पर्सनल प्यार है जो बंटवारे के समय में होता है। तो किस तरह से बंटवारे की वजह से एक पर्सनल प्यार वो किस रास्ते से गुजरता है, देश के बंटवारे और समाज में जो चीजें खराब हुई थी उसमें एक दिल भी टूटा था, सिर्फ घर ही नहीं टूटे थे। कहानी ये है।
0: अच्छा।
1: बहुत कुछ जो लेकर के लोग दूसरी तरफ से इस तरफ आए थे, उसमें से कुछ यादें भी थी, वापस जाने की इच्छा भी थी, और इन्हीं, ये एक पर्सनल स्टोरी है जिसमें आप समझ सकते हैं कि आउट फोकस में आपको पार्टीशन का दृश्य दिखता है। और मुझे लगा कि माइग्रेशन जो है ये हमारे इस युग का सबसे बड़ी कथा है, और पार्टीशन मुझे लगता है कि इस हमारे सबकॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी इवेंट है जिस पर हमेशा जब भी नजर डाली गई है ना, तो एक बहुत ही गुस्से से डाली गई है। मगर जब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात किया जो पार्टीशन सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन देखा है और कुछ उनमें से अब भी हमारे साथ हैं, तो मैंने देखा कि वो अपनी पुरानी प्यार भरी यादों से भी ओतप्रोत हैं। अभी अगर उन्हें बहुत सारे मेमोरी इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजों को वो भूल चुके हैं, मगर जो उनकी छोटी बचपन की और जवानी की जो मधुर यादें थी वो अब भी उनके साथ हैं। तो मेरी कहानी उस पर आधारित है।
0: अच्छा, नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने 95 साल के व्यक्ति का जबरदस्त रोल निभाया आपकी इस फिल्म में, कितना मुश्किल रहा आपके लिए उस सिचुएशन में डायरेक्ट करना जब कैरेक्टर डिमेंशिया में है और मेमोरी में यंग है?
1: जी, बड़ा मजा आया। काफी मुश्किल था नसीर के लिए, क्योंकि क्या होता है कि भूल जाने की एक्टिंग करने में कभी कभी इंसान खुद भी डायलॉग भूल भी सकता है, जो हमने ये देखा। और काफी मुश्किल था क्योंकि वो जो मेकअप करके बिस्तर पे रहना और पुरानी यादों में डूबे रहना, सामने वाले लोगों को नहीं पहचानना, इसमें मुश्किल भी था और एक नई लेयर भी खुली कि इंसान के जो मन के अंदर चित्र चलते हैं और जो उसकी नजरों के सामने चित्र चलते हैं, उन दोनों में क्या फर्क है। तो मेरे ख्याल से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि नसीर ने ये काम किया, और बहुत खुश हूँ कि लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की है फिल्म में।
0: अच्छा, फिल्म रिलीज हो चुकी है, कल थिएटर्स में पहुंच चुकी है, फिल्म की USP क्या है और क्यों लोग आपकी ये फिल्म देखें?
1: पुराने जमाने का प्यार क्या हमें इस नए वक्त में नहीं मिल पाएगा? क्या वो जमाना अलग था? क्या वो प्रेमी किसी दूसरे फैक्ट्री में बनते थे? हम अलग हैं। हम जो आज के युग में जी रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे साधन हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं हमारे पास, हम क्यों लोनली हैं? हम क्यों तन्हा हैं, क्या क्यों हमें ऐसा लगता है कि अभी हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और अकेले हैं। तो ये पुराने जमाने का प्यार जो दर्शाया गया है, जो 1947 के वक्त की मोहब्बत है, जिसे आज के वक्त का दलजीत दोसांझ देख रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि उसकी जिंदगी भी उस तरह से बन जाए जैसे उनके दादाजी की थी, उनकी कमिटमेंट भी उसी तरह की हो कि 78 इयर्स तक वो एक लड़की की छवि अपने दिल में रखें और उन्हें आत्मज्ञानी होती है कि मैं क्यों कि 70 दिन भी किसी भी एक जगह पे अडिग नहीं रह पाता हूँ। तो ये एक बात है जो और फिर उन्हें ये भी लगता है कि देखिए मेरे दादाजी के पास ऑप्शन नहीं था, उन्हें मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा था, जबरदस्ती निकाला गया था, मैं क्यों अपना मुल्क, अपना घर अपनी मर्जी से छोड़ करके जा रहा हूँ, खुद को देश निकाला क्यों दे रहा हूँ मैं।
0: ओके, अच्छा, इसीलिए आपने अपनी फिल्म का टाइटल रखा मैं वापस आऊंगा।
1: ये मैं वापस आऊंगा दोनों पे वैलिड है। हर एक इंसान जो अपना घर छोड़ करके बंटवारे के वक्त आया था, ये सोच करके नहीं आया था कि मैं कभी नहीं आऊंगा वापस, वो हमेशा यही सोच करके आया था कि मैं वापस आऊंगा। और अक्सर वो लोग वापस नहीं जा पाए
0: जी।
1: तो आज का जो यूथ है जो बाहर की तरफ रुख कर रहा है, उनमें से एक बंदा हमने दिखाया है जिसका नाम निर्वैर गरेवाल है, जिसकी भूमिका निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ, वो भी ये प्रण कर लेता है इस कहानी को देखने के बाद कि मैं वापस आऊंगा।
0: बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी हुई है, बहुत अच्छा लगा है और पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। तो एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आकाशवाणी ने 8 जून को 90 साल पूरे किए हैं।
1: बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो,
0: क्योंकि आकाशवाणी से आपका बहुत पुराना संबंध रहा है सर।
1: जी, मैं बहुत रेडियो का इंसान हूँ और आकाशवाणी ही था जब मैं पैदा हुआ था। कई साल तो मैंने आप ही के रेडियो पर गाने सुने, कई कई गाने जो मैंने एक ही बार सुने हैं या पहली बार सुने थे वो आपके चैनल पर ही सुने थे, तो मैं तो फैन हूँ आकाशवाणी का।
0: जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। चलते चलते पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जब भी टीवी खोलते हैं तो आपको कुछ खराब न्यूज देखने को जरूर मिल जाती है, और हम हमेशा कहते हैं कि चीजें बहुत खराब हैं, मगर इसको अगर ठीक करना है तो मुझे लगता है कि हम ही लोगों को करना है। ये वक्त है कि हर इंसान को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छाई की तरफ थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कंप्लेन करने से नहीं, थोड़ा सा चेंज करने से शायद पूरी दुनिया चेंज हो सकती है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारा इतना बेशकीमती समय दिया अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों, ये थे मशहूर डायरेक्टर राइटर इम्तियाज अली जी, जिनसे हम कर रहे थे ढेर सारी बातें। अभी भी हमारे पास कुछ समय बाकी है, तो आइए जल्दी से इसी फिल्म के कुछ डायलॉग सुन लेते हैं, फिर आप निर्णय लीजिएगा कि इस फिल्म को देखने जाना है या नहीं।
2: जी,
3: वो भी मार्स का है, मार्शल।
4: वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना, और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
5: बॉर्डर के उस साइड।

0: वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
1: क्या हुआ?
0: यहाँ से मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है, नए मुल्क में, कैसे बता?
1: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया।
2: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
3: समझ में कैसे आएंगे? ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी। वो नहीं।
4: ये हो सकता है, ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, ये प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और ये जो गीत अभी आप सुन रहे हैं मस्कारा और ये गीत हमने लिया है मैं वापस आऊंगा फिल्म से। अभी हम बात करेंगे भारत भाग विधाता की भी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 11:30 से 11:47 तक आप सुनेंगे स्टंप प्रोग्राम, उसके बाद हम बात करेंगे भारत भाग विधाता की भी और भी फिल्मों की। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: team carry about themselves. So I wouldn't be surprised if they go on to script a few upsets and make it to the
1: Yeah.
0: semi.
1: Listen, Anisha, we're so excited about it. And I look forward to working with you during the tournament as well.
0: Likewise.
1: Anisha Ghosh, a cricket journalist, talking about the T20 Women's World Cup happening here in England. Well, that's all we've got time for on this week's Stumped on Akashvani with me, Eleanor Oldroyd. Don't forget, you can follow us on X. We are at BBC WS Sport and use the hashtag BBC Stumped. And check us out on YouTube too. Go to BBC World Service YouTube. My thanks to Charu Sharma and to Jim Maxwell and to all of you for listening. We'll speak to you soon. Goodbye.
2: Stumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akashvani.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
4: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा.
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in. हर घर सूर्य घर.
9: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
10: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
9: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
10: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
9: और विनर्स को क्या मिलेगा?
10: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
9: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
11: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही. रेनबो पर रात 9 बजे.
12: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
13: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी.
6: ओहो,
5: यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर.
8: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
14: छात्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस.
15: She was a nurse on duty at Mumbai's Kama Hospital.
16: अरे आई
17: एकदम बाप पे गई है.
16: पक्का ना, DNA टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं? बेड नंबर 12 आज आम पकने वाला है.
18: बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही.
19: हफ्ते भर में दौड़ेंगी हम लोग, है ना?
16: दवाई खाया?
20: डॉक्टर को बुलाओ पहले. सिस्टर से बात ही नहीं करने का मेरे.
21: आपला मुर्गा बीमार है, तुमको पूरा मुंबई के बच्चों का पड़ी.
16: जब घर वालों को ही रिस्पेक्ट नहीं तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा.
20: बाय बाय.
22: अरे सब जगह टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तू निकल अभी के अभी.
16: यहाँ पे तो ज्यादा कर 20 प्रेग्नेंट लेडीज है, या नहीं आएंगे ना?

0: आएगा, कोई अथॉरिटी वाला उधर रहेगा तो लोग शांत हो जाएंगे।
1: प्रोसीजर आणि प्रोटोकॉल फॉलो करा।
0: टेररिस्ट अटैक का क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है?
2: हॉस्पिटल का दरवाजा कभी बंद होता है क्या?
3: ज्यादा देर शाला बंद थी क्या तू?
0: हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।
4: जो भी सांस ले रहे हैं उसको हम बचाएंगे।
0: ब्लीडिंग चालू हो गया, लेबर वार्ड में लेके जाना पड़ेगा।
3: बाहर टेररिस्ट है, गोली मार देंगे।
0: अरे अभी फोन मत करो, यही है। इस सभा की उपस्थिति में अपने कर्तव्य को करने की शपथ लेती हूँ।
5: जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 2008 की वो रात भारत शायद कभी नहीं भूल पाएगा जब मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आतंकियों ने एक साथ शहर के कई हिस्सों को निशाना बनाया था। इनमें ताजमहल, पैलेस होटल, ओबरॉय, ट्राइट्रेंड होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, लियोपोल कैफे, नरीमन हाउस और कामा अस्पताल जैसी जगह मौजूद थी। इस घटना पर पहले भी कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी, लेकिन ज्यादातर कहानियां पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स या आतंकवादियों के खिलाफ चले ऑपरेशन से इर्द गिर्द घूमती रही है। भारत भाग्य विधाता, जिसका भी आपने डायलॉग सुना, कल रिलीज हुई है और यहां थोड़ा अलग रास्ता चुना जाता है, दिखाया जाता है। यह फिल्म उन नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों की कहानी दिखाती है जिसमें उस रात अपनी जान की चिंता किए बिना मरीजों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया था। फिल्म का यही पहलू शुरुआत से दिलचस्प लगता है। हालांकि विषय मजबूत होने के बावजूद फिल्म में हर जगह वैसा असर नहीं छोड़ पाती जैसे कि उम्मीद की जाती है। इस फिल्म में जैसे कि आपने आवाज से पहचान ली होगी कि कंगना रनौत है, गिरिजा उके हैं, स्मिता तांबे हैं, आशा शेलार है, प्रिया अर्जुन बेर्दे है, जाहिद खान है और सुहिता थट्टे है। और इस फिल्म को लिखा है मनोज तापड़िया ने और निर्देशक भी वही है मनोज तापड़िया। और निर्माता की अगर बात करें तो कंगना रनौत, शैलेश आर सिंह, धवल गड्ढा, बबीता शिवाल। और ये कल रिलीज हो चुकी है और फिल्म को ज्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला है। बहरहाल आने वाले समय में देखना होगा कि ये फिल्म लोगों के दिलों पर उतर पाती है या नहीं। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और अब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे आज के बॉलीवुड सरताज, तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: जी हाँ दोस्तों, करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैसेज भेजना था। हमने आज आपसे पूछा था कि मीका का फिल्मों के लिए, हिंदी फिल्मों के लिए डेब्यू सॉन्ग कौन सा है, और हमने इसीलिए तीन ऑप्शन भी दिए थे और आप उसी तीन ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। पहला ऑप्शन दिया था सावन में लग गई आग, दूसरा हमने दिया था कौन सा गीत हमने दिया था, देखिए मैं ही भूल गया जो कि सही जवाब है, और सही जवाब दिया है मोहम्मद सरफराज आलम ने। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसमें हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए, लेकिन सब ने यही गड़बड़ कर दी कि उन्होंने एल्बम के बारे में बता दिया कि पहला एल्बम जो उनका आया था सावन में लग गई आग उसके लिए बता दिया, लेकिन सही जवाब है 2006 की फिल्म अपना सपना मनी मनी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरफराज आलम जी, हाँ दर्शना बाजार से, अररिया से। हेलो
1: जी। हेलो,
0: हाँ नमस्कार सरफराज जी, कहाँ चले गए आप?
1: नमस्कार नमस्कार, मैं मोहम्मद सरफराज आलम जो की हर दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से
0: जी।
1: और सबसे पहले आकाशवाणी रेडियो को

0: 90 वर्ष पूर्ण होने पर
1: जी।
0: सभी आरजे, सभी अधिकारी, पैक्स महोदय और जितने भी टेक्निकल टीम है सबको हार्दिक बधाई
1: जी। अब आगे भी बोल दो, मैं क्या सवाल पूछूं आपसे।
0: जी, आपने जवाब बता दिया, जो जवाब मैंने लिखा आपने बता दिया, अपना सपना मनी में।
1: जी बिल्कुल सही कहा। आपको कैसे पता था, ये फिल्म देखी आपने?
0: नहीं, ये फिल्म तो देखी नहीं, लेकिन आपसे ही जानकारी मिलती है। अब जरूर देखूंगा ये फिल्म, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स में सारा जानकारी मिलती है।
1: जी बहुत अच्छा लगा सरफराज जी, समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो चलते चलते कुछ और कहना चाहोगे? देखो आज मौका दे रहा हूं मैं,
0: आरजे ओपी राठौड़ जी जहां भी है जल्दी आ जाए एफएम रेनबो पे।
1: ओपी जी का इंतजार हर कोई कर रहा है, और आपका ही आवाज, उनकी आवाज तो हर घंटे सुनते हो ना आप, सुन रहे हैं है ना, सुनते हो ना ऐसे। जल्दी आएंगे, बस संतोष के साथ रखो संतोष। बहरहाल बहुत अच्छा लगा मोहम्मद सरफराज आलम, आपने बॉलीवुड सरताज बने, आपने सही जवाब दिया था। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी पर छोड़े जा रहा हूं, और सरफराज अगर अपनी पसंद का गीत सुनना है ना तो 1:05 पर हमारे साथ सभी लिसनर्स आप जुड़ जाइएगा, सरफराज भी जुड़ेंगे और हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि मेरा वाला सॉन्ग है वो कार्यक्रम जिसमें हम आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं 9868107070 पर। तो अभी फिलहाल हम ले रहे हैं आपसे विदा, 1:05 पर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। नमस्कार।

दोस्तों इस सवाल का सही जवाब दिया था खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान ने, पंकज अमरावती बिहार से और मोहम्मद सरफराज आलम ने। सिर्फ 3 लोगों ने सही जवाब दिया था, बाकी लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल गलत जवाब दिया था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आणि रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ दोस्तों, आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेगा मेरा वाला सॉन्ग। जी हाँ, आपका गीत, आपकी पसंद के गीत। 9868107070 पर भेजिए अपनी पसंद के गीत। 9868107070 पर पसंद के गीत भेजिए और हम कोशिश करेंगे उन गीतों को प्ले करने की, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और इस कार्यक्रम की पहली पसंद है झलक दिखला जा फिल्म अक्सर से, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है उत्तराखंड से कविता ने।

जी हाँ दोस्तों, आपने पुकारा और हम चले आए। आजा आजा कर रही थी ये कविता की पसंद का गीत था, पहला मेरा वाला सॉन्ग कार्यक्रम में। और अब जिसकी पसंद होने वाली है वो कह रही है कि हमने पहली बार मोहब्बत की है। जी हाँ, सिर्फ तुम 1999 की ये फिल्म है और इस फिल्म का जो गीत सुनना चाहती है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, वो है सानिका बहादुर कर अमरावती महाराष्ट्र से। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी पसंद के गीत भेज सकते हैं। 9868107070। और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 2 बजे तक आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, तो मौका है, भेज दीजिए 9868107070 पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

दोस्तों आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग विद एसआर। एसआर बोले तो संतोष राव, और ये फरमाइश है हमारे बहुत सबसे प्यारे खास दोस्त मोहम्मद फुरकान की।

जी हाँ, अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो 9868107070 पर अपनी पसंद हमें भेज सकते हैं। 9868107070।

जी हाँ दोस्तों, 9868107070 हमारा वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी पसंद के गीत हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, 9868107070 पर भेजिए अपनी पसंद के गीत, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

दोस्तों चमत्कार फिल्म का ये गीत इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, आप इधर उधर मत देखिए बल्कि आप बस फोन की तरफ देखिए और मैसेज करिए हमें 9868107070 पर। जी हाँ, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग 9868107070 पर अपनी पसंद का गीत हमें लिखकर भेजिए।

दोस्तों गाजियाबाद से जैद और हुडा की ये पसंद का गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और ये गीत अब किसकी पसंद का गीत बजने वाला है देखिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। ये हैं ऋषिकेश से पुनीत रावत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। आइए सीधे चलते हैं मुसू मुसू हासी की तरफ। जी हाँ, शान की आवाज का ये मधुर गीत सुनना चाहते हैं हैदराबाद से ईशान भांगे।

जी हाँ दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि हमारे सभी लिसनर मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो, क्योंकि एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हम लेकर आते हैं हर घंटे, है ना। अब बहरहाल अभी प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। और दोस्तों जिनके हम गीत प्ले नहीं कर पा रहे हैं ना, वो आनंद ले लीजिए इन इतने प्यारे प्यारे गीत की फरमाइश हमारे पास जो हमारे लिसनर्स भेज रहे हैं, उनकी फरमाइश पर ही आप आनंद लीजिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। आपके नाम लेने की कोशिश करूंगा। चलिए अब इस गीत के साथ लेता हूं जो ये गीत प्ले करने जा रहा हूं। ये चाहत फिल्म का है और इसे भेजा है नई दिल्ली से भगवती ने।

दोस्तों रांची झारखंड से पारुल बंसल ने गीत की फरमाइश की है और कह रही हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को। आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा गीत यादों की बारात से।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों मैंने प्यार किया मूवी से ये गीत दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है सवाई माधोपुर राजस्थान से भूमराज मीणा ने।

दोस्तों मैंने प्यार किया का ये गीत सुनकर हमारे दो कबूतर जी हैं स्टूडियो के बाहर आ गए, खिड़की पे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं बड़े गौर से, गुटरू गुटरू गुटरू गु कर रहे हैं और सोच रहे होंगे कि भैया गीत तो बजाना था तुमको, वो वाला कौन सा, वो है ना वो कबूतर जा जा जा। बहरहाल कभी कभी ऐसा हो जाता है। विश्व ओम त्यागी मुरादनगर से गीत की फरमाइश हमें भेज रहे हैं, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। आनंद लीजिए, आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग।

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल ने हमें मैसेज किया है। राजेश भल्ला कंकड़खेड़ा मेरठ से मैसेज कर रहे हैं। मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोनू कश्यप और उनकी पूरी टीम ने हमें मैसेज किया।

दोस्तों दुनिया में दोबारा आने का मौका मिले ना मिले ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगला मतलब अगले प्रोग्राम के लिए आरजे जरूर मौजूद हो जाते हैं स्टूडियो में। आप कौन है बस उसके लिए आपको रखना होगा थोड़ा सा इंतजार, लेकिन हाँ जो भी आएगा ना तो जरूर कहर भर पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना दूल्हे राजा के गोविंदा जी कहते हैं अंखियों से गोली मारे। अब अंखियों से गोली मारने के लिए कौन आ रही है बस इंतजार करिए 2 बजे का आकाशवाणी FM रेनबो पर। हमारे पास मैसेज आया कंचन का सोनिया विहार से, सुमेर सिंह चौहान का खंडवा मध्य प्रदेश से, और मैसेज भी हमारे पास और आए हैं, जल्दी से नाम बता देता हूं। पंकज ने हमें मैसेज किया है झारखंड मनोहरपुर से, एक मैसेज हमारे पास आया संतोष गुप्ता का कुरुसेला बिहार से, मनोज कुमार ने भी हमें मैसेज किया है। तो इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, बने रहिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम आशियाना। सैटरडे की ये दोपहर जो जरा धीमी सी होती है, जरा सुस्त सी होती है, क्योंकि अमूमन मंडे से फ्राइडे ही ज़्यादातर लोगों का ऑफिस होता है, वर्किंग होता है, तो ऐसे में सैटरडे संडे ज़रा वो धीमी रफ्तार वाले दिन होते हैं जिनमें थोड़ा आराम करना होता है, थोड़ा ख़ुद को अगले हफ्ते के लिए तैयार करना होता है और थोड़ा कुछ वो बचे हुए काम करने होते हैं जिनके बारे में पूरे हफ्ते सोचा जाता है वीकेंड पे करेंगे। तो आपका कैसा जा रहा है ये शनिवार? ये तो बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही जा रहा होगा। और यहाँ अभी दीपिका के साथ कुछ हल्की फुल्की सी बातें करके और अच्छा हो जाएगा। किस बारे में बातें यहाँ पर आज करने का सोचा है बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं शो की शुरुआत। आप थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए मेरे साथ इस सफर पर जिसमें पूरे एक घंटे तक रहने वाली हूं मैं आपके साथ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दीपिका है आपके साथ। प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं आशियाना, और आशियाना में आज एक बहुत ही दिलचस्प बात के बारे में बात करने का वैसे मैंने सोचा है। वैसे तो मैं अक्सर कहती हूँ, आप जानते ही हैं, कि मुझे ऐसा लगता है जब बातें अपनों से की जाती हैं तो फिर इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि बातें कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, किस बारे में हो रही हैं, क्योंकि तब बातें दिल से की जाती हैं और दिल खोल कर की जाती हैं। तो अब बातें किस बारे में कर रही हूँ? बातें असल में एक ऐसे विषय पर है, एक ऐसी बात के बारे में है जो हम सब से जुड़ी है, जो हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है, यादें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यादों को याद करने की बात कर रही हूँ या आपका हाथ थामकर यादों के गलियारे में आपको लेकर जा रही हूँ, लेकिन नहीं, आज मैं ज़रा कुछ हटके बात कर रही हूँ यादों की इस बात के बारे में। देखिए, यादें ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी लगती हैं कुछ लोगों को। कुछ लोगों को यादें वो किताब लगती हैं जिनके पन्ने बार बार पलटना बहुत अच्छा लगता है, और जब भी उनके पन्ने पलटे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस यादों के गलियारे में या इस यादों की किताब के साथ थोड़ा वक्त और बिता दिया जाए। पर कुछ लोगों के लिए ये यादें ज़रा बोझ हो जाती हैं। अब ये यादें बोझ हैं, ये यादें ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी हैं, क्या है आखिर ये यादें और क्यों इतनी ज़रूरी हैं हमारे लिए? क्यों गाहे बगाहे आकर हमें गले लगा लेती हैं, और क्यों कई बार खाली रास्तों पर हमारा हाथ थाम लेती हैं? करेंगे बात। फिलहाल के लिए इस गाने को एंजॉय कीजिए और दीपिका के साथ अपने साथ को बनाए रखिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना। और आशियाना में हम बातें कर रहे हैं कि यादें जिंदगी की जो सबसे खूबसूरत पूंजी होती हैं, वो कैसे कभी कभी बोझ बन जाती हैं। देखिए, यादों को संभाल कर रखना ना हम सभी का नेचर होता है। मुझे लगता है हम सभी की आदतों में शुमार हो गया है। एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि यादों को तो हम संभाल कर रखेंगे, क्योंकि यादें ही वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे बीते हुए कल में ले जा सकती हैं। वरना वक्त बीतने के बाद उस वक्त में पहुँचना, उस वक्त में जाना, उस वक्त से मुलाकात करना, या उस वक्त में हम से थे, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। तस्वीरें होती हैं, लेकिन यादें वो फीलिंग होती हैं, वो इमोशंस होते हैं जो हमें उस अतीत में ले जाते हैं। अब पुरानी स्कूल की कॉपी हो, किसी दोस्त का लिखा हुआ खत हो, कोई पहली साड़ी हो, पहली सैलरी से खरीदी गई कोई चीज़ हो, इनकी कीमत बाज़ार में शायद कुछ भी ना हो, लेकिन दिल में इनकी कीमत बहुत अनमोल होती है। और ये अनमोल कीमत हम यादों के ज़रिए महसूस करते हैं। यादें हमें बताती हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किन रास्तों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और कई बार जब खुद पर भरोसा खोने लगते हैं ना, तब ये यादें ही हमें याद दिलाती हैं कि रुको, इतना सफ़र तय कर लिया है, इतना आगे बढ़ गए हो, तो अब क्यों घबरा रहे हो? जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो इससे आगे भी बिल्कुल पहुंच जाओगे, यकीन रखो। ये जो यकीन है ना, ये कई बार हमें यादें दिलाती हैं, और तब हमें एहसास होता है कि हाँ, हमने तो बहुत पीछे से शुरुआत की थी और आज हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, आज बहुत कुछ है जो हमने हासिल कर लिया है। तो ऐसे में जो अभी तक हासिल नहीं भी हुआ है, वो एक दिन ज़रूर हासिल होगा।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ बने हुए हैं और यहाँ बातों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन बातों बातों में एक बहुत खास बात आपसे करना जरूरी है। वो खास बात जो एक खास दिन के बारे में है। ये खास दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है हर साल। योग की जब भी बात आती है तो हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि योग किस तरह से हमें बेहतर बनाता है, योग किस तरह से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। अलग अलग जो आसन होते हैं, अलग अलग जो मुद्राएं होती हैं, वो हमें दिमागी शांति देती हैं, मन को सुकून देती हैं, हमें कई बीमारियों से बचाती हैं, कई तरह की दिक्कतों में भी योग आसन जो होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। हालांकि अलग अलग योग आसन को आपको किस तरह से करना है, किस उम्र में कौन से योग आसन करना सही रहेगा, किस हेल्थ कंडीशन के साथ किन योग आसनों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। योगासन का जब जिक्र चल रहा है तो वृक्षासन यानी ट्री पोज एक ऐसा योगासन है जो बहुत पॉपुलर है और इसे करना भी बहुत आसान होता है। बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, खासकर आप अगर बिगिनर हैं, आप बहुत ज़्यादा योग आपने नहीं किया हुआ है, तब भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इससे ना केवल स्ट्रेस कम होता है, जो कि आज के वक्त में मुझे लगता है ना चाहते हुए भी हम सभी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, स्ट्रेस कम करने में, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में, हमारे कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में, हमारे पोस्चर बॉडी पोस्चर को सुधारने में और पैरों को मजबूत बनाने में ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। तो आपको इसे अपने रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। इसे कैसे करना है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको एक बार एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस इंटरनेशनल योग डे से योगासन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का प्रण लें। अगर आप पहले से ही योगा प्राणायाम ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने आसपास जो और लोग हैं आपके उन्हें भी प्रेरित करें ऐसा करने के लिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो इसे करने की शुरुआत करें।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद। सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?

0: 24 स्पीड पोस्ट मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: जिक्र हो रहा है यादों का। जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना, और जिक्र हो रहा है यादों का, जो कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी होती हैं, किसी के लिए ज़िंदगी का वो हिस्सा होती हैं जिन्हें वो बार बार पलट कर देखना चाहते हैं। किसी को लगता है कि यादें उतनी भी कीमती नहीं होती, तो किसी के लिए बोझ बन जाती हैं। अब देखिए, ये यादें तब असल में बोझ बन जाती हैं जब कुछ ऐसी यादें जिन्हें हम भूलना चाहते हैं वो बार बार दस्तक दे देती हैं। किसी अपने के बिछड़ जाने का दुख, कोई अधूरा रिश्ता, कोई ऐसा फैसला जिस पर आज भी अफसोस होता हो या जिसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई हों, ऐसी यादें कई बार दिल पर बोझ बन जाती हैं। मगर शायद हर बार गलती यादों की नहीं होती, क्योंकि यादें तो हमें बस हमारी कहानी के पुराने किस्से सुना रही हैं। अब दर्द हमें तब हो रहा है या बोझ हमें वो तब लग रहा है जब हम उस किस्से में अटके हुए हैं। जिंदगी का मतलब यादों को मिटाना या यादों में अटक जाना बिल्कुल नहीं है। जिंदगी का मतलब यादों को संजोते हुए, यादों से सीखते हुए, यादों को सहेजते हुए आगे बढ़ना है। तो ऐसे में उन यादों को याद कीजिए जिनसे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अब आप कहेंगे इस पर हमारा बस थोड़े ही चलता है। बिल्कुल नहीं चलता, मानती हूँ मैं, लेकिन खुद को उन अटकी हुई यादों से बाहर लाने के लिए थोड़े से कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि ये यादें खूबसूरत लगें, बोझ नहीं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना। आशियाना में बातें हो रही हैं कि यादें जो किसी को जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी लगती हैं और किसी को ऐसा लगता है कि बोझ हो गई हैं। कभी कभी किसी एक इंसान को भी अलग अलग वक्त पर दोनों चीज़ें महसूस हो सकती हैं, यानी कभी यादें खूबसूरत सी पूंजी लग सकती हैं और कभी बोझ लग सकती हैं। असल में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो होठों पर मुस्कान छोड़ जाती हैं और कुछ ऐसी जो आंखों में नमी छोड़ जाती हैं। एक पुराना गाना, एक भूली हुई खुशबू, एक तस्वीर और फिर अचानक एक लिया हुआ नाम, और देखते ही देखते लगता है कोई सालों पुराना मौसम फिर से लौट आया है। ये यादें अजीब होती हैं, असल में ये कैलेंडर नहीं देखती, बस दिल का दरवाज़ा खटखटा देती हैं। अब बातें जब यादों के बोझ बनने की हो रही हैं तो मुझे लगता है हम सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई पल ऐसे हैं, कोई ना कोई यादें ऐसी हैं जिन्हें हम बार बार याद नहीं करना चाहते या फिर जो मुस्कुराहट नहीं तकलीफ देती हैं। उन यादों के लिए आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से डिलीट नहीं कर सकते। देखिए, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिल है, वो कोई मशीन नहीं है जिससे आप कुछ डिलीट कर पाएंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो यादें आपके साथ ही रहेंगी, भले ही वो आपको तकलीफ क्यों ना दे रही हों, पर उन यादों से बाहर निकलने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे पल हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, कोई ऐसा मुकाम है जो हासिल नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रिश्ता है जिसके लिए बहुत मेहनत की थी या जिसमें बहुत प्यार दिया था लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका, कुछ भी ऐसा है जो आपको याद आता है तो बुरा लगता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ और चीज़ों में खुद को इंगेज करने की कोशिश कीजिए।

कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, जो आपको अच्छी लगती हों। खुद को डिस्ट्रैक्ट करना क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उन यादों में उलझे रहेंगे तो आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी को नहीं देख पाएंगे और आने वाली ज़िंदगी में खूबसूरत यादें भी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कुछ यादें तकलीफ़ दे रही हैं, अगर ज़िंदगी का एक हिस्सा मुश्किल से भरा रहा है, तो ये तो तय है कि आने वाली ज़िंदगी खुशियों का प्यारा सा गुलदस्ता, खुशियों का प्यारा सा तोहफा आपके लिए ज़रूर लेकर आएगी।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। प्रोग्राम है आशियाना, बातें हो रही हैं, यादें जो हर याद हमारे दिल के करीब होती है, हालांकि कुछ यादें हमें परेशान भी करती हैं। ये यादें जो कई बार दर्द देती हैं तो कई बार चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं। असल में यादें किताब के उन पन्नों की तरह हैं जिन्हें फाड़ा तो जा सकता है लेकिन उनमें लिखी कहानी, उनमें लिखे किस्से मिटाए नहीं जा सकते। इसीलिए यादों से आप पूरी तरह भाग भी नहीं सकते, यादों की कैद से खुद को पूरी तरह आज़ाद भी नहीं कर सकते, पर आपको ऐसा अपने साथ नहीं होने देना है कि यादों में खुद को इस तरह कैद कर लेना है कि आप परेशान हो जाएं, आप उदास हो जाएं या फिर आप जो है अपनी ज़िंदगी का आने वाला वक्त एंजॉय ना कर पाएं, अपनी ज़िंदगी जी ना पाए अच्छे से। क्योंकि यादों को हम जब तक ज़िंदगी का एक हिस्सा बना कर रखते हैं तब तक वो बहुत ख़ास होती हैं, लेकिन कई बार ज़िंदगी में ऐसे फेस आते हैं कि हम गुज़रे वक्त की यादों में, हम उन यादों में जिन्होंने हमें परेशान किया होता है, इस हद तक खुद को बांध लेते हैं या वो यादें इस हद तक हमें बांध लेती हैं कि हमें लगता है अब क्या करें या अब तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता। बस उस फीलिंग से आपको खुद को आज़ाद करना है और देखिए फिर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

जी हाँ, ज़िंदगी के सफ़र में कई बार बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो सोचा नहीं हो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो वो हमें खुशी नहीं देगा या फिर वो हमें परेशान ही करेगा। हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, मतलब इतनी सारी खुशियाँ मिल जाएँ जो हमने सोची भी नहीं हो, और उसके बाद वो पुरानी यादें जो हमें बोझ लग रही थी वो हम भूलने लगे, या फिर उन्हें हम बहुत कम याद करें, बल्कि उन नई खूबसूरत यादों को बनाएँ जो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुशियाँ देंगी, या फिर जो हमें जब भी याद आएंगी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगी। बस यही हमें करना है, यही छोटी सी चीज़ करनी है, क्योंकि यादों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, डिलीट कर देना, बिल्कुल हटा देना ज़िंदगी से पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि जो यादें तकलीफ़ दे रही हैं उन्हें ज़रा कम याद किया जाए, लेकिन ये भी मैं मानती हूँ जब आप परेशान होते हैं तो अक्सर वही यादें आपको याद आती हैं। इसीलिए ज़रूरी है ख़ुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जितना खुश आप किसी और को रखना चाहते हैं, अपने अपनों को रखना चाहते हैं, उतना ही खुश खुद को भी रखने की कोशिश कीजिए। और फिलहाल यहाँ दीपिका को इजाज़त दीजिए। जी हाँ, इस प्रोग्राम में यानी कि आशियाना में अभी लेनी होगी आपसे इजाज़त मुझे, लेकिन 4 बजे से दोबारा आपके साथ मैं जुड़ूंगी। यहाँ अभी 3 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज गर्मियों में होने वाले जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं और जो यूनानी मेडिसिंस हैं उनके बारे में यहाँ पर बात होगी, एक्सपर्ट साथ में होंगे।

बस आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। 4 बजे से दोबारा आपके साथ मैं जुड़ूंगी, 4 बजे से दोबारा आपसे बातें करूंगी, प्रोग्राम अल्फा जैन लेकर हाजिर होंगी। तो बस आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको बस यहाँ पर मेरे साथ और मेरे जाने के बाद भी आकाशवाणी FM रेनबो के साथ बने रहना है, आने वाले प्रोग्राम्स को इंजॉय करते रहना है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। तपती धूप, बढ़ता तापमान और बदलती खान पान की आदतें, ऐसे में सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर। अपच, गैस, एसिडिटी, दस्त और भूख कम लगना जैसी समस्याएं इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में यूनानी चिकित्सा पद्धति किस तरह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत शुक्रिया आपका।
2: और साथ है डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर यूनानी मेडिसिंस CGHS। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें आपने याद किया।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर अपने विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं?
3: असल में सबसे बड़ी वजह होती है बाहर का खान पान और ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाने से। आमतौर से होता क्या है कि गर्मियों में जो है बहुत जल्दी खाना जो है हमारा अगर बासी हो जाता है तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें जो है डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। मुख्तसर यह है कि हमें इससे बचना चाहिए। एक तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो, घी तेल, वो कम इस्तेमाल किया जाए। और बाहर के जो हैं, जो भी आदमी घर से निकला है, उसको ज़रूरत पेश आई, भूख लगी, तो देख ले कि खाना सही है या नहीं सही जगह है। कम खाए लेकिन ताज़ा और सादा खाना खाए, इसकी खास कोशिश की जाए।
2: तो कुछ ऐसी चीजें जो वो साथ लेके अपने चल सकते हैं कि अगर हम बाहर का खाना ना खाना चाहें, जनरल में वो ले सकते हो?
3: देखिए, सबसे बढ़िया तो ये है कि हमारे यानी नॉर्थ इंडिया में खास तौर से चना और जौ का सत्तू जो है बहुत मशहूर है, और पानी आमतौर से हर जगह मिल जाता है, या फिर पानी भी साथ लेके चले तो आदमी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये इस सीजन की बहुत बढ़िया यानी गजा है, कह लीजिए न्यूट्रिशनल चीज़ है ये। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि बॉडी के अंदर जो इस वक्त जो मौसम है वो मिजाज के एतबार से गर्म और खुश्क है, तो ये जो है शरीर को तरी पैदा करता है।
2: जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सूफी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी पेट संबंधी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं?
4: आजकल तो गर्मी की वजह से काफी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें लूज मोशन का है, गर्मी लग गई, बहुत ज्यादा उनको डायरिया हो गया एंड लूज मोशन होते हैं। इस टाइप के पेशेंट ज्यादा आते हैं जिसकी वजह से पानी की कमी या पानी नहीं लेते हैं या इन सब चीजों को लेना चाहिए। तो इस टाइप के ज्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि जिनको गर्मी की वजह से लूज मोशन एंड डायरिया एंड वोमिटिंग इस टाइप से हमारे पास आते हैं, और उनको पानी और ORS, नेबर, लेमन वगैरह इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको आप पानी में लीजिए, पुदीना।

0: लीजिए, सारी चीजों को लीजिए जिससे उनको थोड़ा सा
1: रिलीफ
0: रहता है। और हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम देते हैं, पुदीने का पानी होता है, अजवाइन का होता है, ये सब चीजें हम उनको ऐड करके देते हैं
1: जिससे गर्मी में ठंडक का एहसास रहे,
0: ठंडक का एहसास हो
1: जी। इसमें हम बात ये भी करेंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और ये किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है।
1: यूनानी चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी, इस एक साइंटिफिक बेस पर इसको हकीम बोकरात ने, जिन्हें हिप्पोक्रेट भी कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। हालांकि पहले से चल रही, प्रचलन तो बहुत पहले से रहा, लेकिन उन्होंने बाकायदे उसको एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, खास तौर से उन्होंने खिल्त और मिजाज। तो वो कहते हैं इसका बैलेंस अगर रहता है तो शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती, और जब ये डिसबैलेंस होते हैं चारों खिल्त और मिजाज, तब जो है जाकर तकलीफ बढ़ती है। जाहिर है गर्मियों का सीजन है, इसमें उमूमन जो है खुश्की और गर्मी, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई होती हैं। इस लिहाज से हुक्मा इसके, यानी जो खास तवज्जो दिया उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और उसके लिए उन्होंने माना है कि अगर जिगर हमारा सही काम कर रहा है, लीवर, तो समझिए कि हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो लीवर से संबंधित जो दवाएं हमारे पास में हैं वो बहुत, यानी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और इसके बहुत सारे क्लासिकल दवाएं हैं, जैसे माजून दबिदुलवर्द है, जवारिश नारायण है, जवारिश आमला है। ये सब दवाएं बहुत सारी जिगर की हैं, जो काबिज भी हैं, यानी जैसे किसी को डायरिया हो गई या डिसेंट्री हो गई, तो उसमें इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। खास

0: जवारी शाह नारायण का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से जो है इसमें चहार तुख्म का भी इस्तेमाल होता है। चहार तुख्म जो होता है चार किस्म का बीज होता है, जिसमें यह है कि तुख्म बारतंग है, तुख्म रेहान तुलसी का बीज, इसब गोल मुसल्लम और तुख्म कनौज। तो चारों बीज एक साथ जो है जमा करके किसी को भी पेट में गर्मी है, दस्त है, मरोड़ है, आईबीएस की शिकायत है, उन सूरतों में जो है हम इसे इस्तेमाल कराते हैं। सादे पानी से एक चमचा निगल लिया। इसके अलावा जो है हुक्मा ये मान के चलते हैं कि ये इन्फेक्शन में भी काम करेगा। कई बार ऐसा होता ना कि डिसेंट्री हो गई, इन्फेक्शन के सबब हुई है, तो उसमें हम जो है अर्क अजीब भी देते हैं। अर्क अजीब जो है ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है। इसमें जो है सत्य पुदीना है, सत्य अजवाइन है और सत्य काफूर
1: है,
0: इन तीनों को बराबर बराबर मिला लेते हैं, एक बेहतरीन घोल तैयार हो जाता है। इसकी दो बूंद आधे कप पानी में पी लीजिए तो इससे आपको फौरी तौर पर एक यानी जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस है, डिसेंट्री है, इन्फेक्शन है, उन सब में काम करेगा।
1: तो ये रोजमर्रा में ले सकते हैं या तकलीफ हो तभी इसका
0: बेहतर है कि तकलीफ हो तो लें
1: जी,
0: क्योंकि जाहिर दवा का मतलब है, दवा और गजा दो अलग अलग चीजें हैं
1: जी।
0: तो इलाज बिल गजा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि ऐसे वक्त में हम वो चीज खाएं जिससे दवा की जरूरत है पेश आए। तो जाहिर है कि दवा जो है जब जरूरत हो तो भी ली जाए।
1: तो दर्द में ही दवा ले, लेकिन रोजमर्रा में जो ये गर्मी है इससे बचने के लिए हम क्या करें कि जिसे बीमारी ना पड़े।
0: हाँ, इसके लिए तो एक बहुत मोटा सा फार्मूला है, आम आदमी जानता है कि सादा खाओ और ताजा खाओ और कम घी तेल और मसाला इस्तेमाल करो। मौसम के जो फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुदरत ने जो हमारे लिए एक वरदान तौर पर कह लीजिए हर सीजन में जरूरत के मुताबिक सब चीजें पैदा होती हैं। अब जैसे आजकल खीरा, तरबूज, ककड़ी ये सब चीजें हैं बदन को तर रखने के लिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मतलब है कि ये सब चीजें नहीं दस्तियाब होती, जैसे आम मान लीजिए है, आम बहुत बड़ी नीमत इस वक्त है
1: जी,
0: कि किसी गर्मी लग गई, लू लग गया हो, पेट में कोई खराबी आ गई है, तो आम का पन्ना इस्तेमाल करें। आम को उबाला कैरी को
1: जी,
0: और उबालने के बाद उसके गूदे को जो है पानी और चीनी नमक मिला करके इस्तेमाल कर सकता है इंसान। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो चीनी मत मिलाएं, हल्का नमक मिला लिया करें।
1: तो उनके लिए जो शुगर पेशेंट है आम का ऑल्टरनेटिव भी कुछ और है।
0: हाँ, जाहिर है कि उनके लिए तो यही चीज है, लेकिन इसमें चीनी मत मिलाएं, वो थोड़ा टेस्ट से परहेज रखें, नारियल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कुदरत ने हमें हर सीजन के लिहाज से चीजें दी हुई हैं और उसी का हम इस्तेमाल पहले करें ताकि हम दवा से बच सकें।
1: एहतियात बरतने के बाद भी अगर किसी को अपच, गैस या एसिडिटी की समस्या आती है तो उसके लिए यूनानी उपचार कैसे किया जाता है, डॉक्टर सूफिया से हम जानना चाहेंगे।
2: पहली बात तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए गर्मियों में, जैसा कि हमें बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा मसाले, ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारी यूनानी में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा हम असर करती हैं। जैसे पुदीने का एक पेस्ट आता है, जवारिश पुदीना जैसे बोलते हैं, जवारिश तमर हिंदी आती है, वो सब ठंडी दवाइयां जो पेट को बहुत अच्छा वो करती हैं। शरबत में जैसे गुड़हल का शरबत है, शरबत बेलगिरी बहुत अच्छी है, आप दो दो चम्मच सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, शरबत की तरह पी सकते हैं उसको, और शरबत अनार भी ले सकते हैं। ये सब चीजें बहुत ही इफेक्ट करती हैं। बस ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में कि गर्मी की वजह से जो जो चीजें हमें ज्यादा हार्म कर रही हैं, बहुत मिर्च है, मसाला है, बाहर की बहुत सारी चीजें, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। आजकल पता नहीं कैसे क्या किस तरीके से लोग बनाते हैं, कितने वक्त रखते हैं, फ्रोजन फूड अवॉइड करना चाहिए। मेरे समझ से इन चीजों के लिए हमारी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है।
1: तो जो जो आपने शरबत बताई, क्या इनमें से कुछ ऐसा है जो हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं?
2: शरबत बेलगिरी है, शरबत अनार है, ये बराबर आप ले सकते हैं।
1: तो ये सभी लोग ले सकते हैं या शुगर पेशेंट्स या
2: शुगर
1: बच्चों के लिए?
2: शुगर फ्री तो इसमें शायद नहीं है, अभी बच्चे ले सकते हैं, जो जिसको शुगर है वो थोड़ा अवॉइड करे, वो कुछ और चीजें से पुदीना है, लेमन है, नमक है, जीरा भुना हुआ डाल के कुछ एक ड्रिंक बना ले, वो ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको कोल्ड करके लिया जा सकता है। गोंद कतीरा का भी बहुत अच्छा इस वक्त इफेक्ट आ रहा है, तुक मलंगा का भी बहुत अच्छा है, उसको भी मिक्स करते हैं भिगो के 4-6 घंटे, उसके बाद उसको आप पानी में मिक्स करके उसको, उसमें पुदीना है, थोड़ा सा लेमन है, ये डाल के आप इस्तेमाल करते हैं। शुगर के पेशेंट जो है वो नमक का यूज कर रहे हैं, काला नमक का यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं उसको, है ना।
1: गर्मी के मौसम में पुदीना, नींबू सुनने में इतना अच्छा लग रहा, तो लेने में और भी आनंदमय रहेगा। तो डॉक्टर सैयद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिर भी अगर कोई, जैसे आपने बार बार कहा कि जंक फूड ना लेकर फिर भी किसी को अगर खा लिया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया या कुछ उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए यूनानी चिकित्सा क्या सलाह देगा? क्योंकि आजकल मौसम ऐसे ट्रेवल भी कर रहे हैं लोग।
0: बिल्कुल सही है। अव्वल तो हमने बताया कि घरेलू तौर पर

0: जो हम अपने साथ रख सकते हैं, जो चीज़ें ख़राब ना हों, उसमें ख़ास तौर से चने और जौ का सत्तू जो है वो नंबर एक पर है। दूसरी चीज़ ये है, अगर हो ही गया है, तकलीफ़ आ गई, तो एक तो हमने बताया अरक अजीब का इस्तेमाल है, दो बूंद अरक जो है आधे कप पानी एक कप पानी में लेकर के पी लिया, उससे फौरी तौर पर उसकी वोमिटिंग रुक जाएगी। इसके अलावा यह है कि डिहाइड्रेशन अगर वाकई हो ही गया है, उसे चाहिए कि अपने करीब के किसी हॉस्पिटल से रुजू करें वो, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए वो आदमी जो है डिहाइड्रेशन बचे उस पर हम खास ध्यान देते हैं। और ये जो ORS वगैरह का बताया गया है, धीरे धीरे करके सिप करके पिएं, एक बैग बहुत ज़्यादा नहीं पानी इस्तेमाल करें, या जो कोई भी शरबत हो तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे किया जाए, तो वो जो है डाइजेस्ट होकर के फिर हमें जो कमी पानी की है वो पूरी होती रहेगी। तो ये असल में ज़रूरी है कि उपचार तो उपचार है, इलाज में जल्दबाजी नहीं, और उसमें उसी तरीके से काम किया जाएगा जैसा कि जो ज़रूरत पेश आई है। अब किसी को डायरिया और वोमिटिंग दोनों है, तो उसने पहले मरहले में एक तो अरक अजीब दे दिया, फिर जवारिश पुदीना आता है, जवारिश पुदीना विलायती कहलाता है, तो उसको इस्तेमाल कराएंगे। ऊपर से फिर हम ये शरबत जो है आपका अनारायण कहा है, शरबत अनार के नाम जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके अलावा जो है हब्बे पेच के नाम दवा आती है, हमारी जो यूनानी दवाएं हैं, तो उसमें एक गोली दे दिया, या हब्बे सुमाक दे दिया, इस तरह कोई चीज़ आती है दवाएं हमारी यूनानी की, जो क्लासिकल मेडिसिन्स हैं, जनरल मेडिसिन्स कहलाती हैं, ये हर जगह मिल जाती है आराम से, तो इसका भी हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है किस कंडीशन में है इस वक्त, क्या कैफियत उसकी है, उसको फौरन हम हॉस्पिटलाइज करें या फिर घर पर ही उसका इलाज करें, तो उसकी कैफियत देखने पता लगे कंडीशन क्या उसकी है। और ये बहुत बड़ी समझदारी होती है आदमी को कि बर वक्त जो है उसका इलाज किया जाए, और कहाँ किया जाना बेहतर है। किसी को मान लीजिए बहुत तेज़ धूप लग गई, सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, तो ठीक, घर पर जो हमारे उपचार मौजूद है वो तो हमने दे दिया, और उसमें आज के सीज़न में ये जो पना आम का जो बताया कि कैरी को उबाल करके उसका गुदा निकाल करके चीनी पानी का घोल बना करके पिला रहे हैं उसे, ORS की सूरत में भी हम दे सकते हैं, ये सब बातें हैं खैर। लेकिन अगर हम महसूस करते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छा उपचार चाहिए, तो हम उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दें, ये भी एक इलाज का बड़ा हिस्सा है और बड़ी समझदारी की बात होती है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।
0: जी
1: हेलो
2: जी, पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है।
2: डॉक्टर साहिबान को मेरा सलाम पहुँचे।
0: शुक्रिया साहब, बहुत बहुत।
2: हमारे यहाँ यूनानी में अर्क चिकित्सा का बड़ा महत्व है।
0: जी जी
2: मैंने सुना है
0: सही।
2: कि अर्क मकोए बहुत सारे अर्क जो हैं बहुत कारगर हैं, तो कृपया अर्क के बारे में बड़े तफसील से बताएं।
0: देखिए अरक जो है ये आम तौर से हम उस वक्त देते हैं जब महसूस हो कि जिगर में सूजन है या जिगर बढ़ गया है, तो उस सूरत में जो अरक मकोह है, अरक कासनी है, अरक ब्रंजासफ है, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। और अगर ये लगता है कि गैस वैस ज्यादा बन रही है, तो उसमें अरक अजवाइन को बढ़ा देते हैं और
3: फैटी लिवर में भी देते।
0: जी जी, तो ऐसी कैफियत में जो है, बहरहाल ये जानना जरूरी है कि अरक का इस्तेमाल कौन कौन से एक साथ किए जाएं। तो ये जो तीन अरक हमने बताए हैं शुरू में, ये तमाम सारे फैटी लिवर हो या लिवर एनलार्ज हो या और कोई कैफियत है तो, या सूजन आंतों में हो बड़ी में, तब भी देते हैं हम इसे। तो चूंकि इसका असली काम जो है स्वेलिंग को कम करना है और फैट को डिजॉल्व करना भी है, इसीलिए फैटी लिवर में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होता है। तो खास तौर से अगर एक साथ हम चार अरक इस्तेमाल करें, कासनी, अरके मको, अरके बादियान और अरके ब्रंजासर, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। इसको कम से कम यह है 15 ml ईच सभी को जो है, चूंकि तफसील से जानना चाह रहे हैं वो कि हम अरकियात के बारे में, जो अरक का महत्व तो बहुत ज्यादा उन्होंने पूछा, बताया, समझा भी है, और जाहिर है कि ये अच्छा नॉलेज रखते हैं इस सिलसिले में, बड़ी अच्छी बात है। तो इनमें जो है एक कप में हम सभी में से 15-15 ml जो है, यानी चार चार ढक्कन कह लीजिए, जो बोतल का ढक्कन होता है वो भी एक पैमाना है उसका नापने का, तो उसे चार चार करके एक कप में रख लिया और एक साथ मिलाकर पी लिया। अगर अरक को हम खाली पेट पिए अजवाइन के अलावा, तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा। जीरे का अरक भी होता है, जीरे का अरक हम देते हैं सुबह नाश्ता के पहले सफूफ मुहज्जिल के साथ, जिसका पेट बढ़ा हुआ हो, फैट ज्यादा हो, उसे कम करने के लिए बहुत कारगर दवा है ये, और ये बहुत ही मशहूर क्लासिकल मेडिसिन है ये। तो हर जो अरक है, अरक नाना जैसा जिक्र किया हमने, अब आजकल सीजन में गर्मी है, इसमें हम अरक नाना मतलब कहते हैं पुदीना का अरक।

0: यानी पानी एक तरह का, तो उसे जो है जब हम कशीद करके बोतल में रखते हैं तो उसे आरक बोलते हैं। आरक का मतलब यह है कि उसकी पूरी जो है रूह को कशीद कर दिया, वो सब चीजें उसमें आ गई, और उसकी वजह से वो डाइजेस्टिव होता है, वजह नहीं एब्जॉर्बल होता है। बॉडी के अंदर कोई चीज हम खा रहे हैं, खाना कमाल नहीं है, उसे कहते हैं पचाना कमाल। पचाने से मतलब यही होता है वो चीज जो है एब्जॉर्ब हो रही नहीं हो रही है। तो ये बड़ा अहम मामला होता है, तो इसको समझना चाहिए। तो जो भी अरक इस्तेमाल करें उसमें ये जानना चाहिए कौन सा किसके लिए है और कब लिया जाए।
1: एक मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पित्त की थैली निकल चुकी है और जब से मुझे एसिड और गैस बहुत बनती है और अब तो एक काम और हो रहा है, अगर मैं ठंडा या बासी खाने से पेट फूल जाता है और टाइट हो जाता है, और टमाटर और अचार खाने से पेट में दर्द होने लगता है और नहीं खाता हूँ तो ठीक रहता है, डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, क्या करूँ?
0: हाँ, असल में जो इन्होंने बताया कि गाल रिमूव हो जाने की सूरत में जो लीवर का जूस हमें चाहिए, बाइल जूस इसे कहते हैं, उसके ज़्यादा ज़रूरत भर ना मिलने की वजह से ये होता है कि जो एसिड है ना वो बेस में तब्दील नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, किसी को हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एसिड बेस का बैलेंस जब नहीं रहेगा बदन में तो फिर ये दिक्कत पैदा होती है। इसमें जो दवा इनको इस्तेमाल करनी है बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, हर जगह मिल जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे पूरी तरह से फायदे में रहेंगे। वो ये है माजून दबीदुल वर्द, माजून दबीदुल वर्द। तो दबीदुल वर्द जो है ये 5 ग्राम, और ऊपर से जो है अर्क कासनी अर्क मको 15-15 ml, ये खाली पेट सुबह नाश्ता के पहले शाम खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा यह है कि शाम को सोते समय लेना चाहिए कि उस वक्त जवारिस शाही 1 चमचा शाम यानी डिनर के बाद ले लिया करें। यह तो बिफोर है माजून और अरक, और इसको लेना हमें आफ्टर
1: डिनर।
0: डिनर तो ठीक रहेगा इनको।
1: एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे श्रोता। हेलो,
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, दोनों को।
0: हाँ भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
2: डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, गाँव करनाल है जी।
1: जी बताइए।
2: अच्छा सर, मेरा भाई है छोटा मेरे से, उसकी 42 साल उम्र है और उसको जो है ना भूख नहीं लगती, और वो 2009 से यानी 17 साल से मेंटल इलनेस की दवाई खाता है सर, और रोटी बिल्कुल नहीं खाता, ठीक तरह से नहीं खाता, थोड़ी बहुत ही खाता है जी। तो क्या किया जाए उसको? और मेरी प्रॉब्लम, मैं अब अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ सर।
0: ठीक है भाई, के लिए जो है आप जो है जवारिश तमर हिंदी ले लीजिए, जवारिश तमर हिंदी, तमर TMAR तमर, यानी ता मारा जवारिश तमर हिंदी, ये आधा आधा चमचा सुबह शाम खाली पेट उनको दीजिए, और खाने के बाद उनको हब्बे कबीर नौशादरी दीजिएगा, दो दो गोलियां। आवाज शायद इनकी अब
1: आवाज
0: डिस्कनेक्ट हो गई है। बहरहाल वो भाई को उनके हमने बता दिया, वो दवाओं की जो खुश्की होती है, जो अंग्रेजी दवा हम खाते हैं आमतौर से, उसकी खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। खैर, तो ये दवा जो है जो हमने उनको बताया तो उससे उनको राहत मिलेगी।
1: आज रेडियो डॉक्टर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समझ डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे नुस्खे हैं कि आज इन्हें लोग आसानी से अपना सकते हैं जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए, इस पर हम और भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। इस पर अभी हम जानेंगे कि यूनानी मेडिसिन में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसे हम आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: सलाम अलैकुम।
3: जी वालेकुम सलाम।
2: हाँ जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन।
3: शुक्रिया साहब, फरमाए।
2: सर मेरे अभी करीब एक साल हुआ तो मेरे वो निकल आई थी हर्फीस।
3: जी जी।
2: तो मैंने ये आपके जो यूनानी से ही दवा खाई, अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत फायदा हुआ मुझे, एक साल हो गया।
3: जी जी।
2: तो ये दाने दाने से थे, तो इसमें हमारे लिए उन्होंने एक तो मरहम लिखा था। मरहम है सफेद काफूरी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक।
2: और एक इसमें था हमारा ये शरबते उन्नाब।
3: जी।
2: और एक थी इसमें माजून दबुल दर्द।
3: माजून दबीदुल वर्द था, ठीक है।
2: जी हाँ, ये तीन चीजें थी सर। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे ये गर्मी पड़ी है मुझे, इसमें खुजली सी दोबारा लगने लगी है, क्यों फिर ये दोबारा यही दवाई खाई?
3: नहीं, अब आप माजून उशबा ले लीजिए।
2: माजून
3: उशबा।
2: मुशबा। अच्छा,
3: उशबा। ऊ बड़ा शाह और बा उशबा।
2: हाँ मुशबा। अच्छा,
3: माजून उशबा हो जाएगा, और साथ में जो है शरबत उन्नाब लेते रहिएगा।
2: जी जी जी।
3: और अगर कहीं आपको नीम के फूल मिल जाए, फूल
2: नीम के,
3: हाँ, या नीम का तेल मिल जाए।
2: जी जी।
3: तो ज्यादा अच्छा है, नीम के तेल इस्तेमाल कीजिए, आसानी से मिल जाता है।
2: अच्छा हाँ, क्योंकि मैं अभी वहाँ गाजियाबाद गया था, वहाँ यूनानी बहुत अच्छा अस्पताल है, वहीं से ही दवा चली थी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक है, गाजियाबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन।
2: जी जी हाँ हाँ।
3: तो वो है, बहुत अच्छा है, वहाँ से आपने सही जगह आप गए, और जाहिर है कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यूनानी का।
2: जी मैं हाँ उसी से ही, मुझे बताया था उस टाइम में किसी ने कि भी वहाँ चले जाओ।
3: नहीं, नहीं, अच्छा किया, और फिलहाल आप नहीं ले लो, काफी रहेगा।
2: ठीक है जी, शुक्रिया जी। और आप आते हैं जी डॉक्टर के उसमें, यहाँ प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा लगता है सभी को जानकारी।
3: जी इसमें आकाशवाणी का बेहद शुक्रिया।
2: हाँ जी, जितने भी हमारे साथी सुन रहे हो भाई, हम उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं, दोनों डॉक्टरों और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून। वो पूछते हैं कि यूनानी चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए क्या खान पान व कौन सी दवाएं ले सकते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
3: जी काफी अच्छा सवाल इन्होंने किया, हालांकि आज का प्रोग्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, लेकिन जाहिर है कि इससे रिलेटेड भी है, तो खाने पीने में ख्याल रखें, समय से खाएं और नींद पूरी लें। इसके लिए एक खमीरा आता है, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार उदय सलीब वाला। एक बार और बोल देता हूँ, लिख लीजिए, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार उदय सलीब वाला। ये रोजाना 5 ग्राम सोते वक्त इस्तेमाल करें, और सुबह सवेरे जो है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाले आधा चमचा, इसका इस्तेमाल लगातार कम से कम 6 महीना कीजिए, जिससे काफ़ी आपको सुकून मिलेगा और दिमागी तवाजुन भी अच्छा बनेगा। और यह है कि खाने पीने में ख्याल रखें, कब्ज ना होने पाए और गैस कम बने। आप जो कुछ हम खाते पीते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है एक उम्र के साथ कि हमें क्या चीज़ नुकसान कर रही है, क्या फ़ायदा कर रही है, उसी लिहाज से अपना खाना पीने का चयन करें तो अच्छा रहेगा।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड बर्निंग मैच्योरेशन के लिए यूनानी चिकित्सा बताएं, अनिल गुरुग्राम से।
3: जी इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये शुगर पेशेंट हैं या, बहरहाल अगर शुगर पेशेंट हैं तो उनके लिए शरबत बजूरी SF के नाम से आजकल आ रही है, कुछ कंपनीज बना रही हैं जो शुगर फ्री है, लेकिन जो शुगर फ्री, जिनको शुगर नहीं है उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो शरबत बजूरी मोतदिल, ये क्लासिकल मेडिसिन यूनानी की हर जगह मिल जाएगी, 2-2 चमचा सुबह शाम नाश्ते के बाद, शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है माजून दबीदुल वर्द, ये सुबह शाम लंच और डिनर से पहले 5 ग्राम, और बिफोर ब्रेकफास्ट जो है माजून फलासफा 1 चमचा इस्तेमाल करेंगे, तो इससे कुछ दिनों के बाद उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता यह है कि माजून दबीदुल वर्द के साथ साथ जो है वो अरक कासनी, अरक मकोह और अरक ब्रंजासा भी इस्तेमाल करें।
1: एक और मैसेज हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब नमस्ते, हमें गैस बहुत बनती है और पेट गुड़गुड़ करता है, क्या

0: प्रोग्राम सुनती रहती हूँ और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी परेशानियों का इलाज हो सकता है और सेहत के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो ये कहते हैं कि इनको है ना अलग अलग भाषा का मतलब अलग अलग स्टेट्स का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन कभी कभी ने डर भी लगता है कि सुबह का खाना शाम को खाती हैं तो कभी कोई बीमार ना पड़ जाए। तो ऐसे में हम क्या करें कि जिससे बीमार ना पड़े और सही रहे।
1: जी, काफ़ी अच्छा सवाल है इनका। और जाहिर है कि अगर उनका पेट ठीक है तो बहुत सी बीमारियों से खुद ब खुद बच सकते हैं वो। इन्होंने जैसा कि काफ़ी सैलानी टाइप का सवाल किया, इन्होंने तमाम सारे स्टेट्स के अलग अलग फूड्स हैं, तो अच्छी बात है, इनको तजुर्बा भी अच्छा है। लेकिन यही ख्याल करें कि हर इलाके का जो भी वो कहते हैं ना कि एक रवायती खाना जिसे कहते हैं, जैसे बिहार में चले गए आप तो वहाँ के लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है, तो यकीनन वो बड़े काम का होता है और लोग खाएं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा वगैरह बहुत मशहूर है, ये मजबूत खाना भी है। उसमें यह है कि घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कई बार लोग, घी का इस्तेमाल कम किया जाए। और रहा सवाल ये कि दिल्ली तो यानी समझिए कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ तो हर तरह का खाना मिलता है, तो उन जगहों पर खाना खाया जाए। अगर कोई आदमी टूर पर निकला हुआ है तो सोचे कि मुझे कहाँ खाना चाहिए, तो वो ख्याल रखें कि जिस जगह होटल पर भीड़ ज़्यादा हो तो उन होटलों पर खाएं तो अच्छा रहेगा। उसकी वजह क्या है, वहाँ आम तौर से महसूस कर लिया जाएगा कि ज़्यादा
0: लोग खा चुके
1: खा
0: हैं, खा
1: चुके
0: रहे
1: हैं और
0: हैं।
1: खा रहे हैं, ताज़ा हो रहा होगा, ज़रूर खाना ताज़ा मिलेगा।
0: ये तो आपने हमें बताया कि जनरल में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बचाव के लिए यूनानी उपचार कैसे करें। सबसे पहले तो बच्चों के लिए बताइए कि बच्चे क्योंकि दिन भर काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं, बाहर गर्मी में खेलते भी हैं, तो उनके बचाव के लिए क्या करें।
2: उनको जब भी देखें कि ज़्यादा बाहर से खेल के आए, ज़्यादा कुछ ऐसा उनको थकान है कुछ है, तो कुछ घर में ऐसा ड्रिंक बना लें जैसे शुगर है, नमक है, लेमन है, ये चीज़ें बना के उनको ये दें। और इसके अलावा हमारे पास शरबत होता है, शरबत अनार है, आंवला है, आमला है, शरबत आमला एंड शरबत अनार, ये दे सकते हैं। और एक ड्रिंक बना के रखें जैसे जिसको ओआरएस की ही उसको एक शक्ल कही जाएगी, जिसमें कि लेमन है एंड नमक एंड शुगर मिला के थोड़ा सा जीरा भुना हुआ डाल दें, उसको दे सकते हैं, पिला सकते हैं उसको पानी में डाल के। आमले का शरबत बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा इस वक्त, उसको भी दें। और इसका भी बहुत, अगर उसको कभी ऐसा लगे कि हाँ लूज मोशन या कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेट की, तो शरबत बेलगिरी भी ऐड कर सकते हैं, दो दो चम्मच। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। रही बात प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में वैसे भी मेडिसिन थोड़ा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वही वही चीज़ जो हमारे पास जवारिश तमर हिंदी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, और हींग की गोली आती है जिसको हल्दी बोलते हैं, है ना, उसको दो दो गोलियां दे सकते हैं, उसके लिए बेहतर होगा। पानी वक्त पे पिए और शरबत आमला और शरबत अनार ये सब चीज़ें लेती रहे, इससे बहुत बेहतर
0: और
2: बेहतरीन रहेगा।
0: बुजुर्गों के लिए क्योंकि कई बार तो एकदम सर्दी होती है, कई बार एकदम गर्मी होती है, तो बदलते मौसम में कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो बुजुर्ग क्या करें।
2: बुजुर्गों के लिए तो भी यही सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें हमें लीवर की मेडिसिन थोड़ा ऐड करके रखना चाहिए बुजुर्गों के लिए। माजून दबी दिवर देना चाहिए उनको, जवारिश पुदीना विलायती देना चाहिए, एंड यही जैसे गोंद कतीरा है, चिया सीड, इन सब चीज़ों का वो थोड़ा सा शरबत बना के वो लेते रहें, पीते रहें। गुड़ का भी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इन सारे शरबतों में। शक्कर ना यूज़ करके, शुगर ना यूज़ करके गुड़ का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना जी।
0: एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं, सर मुझे गर्मियों में लूज मोशन की शिकायत रहती है 15 दिन में, तो सर यूनानी चिकित्सा में कोई इसका इलाज है।
1: जी, काफी अच्छा सवाल इन्होंने किया है। एक तो यही है कि जवारिश अनारायण का इस्तेमाल ये सुबह नाश्ता के पहले आधा चमचा सादे पानी से कर लें, ये काफी बेहतर रहेगा। और चूंकि गर्मियों में खास तौर से उनको शिकायत रहती है तो खाने का खास ख्याल रखें, उसमें बाहर की तली हुई चीज़ें जो आजकल फैशन में मोमोज वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं, जंक फूड्स वगैरह, उसका इस्तेमाल कम करें। और जो सीजन में कुदरत ने हमें दिया है, आम का इस्तेमाल है, केला है, पपीता है, अनार है, ये सब इस्तेमाल करें, अनानास है, इसमें जो उनको मिल जाए आसानी से कोई एक फल ज़रूर लिया करें, क्योंकि ये जो मौसमी फल है ना, कुछ तो सदाबहार फल है, जैसे अनार है हमेशा मिलता रहता है, पपीता हमेशा मिलता रहता है, अनानास है ये भी आमतौर से मिलता रहता है, ये सब डाइजेस्टिव भी हैं और काबिज भी हैं, तो उनको जो लूज मोशन शिकायत दूर हो जाएगी इससे।

0: इसके अलावा यह है कि वो एक गोले रात को सोते वक्त हब्बे सुमाक, सु मापरा का और का सुमाक, एक गोले रात को सोते समय ले लिया करें, ये बहुत काफी उनके लिए रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर सुफिया हुसैन ने बहुत सारे मशरूबात का जिक्र किया है, शरबत आमला है, शरबत अनार है, सब इस्तेमाल करें बहुत फायदा रहेगा। शरबत बेलगिरी है, ये काफी हमारे यहाँ चलन में है, लोग यूज करते हैं। बेल का मुरब्बा भी लोग इस्तेमाल करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद थोड़ा सा ले लिया, ज्यादा लेकिन ना लें, ये ख्याल रहे, चूंकि इन सब का मिजाज ठंडा होता है, तो ज्यादा ले लेने में ये नुकसान होगा कि हमें बदन में दर्द भी हो जाएगा और ज्वाइंट वालों को खास तकलीफ पड़ जाएगी। तो इसीलिए डॉक्टर के मशवरे से ही दवा ली जाए, कितना लेना है ये जरूरी है जानना, 10 ग्राम ज्यादा ना होने पाए,
1: सही मात्रा में लेना भी आवश्यक है।
0: जी जी
1: जी, इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हाय हियर रिंकू, याददाश्त बढ़ाने के लिए यूनानी मेडिसिन में दवाई है सर तो बताएं।
1: बहुत अच्छी दवा यूनानी में है। एक तो खमीरा गौजवान अम्बरी जवाहर वाला, ये सुबह सवेरे रोजाना इस्तेमाल करें वो। और अगर ये महंगा लगे तो इसका खमीरा गौजवान सादा भी आता है, तो सुबह नाश्ते से पहले एक चमचा इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें एक अदद अखरोट का इस्तेमाल करें। ये एक अखरोट रोजाना यूज़ करना, एक से ज़्यादा नहीं। या 5 बादाम रात को भिगो दिया, सुबह छील करके उसका छिलका निकाला, फिर उसको इस्तेमाल किया। लेकिन इन सबको खाने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, अच्छे तरह से चबाएं, क्योंकि अब ये मौका तो लोगों के पास है नहीं कि सील पर घिस करके इस्तेमाल करें। हालांकि बादाम घिस कर पहले इस्तेमाल किया जाता रहा, बड़ी फुर्सत रहा करती थी, तो चलिए कम से कम, अगर इतना मौका नहीं है तो देर तक उसे चबाएं। तो ये दो चीज़ का इस्तेमाल करें तो इनकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिकल मेडिसिन यूनानी में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत आम दवा है जो हर जगह मिल जाएगी, दवा भी और ड्राई फ्रूट भी।
0: ये तो आपने बताया कि क्या हम ले। एक मैसेज हमारे पास आया, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि आप मुझे वेट कम करने के लिए कुछ बताएं, पेट बहुत भार हो गया है। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
1: एक तो यह है कि इन्हें जो नॉनवेज है उसका इस्तेमाल कम करना है। इसी के साथ जो है, कटहल, गोभी, बैगन, अरवी, राजमा, उड़द, पूड़ी पराठे, इसका इस्तेमाल भी कम करना है, जितना कम हो अच्छा है। दूसरे, सफूफ मुहज्जिल और अर्क जीरा, ये सुबह सवेरे नाश्ता से पहले, जब भी नाश्ता करने बैठे पहले इसको इस्तेमाल करना। एक चमचा सफूफ मुहज्जिल और ऊपर से 4 चम्मच, बड़ा 4 चम्मच जीरे का पानी, वो इस्तेमाल कर लिया करें। इसके अलावा यह है कि ये खाने में सुबह शाम खाना खाने के बाद जो है, हब्बे कबीर नौशादरी 2 गोली इस्तेमाल कर लिया करें, इससे उम्मीद है। और सलाद का इस्तेमाल जरूर करें, सलाद या मौसम का कोई फ्रूट, जो फ्रूट इनको अच्छा लगे वो खा लिया करें।
0: लेकिन जैसे कि कई लोग होते हैं कि डायबिटिक हैं और साथ में उनको अल्सर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे तो वो क्या करें, क्या लें, अगर डायबिटिक भी है और अल्सर भी है, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग और लूज मोशन की भी कई बार शिकायत आ जाती है साथ में।
2: उसमें आप, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है अल्सरेशन के लिए। एक तो अगर आपको माउथ में हुआ है, अगर माउथ में हुआ है तो हमारे यहाँ जरूर कुला करके एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, वो ले सकते हैं। अर्कयात भी ले सकते हैं, इसमें अर्क मको और अर्क बादियान, अर्क कास्ती वो ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा।
0: और अगर पेट में अल्सर है डायबिटिक के साथ,
2: उसमें भी अर्कयात का असर, अर्कयात का ही इस्तेमाल करेंगे हम ज़्यादातर, क्योंकि उसमें हम मीठी, ये दवाइयाँ हमारी मीठी होती हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, या तो टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, या फिर जो है अगर उसको नहीं है शुगर तो फिर तो उससे मीठी ही दवा दी जाएगी। इसमें कैप्सूल वगैरह भी दे सकते हैं हम, जिग्रीन हमारे पास बहुत अच्छी आती है ना, और बाकी हबे कभी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम शरबत के भी उसमें दे सकते हैं शक्ल में। अगर शुगर है तो फिर सिर्फ अर्कयात पे डालेंगे एंड टेबलेट पे डालेंगे, और अगर शुगर नहीं है तो मैं उसमें माजून और जवारिश भी ऐड कर सकती हूँ, है ना। माजून दबीदुल वर्द का बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसको ज़रूर देना चाहिए। इसलिए अर्क के साथ अर्क अजीब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं जी।
0: तो कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को भूख लग रही होती है, किसी को नहीं लग रही होती है, और किसी को डाइजेशन नहीं हो रही होती है, तो उन तीनों केसेस में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए यूनानी चिकित्सा

0: क्या है?
1: हाँ, यूनानी में असल में अगर वाकई भूख नहीं लग रही है तो हम उसका काज देखते हैं कि क्यों नहीं लग रही है। लीवर में गड़बड़ी है या उसके आंतों में गड़बड़ी है, पेट में कोई खराबी है, एसिडिटी ज़्यादा है वगैरह। इसमें हमारे यहाँ जैसा कि बताया, जवारिश तमर हिंदी के साथ एक गोली आती है, हब्बे कुर्स तुरश मुश्तही, तुरश मुश्तही कहते हैं उसे। मुश्तही मतलब इश्तहा यानी भूख लगाना। वो गोली होती है, खाना खाने के बाद दो दो गोली देते हैं उसको। इसके अलावा हम मेन काज पर जाते हैं, ये देखते हैं कि उसको असल वजह क्या है भूख ना लगना, तो भी दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये दवा जो है, जैसे कि दवाएं वो दी जाती हैं कि फौरी तौर पर उसके लिए काम आए, जैसे बुखार है किसी को, थोड़ा बुखार दे दिया पहले कि भाई बुखार उसका उतरे, थोड़ा आराम मिले, क्यों हुआ वो बात की चीज़ है, वो देखा जाएगा। तो ऐसे ही है, भूख ना लगना ये एक बीमारी है, एनोरेक्सिया। सीधी सी बात है कि उसका हमें काज देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। जिगर कमज़ोर में आमतौर से ऐसा होता है, और कई मरतबा ऐसा होता है कि जो है वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उसका सिक्रेशन कम होता है, तो देखना ज़रूरी होता है। हमारा खाने की जो सोचना ही चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, वो मुंह से शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, तो उससे सलाइवा लार, सराल या लार जो भी बोलते हैं लोग अपने जबान में, इलाके वाइज मशहूर है। तो जब हम, इसीलिए कहा गया खाना चबा चबा के खाओ, तो जो कुछ हम खाएंगे तो देर तक चबाएंगे, तो चबाने में वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना वो अपना पूरा काम करेंगे, सिक्रेशन अच्छा होगा और वो लपेट भी देगा उसे, तो वो आधा सिस्टम शुरू हो गया, यही आधा डाइजेस्ट हो गया सह लीजिए। फिर वो जाएगा नीचे मैदे के अंदर, स्टमक में, स्टमक में जो जाते ही जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो उस बाहर से आए हुए फूड को, हमारे जो भी हमने खाया इनटेक किया, उसको जो है वो क्या करता, दो काम करता कि अगर ख़राब है किसी किस्म वजह से तो उसको तेजाबियत में लग रख करके यानी शुद्ध कर देता है, जैसे आग जला देती है, ऐसे ही उसका काम यही है, दूसरे सड़ने से बचाए। ये दो काम है तेजाब का, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे यानी मैदे में निकलती, खाते फौरन कुदरती तौर पर, जैसे हमने मुंह में रखा ने वाला, ऑटोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई, सलाइवा आ गया, ऐसे ही जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, तो HCl वो निकलना शुरू हो जाता है।
0: तो कुछ ऐसे यूनानी नुस्खे हैं जिन्हें हर कोई अपना सकता है और अपनाकर दुरुस्त रह सकता है, डॉक्टर सूफिया?
2: आदमी खाने पीने का ख्याल रखे और फ्रेश खाना खाए, रात का रखा हुआ या कई दिनों का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ें। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा लीवर अगर सबसे बेशकीमती है तो उसको अच्छा बना के रखेंगे, उसी से सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेट की। तो नुस्खों में तो आप ये है कि जवारिश वगैरह ही दे सकते हैं एंड मक्को दे सकते हैं, सफ़ूफ़े हाजिम हमारे पास एक बहुत अच्छा आता है, नमक शेखुल रईस बहुत अच्छा आता है जो कि आप सलाद पे डाल के खा सकते हैं। फ्रूट का इस्तेमाल अच्छे से करें आप, और खाने का जो भी खाना आप खाएं वो फ्रेश होना चाहिए। उसके अलावा उसमें मसाले का बहुत परहेज़ होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें जो घर में चीज़ें हों उसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
0: और डॉक्टर सैयद, आप कुछ बताएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम अपने डाइजेशन को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि क्या खाएं क्या ना खाएं वो तो सब बता दिया,
1: जी,
0: लेकिन डाइजेशन मजबूत कैसे बनाएं?
1: बस इसमें ये ख्याल रहे कि हमारा लीवर जो है, जो सदियों से हुक्मा ने ये सिफारिश की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, उसके लिए लीवर यानी जिगर का सही होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखें। इसके अलावा जो है, आदत में किसी दवा का इस्तेमाल ना रखें, लेकिन ज़रूरत पर सफ़ूफ़े हाजिम ये बना बनाया भी आता है, हम बना भी सकते हैं घरों में। जैसे उसमें जो अहम जुज है वो है सौंफ का, अजवाइन का, जीरे का, जीरा दो तरफ सफ़ेद और काला होता है, दोनों ले लिया जाए, नमक काला हो, और जो हम नमक खाते हैं नमक खुरदनी कहते हैं उसे, नमक लाहौरी, इन सब का मिक्सचर बना करके, हम वजन कहते हैं बराबर बराबर, जैसे 10-10 ग्राम ले लिया सबको, उसमें काली मिर्च है वो ले ली जाए, इसका एक पाउडर बना के रख लें हम, तो ये चीज़ जो है बहुत बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रहेगा, ये हम इस्तेमाल करें, और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर रखें।
0: वैसे समय हमारा जाने का हो गया है, लेकिन चलते चलते एक मैसेज हमारे पास आ गया है, तो मैं शॉर्ट में आपसे लेना चाहूंगी कि वो लिखते हैं कि सर, एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन से निकाला जाता है, यूनानी मेडिसिन में कोई दवाई है जिसकी गॉल बैडर स्टोन घुल जाता हो या खत्म हो जाए।
1: असल में
0: रिकू सिंह,
1: हाँ ये बहुत

0: यही
1: उसी में।
0: सवाल इन्होंने किया है, अच्छा सवाल है। इसमें चूंकि यूनानी में जो है हम दवाएं जो देते हैं वो लीवर के इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, ये सर्जिकल केस असल में है, इसलिए हम इसको रेफर कर देते हैं ताकि इलाज बिलियत के तौर पर यानी सर्जरी उसकी आसानी से हो जाए और उससे फायदा उठाए वो।
1: तो वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाते जाते एक लाइन में संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या देना चाहेंगे डॉक्टर सैयद, आप बता दीजिए संदेश हमारे श्रोताओं के लिए।
0: देखिए काफ़ी अच्छे सवाल आता है और मुख्तसर बात यह है कि हमने सबसे पहले भी ये बात कही थी कि सादा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, समय से खाना खाएं और समय से सोएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुश रहें और खुशखबरी रहें जब सेहत हमारी अच्छी होगी।
1: और डॉक्टर सूफी आप क्या संदेश देंगी?
2: मेरा भी यही कहना है कि खाना फ्रेश खाएं, ताज़ा खाएं, वर्जिश करें, नींद अच्छी लें और खुश रहें।
1: तो दोस्तों धूप की गर्मी पर हमारा बस नहीं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में जरूर है। तो पानी भरपूर पीजिए, संतुलित आहार लीजिए और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पेट रहेगा दुरुस्त तभी जिंदगी रहेगी मस्त। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर सैयद अहमद खान यूनानी एक्सपर्ट और डॉक्टर सूफिया उत्साही चीफ मेडिकल ऑफिसर यूनानी मेडिसिन CGHS। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन भर की एक सतत यात्रा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहे, सजग रहे, मुस्कुराते रहे, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती हुई युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश की वजह से टॉस अब तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। सोशल नेटवर्किंग है क्या आखिर? सोशल नेटवर्किंग दोस्तों परिवार, सहपाठियों यानी क्लासमेट्स, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया कार्यक्रम का उपयोग है। ब्रांड पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए मार्केटर्स सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं। लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है। इंटरनेट पर मज़ेदार और दिलचस्पी चीज़ों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे। आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है। कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या क्या सोशल मीडिया है।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

0: 0951522739। आई रिपीट 0951522739। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहाँ से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज्यादातर 18 इयर्स या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी जिंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त।
1: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 0951522739। आई रिपीट 0951522739। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। इस बार लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम अल्फा जैन, जहाँ सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ, और यहाँ पर इस वक्त आप अभी सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, जहाँ आज हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। देखिए, डिटॉक्स बहुत सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम बात करें खुशी के डिटॉक्स फॉर्मूला की, अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या होता होगा। तो देखिए, खुश रहना हम सब चाहते हैं, लेकिन खुश रहना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी खुशी छीन लेती हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये बातें, जाहिर सी बात है, जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम छोड़ दें तो हमारी खुशी जो है वो अपने आप हमसे मुलाकात करने आ जाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम करते हैं और इस वजह से हमारी जो खुशियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें कौन सी हैं, आखिर किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, कौन सी वो चीज़ें हैं जो खुशी को कम कर सकती हैं, और खुश रहने के लिए इस डिटॉक्स फॉर्मूला को फॉलो करते हुए किन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए, तो बस बने रहिए मेरे साथ, बताऊंगी गाने के उस पार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ और प्रोग्राम यहाँ पर सुन रहे हैं अल्फा जैन। हम यहाँ आज कह रहे हैं लेट्स डिटॉक्स। अब डिटॉक्स की बात शुरू हुई है तो मैंने जिक्र किया खुशियों के डिटॉक्स फॉर्मूला का, यानी कि वो डिटॉक्स फॉर्मूला जिसमें कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है अपनी खुशी के लिए। और ये वही चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब ये हमारी खुशियों की दुश्मन बन जाती हैं। सबसे पहले पता है आपको क्या छोड़ना है? सबसे पहले आपको छोड़ना है हर किसी को खुश करने की आदत। सबसे पहले आपको छोड़ना है वो गिल्ट जो अपनी खुशी के बारे में सोचने पर आता है लेकिन सबकी खुशियों का बहुत ख्याल रखता है। क्योंकि जब आप दूसरों की खुशियों की बहुत फिक्र करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की खुशियों की फिक्र मत कीजिए, अपनी खुशी की फिक्र करना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ अपने अपनों की खुशियों का ख्याल रखिए, उन लोगों की खुशियों का ख्याल रखिए जिनकी शायद आप मदद कर सकते हैं, पर इन सब के साथ कुछ बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। वो बाउंड्रीज जो आपको तब सेट करनी होगी जब आपको लगे कि दूसरे की खुशी का ख्याल रखते रखते आपकी खुशी कहीं खो रही है। जब आप दूसरे के किसी काम के लिए हाँ करते करते अपनी खुशियों को कब ना कह दे रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको कई बार कुछ चीज़ों के लिए ना कहना होगा, कई बार सबसे ऊपर खुद को रखना होगा, क्योंकि जितनी ज़रूरी किसी और की खुशी है उतनी ही ज़रूरी तो आपकी खुशी भी है ना। तो इस चीज़ की शुरुआत कीजिए और कभी कभी ना कहना, खुद के लिए रुकना, खुद की खुशी को ऊपर रखना सेल्फिश होना नहीं होता है बल्कि अच्छा होता है।

0: आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: आए हाय,
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
8: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
7: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
8: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
9: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आपके साथ यहाँ पर हूँ मैं दीपिका। बातें हम कर रहे हैं कि कौन सी हैं वो बातें जिन्हें बिल्कुल हटा देना है, जिन्हें बिल्कुल छोड़ देना है रहने के लिए खुश। सबसे पहले जिक्र किया मैंने कि कई बार जो हम दूसरों को खुद से पहले रखते हैं, ना नहीं कह पाते हैं, अपने बारे में सोचने में भी गिल्ट महसूस होता है, इसे साइड करिए। दूसरी चीज, पुराने जो ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं ना हमने मन में, किसी इंसान के लिए, किसी इंसान ने किसी वक्त पर कुछ कह दिया था उसके लिए, अब उन ग्रजेस को जरा छोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप उस इंसान को अगर माफ नहीं कर सकते तब भी माफ कर दीजिए। हो सकता है सबकी लाइफ अलग अलग जर्नी से गुजरती है, सबकी लाइफ में अलग अलग फेज आते हैं। अब आपकी नाराजगी की क्या वजह रही ये आप जानते होंगे, बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो ऐसे में आप माफ कर पाएंगे या नहीं ये बेशक आप पर निर्भर करता है। पर हाँ, उन ग्रजेस को, उन बातों को बार बार याद करना, उस शिकायत को मन में रखना, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इससे आपकी खुशियां जरा सा आपसे दूर हो रही हैं। एक और चीज जो आपको छोड़नी है वो है निगेटिव थिंकिंग। हर चीज़ में निगेटिव हो जाना, काम शुरू होने से पहले ही ये सोच लेना कि ये काम तो हो ही नहीं पाएगा, ये वाली जो निगेटिव थिंकिंग है ना, इसे भी आपको छोड़ना है। मैं मानती हूँ कि निगेटिव थिंकिंग हर बार हम अपनी मर्जी से नहीं लेकर आते, या ऐसा नहीं है कि हम सोचते ही हैं कि नहीं अब तो निगेटिव ही सोचना है। चीज़ें उस तरह से होती हैं कई बार कि हम चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पाते, कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं सोच पाते। पर ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आकाशवाणी FM रेनबो आपके साथ है, आपकी दोस्त दीपिका। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहां हम कह रहे हैं लेट्स डिटॉक्स। हम बात कर रहे हैं खुशी के उस डिटॉक्स फॉर्मूला की, जिसमें कुछ चीजें आपको बिल्कुल छोड़ देनी है अगर आपको रहना है खुश। एक और चीज जो छोड़ दीजिए अगर करते हैं, तो वो है बेवजह की तुलना। ये सोचना कि उसको ये क्यों मिल गया, मुझे ये क्यों नहीं मिला, उसको ये मिलना गलत है या मुझे ये मिलना चाहिए। तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही, हो सकता है आपकी बात ठीक हो। कई बार हम जो महसूस करते हैं, दिल से महसूस करते हैं, वो ठीक होता है। हो सकता है हमने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की हो, अपना सब कुछ, जिसको कहते हैं एफर्ट लगाए हो, सारी चीजें की हो, लेकिन फिर भी हमें वो चीज नहीं मिल पाई हो, और कोई और इंसान हमारे आगे उस चीज को अपना बनाकर बैठा हुआ है, और हमें ये भी दिख रहा है कि शायद उसने उसके लिए उतने एफर्ट्स नहीं किए थे। लेकिन इस तरह से कंपैरिजन करने से सिर्फ तनाव बढ़ता है। आप अपनी जर्नी पर, अपनी रफ्तार पर भरोसा रखिए, और इस बात का भरोसा रखिए कि अगर आपके एफर्ट्स सच्चे हैं, अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने सच्चे दिल से कोशिश की है, तो ज़रूर एक ना एक दिन आपको वो सारी चीज़ें मिली।

हाँ जी, तो आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आज हम ढूंढ रहे हैं खुशी का डिटॉक्स फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जिसमें छोड़नी है कुछ चीजें और मिल जाएगी ढेर सारी खुशियां। बहुत सारी बातों का जिक्र यहाँ पर हम कर चुके हैं, एक और चीज जो ऐड करना चाहूंगी वो है कि अगर खुश रहना चाहते हैं तो बीते हुए कल का बोझ छोड़ दीजिए मेरे दोस्त। बीते हुए कल में जो बीत गया उसको आप बदल नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि बीते हुए कल को भूलना आसान नहीं होता, कभी अपनी गलतियाँ याद आती हैं, कभी लगता है कि काश उस पल ऐसा कर दिया होता, कह दिया होता, पर इवेंचुअली सच यही है कि आप उसे बदल नहीं सकते। यू कांट चेंज योर पास्ट। तो ऐसे में बार बार उस बारे में सोच कर खुद को तकलीफ देने से बेहतर है कि उस बारे में सोचना कम कीजिए या छोड़ दीजिए।

हाँ जी, मुस्कुराइए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जाते जाते यही कहूंगी आपसे, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं, प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे थे कहना चाहिए अब मुझे, अल्फा जैन, जहां हमने आज ढूंढा खुशी का डिटॉक्स फॉर्मूला। बहुत सारी बातों का जिक्र मैंने यहाँ पर किया, उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो खुशियाँ आपके पास ज़रूर आएंगी। और यूं भी मेहनत कीजिए, अच्छी सोच रखिए, प्योर इंटेंशंस रखिए, अपने एफर्ट्स अच्छे रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, तो खुशियाँ ज़रूर आपको मिलेंगी। क्योंकि खुशियाँ कोई मंजिल नहीं है, असल में जीने के तरीके में बदलाव करके भी हम बहुत खुशियों को पा सकते हैं। फिलहाल के लिए दीपिका को इजाज़त दीजिए, 5 बजे से आपके साथ जुड़ेंगी दीपांशी, लेकर आएंगी प्रोग्राम सिटी लाइट्स, शहर की हलचल से करवाएंगी आपको रूबरू। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते

गाते गुनगुनाते, जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि यही अपना ठिकाना है। हमें और कहाँ जाना है। इसी के साथ दीपिका को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई।

0: हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि वीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्नि वीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 6वें ओवर में 1 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम के इस वक्त उस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ साथ, जिसका करते हैं आप हर दिन इस समय इंतजार। जी हाँ, प्रोग्राम सिटी लाइट्स, जहाँ हम बात करेंगे कि अपनी दिल्ली में क्या कुछ खास नया चल रहा है, क्या कुछ है हमारे जानने के लिए, और ऐसा तो नहीं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। वेल, जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, और शुरुआत इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ।

गुड इवनिंग दिल्ली, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सिटी लाइट्स में। जिन भी लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, वो सभी श्रोता जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार फिर से बता दें, ये प्रोग्राम वही प्रोग्राम है जिसमें हम आपके साथ साझा करते हैं कि दिल्ली में, जी हाँ, अपनी दिल्ली में क्या कुछ नया चल रहा है जो शायद अभी तक हमने देखा नहीं है या उसे सुनने में मिस कर गए हैं। वेल, शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की वेदर के साथ। जी हाँ, मौसम ने क्या करवट ली है, क्या खूबसूरत करवट ली है मौसम ने। लेकिन उससे पहले आज के तापमान की अगर बात की जाए तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है। आज पूरा दिन जो है सनी रहा, जी हाँ, और हमें खिली खिली धूप देखने को मिली है। लेकिन ये जो प्री मानसून वाली करवट हमारे इस मौसम ने ली है, तो वेल, देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो मौसम है ना, वो भी हमें सरप्राइज करने में कहीं पीछे नहीं रहता है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार की अगर बात की जाए तो रात को हमने दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखी है, जिसने एक बार फिर से ये जो हमारे दिल्ली का मौसम है ना, इसके मिजाज को थोड़ा सा बदल दिया है। तेज हवाओं के साथ जहां बारिश ने मौसम तो सुहावना बना ही दिया, वहीं जिस गर्मी के साथ हम सभी जूझ रहे थे ना, उससे थोड़ी सी राहत हमको देखने को मिली है। वेल, इस मौसम को हमने खूब इंजॉय किया, चाहे आपने चाय के साथ इंजॉय किया हो, पकौड़ों के साथ इंजॉय किया हो, लेकिन बढ़िया बात यह है कि गर्मी से थोड़ी सी तो राहत हम दिल्लीवासियों को मिली गई है। लेकिन अगर हम इसकी मौसम विभाग की बात करें, तो मौसम विभाग का कहना है कि ये सिर्फ प्री मानसून जो गतिविधियां हैं उनका असर है। चलिए हम करते हैं मौसम को इंजॉय और इस प्यारे से मौसम में इस प्यारे से गाने को भेज रही हूँ आपके ओर, इंजॉय।

0: प्यार वे।
1: वेल, मेरा मानना ये है कि जितना प्यार हमारे जीवन में ज़रूरी है हम सभी के खुश रहने के लिए, हम सभी की एग्जिस्टेंस के लिए, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें। और जब सेल्फ केयर या सेल्फ खुद को प्यार करने की बात आती है तो उसे नज़रअंदाज करना कहीं भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम अपने खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम अपने जीवन में जो इतने ढेर सारे सपने सजाते हैं, इतने सारे माइलस्टोन्स के बारे सोचते हैं कि हमें ये भी पाना है, ये भी अचीव करना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए नेक्स्ट, इतने सारे जो टास्क पूरे करने हैं वो कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपने सेहत का ख्याल रखना, खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के चलते आप सभी को पता होगा कि 21 जून को हम सभी इंटरनेशनल योग डे मनाने वाले हैं, और इस कार्यक्रम को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मोटिव है, वो यही है कि हम जब योग को प्रैक्टिस करते हैं उसके द्वारा होने वाले जितने भी हमें फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, जितने भी उसके लाभ हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि हम सभी को ये एहसास हो कि ये कैसी प्रैक्टिस है जिससे हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो। तो इसी के चलते आज इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शलभासन की। अब जब हम इस आसन की बात करते हैं तो पहले जानते हैं, इसे लोकस पोज भी कहा जाता है, कि इसे किया कैसे जाता है। इसमें पेट के बल लेटकर किए जाने वाले इस बेहतरीन योगासन, जिसमें शरीर का आकार एक लोकस जैसा बन जाता है, और इसका जो इस आसन का हमें जो लाभ है उसे

आप राहत महसूस करते हैं और उसके साथ साथ जो पाचन क्रिया है उसे भी सुधारने में ये जो आसन है ये बहुत असरदार है। और इसका जो एक बेसिक इफेक्ट है वो हड्डी के रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को मजबूत करने पर आता है, और जिन्हें धीरे हल्का पीठ में दर्द रहता है वो इसमें राहत खुद महसूस कर पाएंगे। और जिन्हें वजन नियंत्रण करना है, जो अपने शरीर के वेट को लेकर थोड़े से चिंतित है, उनके लिए भी ये जो आसन है उसे खास तौर पर कारगर देखा गया है। इसे करने का जो इसकी जो करने की विधि है बहुत ही आसान है। सबसे पहले पेट के बल चटाई पर लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को सीधा व मिलाकर रखें, और उसके बाद क्या करना है, अपनी दोनों बाजुओं को अपने थाइस के नीचे दबा लें, और फिर हथेलियाँ जो है नीचे ज़मीन की ओर होनी चाहिए, और फिर हाथों को थाइस के पास मुट्ठी बांध कर रखें। उसके बाद गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े जितना संभव हो ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। इस बीच अपने सर को और अपनी जो चेस्ट है उसे ज़मीन पर ही टिका रहने दें। अपनी क्षमता के अनुसार इस अवस्था में कुछ सेकेंड आपको रुकना है, और सामान्य रूप से जैसे भी आप सांस लेते हैं सामान्य रूप से लेते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस ज़मीन पर ले जाएं, और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करें। एक बार कोशिश करके देखिएगा, धीरे धीरे जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आप महसूस करेंगे इसके जो लाभ हैं। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया, आज हमने बात की शलभासन की, लोकस्ट पोज की, एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और हमें बताना ना भूलिएगा कि ये आप कितने अच्छे से कर पाए और क्या इसे करने के बाद आपने कुछ चेंजेस नोटिस किए। कार्यक्रम सिटी लाइट्स में जुड़े हैं आप हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com।
2: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी FM रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, मैं हूं आपके साथ दीपांशी।

वेलकम बैक, आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट। सिटी लाइट में मैं हूँ आपके साथ दीपांशी। जब हम अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अपनी हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसी के चलते एक ऐसा इवेंट जो मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही अनोखा इवेंट है, और हम सभी को अगर मौका मिले तो हमें इस इवेंट का जो पार्ट है ज़रूर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक्सपो की। जी हाँ, IHFF 2026, जिसका आयोजन जो है वो अभी किया गया है 12 से 14 जून के बीच में। कल इसकी शुरुआत की गई और ये पूरा एक्शन पैक्ड एक्टिविटीज से भरा हुआ एक उत्सव ही कहूँगी, जहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे हमें ना केवल हमारा ज्ञानवर्धन होगा अपने हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव हमें एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर मिल सकते हैं। रविवार तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के फिटनेस के प्रति जो बढ़ती युवाओं की दिलचस्पी है और इससे व्यापक होते कुछ सेक्टर्स का आकार हम सभी को देखने को मिलेगा। इस महोत्सव के अगर पहले दिन की बात की जाए तो उसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का, फिटनेस सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के फिटनेस से जुड़े बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। और इसका आयोजन कल तक ही होगा, तो अगर आप में फिटनेस को लेकर कुछ उत्सुकता है, फिटनेस को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज की मशीन्स को लेकर हो, जिम के उपकरणों को लेकर हो, या एक जनरल वे में कि हमें किस तरह से बेनिफिट हो सकता है जब हम फिटनेस की अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं, और किस तरह से जब हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो किस तरह से हम भी उसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो जाना है वो हम सभी को ज़रूर एक बार ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से ये जो मूवमेंट है, ये केवल हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व स्तर पर किस तरह से ये जो फिटनेस मूवमेंट है ये किस तरह से आकार ले रही है। हॉल नंबर 5 भारत मंडपम, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक आप इसमें जा सकते हैं। 12, 13 और 14 जून यानी कल इसकी शुरुआत की गई है, आज इसका दूसरा दिन है और कल का आखिरी दिन रहेगा। यहाँ जाकर आप उन सारे ब्रांड्स को भी देख सकते हैं जिन्होंने अपने फिटनेस के इस बिज़नेस में ग्रोथ की है और किस तरह से आज ये जो इंडस्ट्री है अपनी पहचान बनाने में और अपने आप को एक बढ़ते हुए स्तर पर अपने को रिकॉग्निशन प्राप्त करने में किस तरह से इसने सफलता हासिल की है। तो ज़रूर जाइएगा, बनिएगा इस एक्सपो का हिस्सा। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक्सपो 2026 की।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में

यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैं हूं आपके साथ दीपांशी। और अब एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, एक ज़रूरी ऐसी खबर जो आप सभी के लिए जाना ज़रूरी है। और हम बात कर रहे हैं 2026-2027 के शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूल, जो विशेष सरकारी स्कूल हैं, उनमें होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली में संचालित 12 विशेष सरकारी स्कूलों में जो शैक्षणिक सत्र है 2026-2027 के लिए, एकेडमिक ईयर 2026-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण, जी हाँ, सेकेंड साइकिल ऑफ दिस एडमिशन, इसकी शुरुआत कर दी है। इसके तहत 26 जून 2026 की शाम 5 बजे तक इसमें आवेदन दिया जा सकता है। ये जो प्रक्रिया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्हें दृष्टि बाधा, श्रवण बाधा, बौद्धिक दिव्यांगता या अन्य किसी भी जो डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स है उसकी आवश्यकता है। इस विशेष स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक दाखिले की सुविधा उपलब्ध है, ताकि यहाँ हर स्तर पर बच्चों को जो अनुकूल शिक्षा है और उससे जुड़ा हुआ जो एक सहायक वातावरण है उसे दिया जा सके। और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो 27 जून से 30 जून का जो समय रहेगा, उसमें जितने भी संबंधित स्कूल हैं वो जो दस्तावेज हैं उसका सत्यापन किया जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब अभिभावकों को इस दौरान सभी जो मूल दस्तावेज हैं उसके साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार 7 जुलाई 2026 में यहाँ पर जो सीट्स हैं उसका आवंटन किया जाएगा, उसकी सूची जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभिभावक निदेशालय की जो आधिकारिक वेबसाइट है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू इस बात को चेक कर सकते हैं कि स्कूल में कहां पर कितनी सीट्स की उपलब्धता है। जिन स्कूल में सीट्स नहीं होंगी, वहां पर यदि आप आवेदन कर भी रहे हैं तो उस आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आवेदन में बच्चे का जो नाम है, उसकी जो जन्म तिथि है, उसकी दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है, पता है, अन्य जितने भी ज़रूरी विवरण हैं वो आपको भरने होंगे। और उसके बाद जिस भी स्कूल का चयन आप करना चाहते हैं और कक्षा का चयन आप करना चाहते हैं उसका चयन आप कर सकते हैं। पंजीकरण पूरा होने पर आप प्राप्त जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे अपने पास संभाल कर रखें, और जब आपको बुलाया जाएगा बाकी सारे दस्तावेज़ों को, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसे सबमिट करने के लिए, तब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि जो छात्र पहले से ही किसी सरकारी या सहायता स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, स्थानांतरण कराना चाहते हैं, तो वो अपने वर्तमान स्कूल के माध्यम से ही उन्हें ये जो प्रक्रिया है इसे आगे बढ़ाना होगा। और इन विशेष स्कूलों में जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, सहायक तकनीक है, थेरेपी सपोर्ट्स है, और बच्चों के लिए एक अनुकूलित जो शिक्षा का वातावरण है उसे उपलब्ध कराया जाता है। तो इसीलिए ये जो स्कूल्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। 12 सरकारी स्कूल जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए ये स्कूल्स एक बहुत बड़ी देन है और एक बहुत बड़ी पहल है, ताकि उनके जीवन को हम आगे बढ़ा सकें, उनका एम्पावरमेंट कर सकें, ताकि वो भी आगे चलकर वो सभी पा सकें जिसका सपना वो अभी से देख रहे हैं, ताकि किसी पर निर्भर ना रहें और अपनी जो एम्पावरमेंट है उसे खुद कर सकें, इतने सक्षम हो सकें कि अपने जीवन

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, मैं हूं आपके साथ दीपांशी। और अभी हम बात कर रहे थे स्पेशल स्कूल्स के बारे में, उसी से जुड़ी एक और खबर है, स्कूल से जुड़ी एक और खबर है। नौवीं में जो फेल छात्र हैं उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा। वेल, अगर इस खबर की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने नौवीं कक्षा में बार बार असफल होने वाले छात्रों के स्कूल छोड़ने की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। जी हाँ, शिक्षा निदेशालय ने ऐसे छात्रों को और उनके अभिभावकों को काउंसलिंग देने के निर्देश जारी किए हैं और ये भी कहा है कि स्कूल्स उनकी काउंसलिंग करें ताकि उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। वेल, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था की काफ़ी बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। इसमें क्या होता है कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र जब इस कक्षा में, नौवीं कक्षा में असफल हो जाते हैं तो उसके बाद वो कई बार पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसी के चलते दिल्ली सरकार एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है जिसका उद्देश्य ये जो फेल होने वाले छात्र हैं उनको शिक्षा व्यवस्था से बाहर होने से रोकना है। तो इसके तहत जो दिल्ली शिक्षा निदेशालय है उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को ये निर्देश जारी कर कहा है कि नौवीं कक्षा में एक से अधिक बार असफल होने वाले जितने भी छात्र हैं, यदि उन छात्रों का कंपार्टमेंट आया है तो उनकी पहचान की जाए। इसके बाद इन छात्रों और उनके अभिभावकों को व्यक्तिगत काउंसलिंग दी जाएगी। जी हाँ, 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग दी जाएगी ताकि उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा सके और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति जो है, जो काफ़ी समय से बढ़ती जा रही है, उससे रोका जा सके। अब अगर इसके कारणों की बात की जाए तो इसके पीछे आर्थिक दबाव हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी हो सकती है कि बार बार असफल हो रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, पढ़ाई में रुचि ना होना हो सकता है। और कई बार यहाँ पर जो परिवार है उसका सहयोग भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, उसके अभाव में भी जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और नौवीं के बाद आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के कई जो कारण हैं वो हो सकते हैं। तो विभाग का ये कहना है और बिल्कुल मानना है कि यदि समय रहते उन छात्रों को और उनके परिवारों के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप किया जाए, संवाद स्थापित किया जाए, तो दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जा सकता है। और इन निर्देशों में स्कूलों को ये भी कहा गया है कि उनसे बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और वहाँ पर किसी तरह से क्रिटिसाइज करने की बजाय उनकी काउंसलिंग करनी है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें।

और इसी के साथ समय आपसे इजाजत देने का जाना इसलिए क्योंकि एक बार फिर से मिलने आना है, तो मैं आपसे फिर मिलूंगी यहीं गुनगुनाते हुए आकाशवाणी एफएम रेनबो की इन्हीं गलियों में। और अब आपके साथ जुड़ेंगे वीर दमन सिंह जो लेकर आएंगे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, तो उनके मसाले भरे मैसेजेस के साथ रेडी रहिएगा इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, और वीकेंड के बाद हैव अ ग्रेट वीक अहेड। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना

पांच जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। कहते हैं कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जी हाँ, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और आपने पहचान तो लिया ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त आरजे वीर दमन। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में 102.6 पर, दिल से दिल तक।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है तो मैं उनको बता दूं कि मैं हूं आपके साथ।

आपका दोस्त पीट दमन। और आज का जो टॉपिक लिया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हमारी सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और यूं कहें कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जिनकी वजह से हम हैं, वो हैं हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, कि क्या आपको अभी भी उस टीचर का नाम याद है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। ये ऐसा मैं इसलिए आज ये टॉपिक ले आया दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, तो उस जो न्यूज़ में था कि एक यूं कहें कि स्टूडेंट ने, जो उनका कभी स्टूडेंट रहा होगा, टीचर को उसने एक गाड़ी गिफ्ट में दी। वो इसलिए दी क्योंकि जिस वक्त वो पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उस वक्त उसके पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे, तो उस टीचर ने उसकी हेल्प की थी। और आज जब वो उस लायक बन गया, तो उसने उस टीचर को आज गाड़ी गिफ्ट में दी। तो मैं यही सोच रहा था कि आज क्यों ना ये टॉपिक लिया जाए और अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी लिसनर से ये जानना चाहें कि क्या आज भी उनको उन टीचर का नाम याद है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल प्ले किया है जिसने आपकी ज़िंदगी पूरी बदल दी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको याद है, और उनका टीचर का नाम अगर आप बताएंगे तो और भी बेहतर होगा, बहुत मज़ा आएगा अगर वो सुन रहे होंगे। तो नंबर हमारा वही है, व्हाट्सएप नंबर 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने नाम, शहर के नाम के साथ लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और फिलहाल आपके लिए ये प्यारा सा सॉन्ग आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, दिल से दिल तक।

0: चकरक चीचाचो चकलो रम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुक बुकुरे टुक बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़दुम चकड़दुम चिकी चक चो
1: Shh.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और आज का टॉपिक है कि क्या आपको आज भी उस टीचर का नाम याद है, अपने गुरु का, जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, जिसने आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया, तो उसका नाम और उसका जो है स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कोई भी हो सकता है, जिसने आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में पूरा परिवर्तन ला दिया, कोई भी हो सकता है। गुरु तो गुरु ही होता है ना, है ना? तो गुरु के ऊपर दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी, कि मिट्टी को जो मूरत बना दे, नादान को जो इंसान बना दे, ऐसे गुरु के चरणों में शत शत नमन, जो हर बच्चे की सोई किस्मत जगा दे। और मोहम्मद सरफराज आलम जी ने एक बहुत ही खूबसूरत शेर लिखकर भेजा है, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिख के भेजी हैं, कि बिछड़ कर भी तू मुझसे जुदा न हो सका, तू मेरी यादों की पनाह में आज भी है, भले ही मंजिल अलग हो गई है हमारी, मगर तेरा नाम मेरी दुआओं में आज भी है। क्या बात है, बहुत खूब आपने दिल से लिख कर भेजा है। तो मोहम्मद सरफराज आलम जोकीहट दर्शना बाजार या बिहार से लिखते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, वैसे आप भी बता सकते हैं कि ऐसा कोई टीचर है या ऐसा कोई गुरु है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन लाया, क्या उसका नाम आज भी आपको याद है? अगर है तो जल्दी से लिख कर भेजिए। 9868107070 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन मैसेजेस तो बहुत सारे आए हुए हैं दोस्त, तो मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू

कर देते हैं जो हमारे दोस्त हमें लिखकर भेज रहे हैं। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और आनंद विहार से किशन बंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं और लिखते हैं कि हमें प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारी भी अटेंडेंस लगवा दीजिए। तो आपकी भी अटेंडेंस लग गई और ये सद्दाम, डॉक्टर सद्दाम हुसैन लिख रहे हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और अगला मैसेज हमें भेजा है कस्बा गनौर यूपी से फारूक अली खान, लिखते हैं कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था उन टीचरों के नाम आज भी मुझे याद हैं, खुर्शीद सर, तनवीर सर, और जब हम अपनी कामयाबी की ओर देखते हैं तो बहुत याद आते हैं वो, आई होप। और अगर आप किसी टीचर से ऐसे मिले हैं तो वो भी लिख कर भेज सकते हैं कि जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उनसे कभी मिलने गए हैं स्कूल में, हालांकि मैं अभी मिलने गया था तो, लेकिन सब रिटायर हो चुके हैं, कहीं कोई नहीं मिला। तो ऐसा होता है कई बार, हमारे दिलों तमन्ना होती है, इच्छा होती है कि हम उनसे जाकर मिलें कि आज हम जो कुछ भी हैं आपकी बदौलत है। उगता हुआ दीन मान मिला है, कंठ को मधुरिम गान मिला है, हम मिलकर नमन करें सब उनको जिनसे हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है। प्रेमचंद प्रेमी जैत्रा धामपुर बिजनौर से लिखते हैं, बहुत खूब। तो दोस्त आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो लिखकर भेजिए अगर आपको भी अपने उन टीचर्स का, गुरु का नाम याद है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाकर किया है, तो आप लिखकर भेज सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक खूबसूरत गीत और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और आज का टॉपिक है कि क्या आपको अभी भी उस टीचर का नाम याद है, क्या आपको अभी भी उस टीचर का नाम याद है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। तो अगर नाम है, याद है, तो लिखकर भेजिए उनका नाम, और अपना नाम भी लिख के भेजिएगा, अपने शहर का नाम भी लिख कर भेजिएगा। नंबर वही है जनाब, 9868107070। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। तो जनाब, आपकी भी जिंदगी में अगर किसी टीचर ने कुछ बदलाव किया है तो लिखकर भेजिए ना, इंतज़ार काहे का, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अफशा खानम, धामपुर से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से। वो भी कह रही हैं कि हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है जनाब। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से गुड इवनिंग कह रहे हैं, और हमारे जीवन में एक ऐसे आचार्य जी हैं जो गुरुकुल में थे, जिन्होंने हमारा सारा जीवन बदल दिया, और उनका नाम आज भी याद है, और उनका नाम है आशीष। क्या बात है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि अगर आशीष जी प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा। और सोनू बिजनौर से लिख रहे हैं कि बिल्कुल याद है, हमारे आदरणीय श्री चंद्रपाल जी टीचर हुआ करते थे, जो मुझे उन्होंने एक ही बात शिकायत की, जिंदगी में सब कुछ करना, एक ही बात उन्होंने सिखाई कि जिंदगी में सब कुछ करना पर किसी से उधारी मत लेना। वहाँ वह दिन और आज का है कि मेरे लिए बहुत कारगिल साबित हुआ है। तो आज तक आपने उधारी नहीं ली, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी के जो गुरु मंत्र देते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख दे के जाते हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में उतार लें। अंशु शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से, यूपी से लिख रही हैं, कैसे हैं वीरू जी? अरे हम तो बढ़िया हैं जनाब, और आप कैसे हैं? तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूंगी कि जब बात किसी ऐसे टीचर रहे हो तो जिनका नाम मुझे आज भी याद है, वो है नाइन्थ क्लास में एक टीचर हुआ करती थी सुनीता मैम, और प्लस टू में एक टीचर थी मोहिनी मैम, और जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, उन्हीं बहुत मोटिवेशन दिया हमें, जिस वजह से हमें लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, और आज भी बहुत मिस करते हैं अपनी टीचर्स को। तो बहुत अच्छी बात है अंशी, और टीचर्स का अगर नाम याद है और उन्होंने इतना मोटिवेट किया, सपोर्ट किया लाइफ में आगे बढ़ने की, हमें हौसला दिया, तो बहुत ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और आज भी मुझे उन सभी शिक्षकों के नाम याद हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की दिशा दी और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी। आदरणीय नासिर सर, आजीम सर, रकीब सर, दयानंद सर और साहिल सर।

मैं हृदय से आभारी हूँ। उनके मार्गदर्शन शिक्षा का योगदान मेरे जीवन में अमूल्य है। सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। मोहम्मद सरफराज आलम चौकीहाट दर्शना बाजार अरिया बिहार से लिखते हैं। और एक मैसेज हमें आया है जो भेजा है हमें अजीत पाल, सुरेश मास्टर जी, अनिल कुमार, विनीत मास्टर जी, त्यागी जी, संदीप, चेतन, प्रवीण, दीपक ने। और ये लिखते हैं कि हम फिटनेस, हमने एक ग्रुप बना रखा है और जिसके अंतर्गत हम फिटनेस के साथ साथ खेलों को भी बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण और सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर समाज के अंदर कैसे फिट रहना है और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और साथ में उसके ऊपर कार्य करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आपसे कईयों को प्रेरणा मिलती होगी। बहुत बढ़िया बात है। और आप यूं ही अच्छा अच्छा कार्य और इसी तरह के अच्छे अच्छे जो काम है करते रहिए ताकि पूरे समाज को एक अच्छा मैसेज जाए। और हिमाचल प्रदेश से राघव का मैसेज आया है। लिखते हैं कि जब मैं 7वीं क्लास में था तो हमारे सोशल साइंस के टीचर ने मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन दी और हेल्प किया आइडेंटिटी मेरे एम्स में कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। मैं लाइफ बाय डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सोशल सर्विस एंड इट्स डेवलपमेंट, उन्होंने एक लाइफ का एक उद्देश्य दिया और शायद उसी का रिजल्ट था कि आज कॉलेज में मैं भी अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूं और शायद यही मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टर्न था और जिसकी वजह से मेरे टीचर्स, मैं उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये सब अचीव कर पाया और बहुत अच्छी बात है। और उन टीचर का नाम लेना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि विपुल सर जो मेरे बहुत हृदय के बहुत करीब हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है राघव और आज भी आप उन टीचर्स को याद करते हैं दिल से और उनके लिए रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों, तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं, जल्दी से मोबाइल उठाइए ना, 9868107070 हमारा नंबर है, टाइप कीजिए और लिखकर भेजिए उन टीचर्स का नाम जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव लेकर आए और उन टीचर्स को आज आप यहां पर उनको हृदय से धन्यवाद कह सकते हैं। ये मौका है तो मौका जाने मत दीजिए। फिलहाल आपके लिए ये प्यारा सा सॉन्ग और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। चला

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर, और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और आज का जो टॉपिक है, दो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि क्या आपको आज भी उस टीचर का नाम याद है जिसने आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाया, पॉजिटिव परिवर्तन किया और जिसने आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जी हाँ, उनका नाम अगर याद है तो लिखकर भेजिए अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ। 9868107070 हमारा नंबर है। आज इतने हम व्यस्त हैं, इतने करियर ओरिएंटेड हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें आज तक कभी हमने अपने पुराने स्कूल में नहीं जाकर देखा होगा, कॉलेज में नहीं जाकर देखा होगा, उन पुराने दोस्तों से नहीं मिले होंगे। तो मैं आज आपसे ही जानना चाहता हूं कि क्या आपको आज भी उन टीचर्स का नाम याद

है बचपन के, क्लास वन के, क्लास टू जब क्लास थर्ड में पढ़ते थे, या क्लास टेंथ में जब थे, बोर्ड का पहला एग्जाम दिया था, तब उन टीचर्स के नाम याद हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया, जिन्होंने आपको कुछ बताया, जिंदगी का गुरु का गुरु मंत्र दिया, तो मैं वही जानना चाहता हूँ। अनिल शर्मा सरिता भैया दिल्ली से लिखते हैं कि हाँ, मुझे मेरे गुरु उम्र में छोटी पुरानी रेडियो एंकर कृति प्रकाश, जिन्होंने मुझे लेखन की शिक्षा दी, नींव और कई बार आगे लेखन को सुंदर बनाने में टिप्स दिए थे, तो मैं हमेशा आदर से याद रखता हूँ। यदि वह नहीं मिलती तो 2020 में मैं मुझे काव्य लेखन का ज्ञान नहीं मिलता, जिनकी बदौलत मैं लेखन के कार्य में व्यस्त और स्वस्थ इस बढ़ती उम्र में अनुभव करता हूँ। क्या बात है, और आपका जो जज्बा है उसको सलाम करते हैं सर, कि आज भी आप लेखन करते हैं और आपने मतलब अभी भी आपने उस काम को जारी रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। महिदा सुल्ताना लिखते हैं जम्मू कश्मीर से, राजौरी से। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं हमारी लाइफ में, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। मेरी टीचर्स तो मेरी फ्रेंड थी, जिसने मुझे टीचर्स से भी अच्छा समझाया लाइफ क्या होती है, ये कैसे गुजारते हैं। क्या बात है, और अंगद यादव लिखते हैं शिवरामपुर निजामाबाद आजमगढ़ यूपी से। टीचर तो नहीं, पर हम घर के काम सीखे दूसरे प्रदेश गए थे, तो वहां हमें जिन्होंने काम सिखाया वो सही मायने में हमारी जिंदगी बदल दी। उनका नाम है जनार्दन यादव, जो जौनपुर जिले के हैं। मैं कुछ लोगों के नाम शामिल करना चाहता हूँ, सृष्टि, साक्षी, श्रेया, देवांश, अर्पित, अनन्या, रिंका, मम्मी, शांति देवी, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आप सभी को हमारा तय दिल से धन्यवाद और आप सभी का स्वागत है। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं कि मुझे मेरे टीचर का नाम याद है, जिनका नाम है पीटी माने सर, और माने सर ने मेरी 12वीं कक्षा पढ़ाई में बहुत हेल्प की थी, और मुझे वो इंग्लिश और हिस्ट्री विषय पढ़ाते थे, और मेरी हैंडराइटिंग स्पीड बहुत कम थी, इस पर बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया। पढ़ाई के साथ मैं लेखन पर भी ध्यान देने को कहा था, इस वजह से मुझे 12वीं की फाइनल परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिले। क्या बात है, बहुत खूब। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, वीरू बख्शी जी ने, लिख रही हैं और आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और लिख रही हैं कि अच्छा है कि मेरी भी तकदीर शशि मैडम ने बदल दी, मैं किसी आगे बोल नहीं सकती थी और ना कुछ सुनना सकती थी, उन्होंने ही मुझे शिक्षा दी, कहा कराते लिखा है इंग्लिश में, जब हम टाइप करते हैं ना तो शब्दों का हेर फेर हो ही जाता है दोस्त। और लिखते हैं कि करत अभ्यास के जन्मत हुए सुजान, रोज अभ्यास करने से ही एक दिन आप बहुत अच्छे सबके सामने बोलने लग जाएंगे। क्या बात है, बहुत खूब। मैं स्वयं एक टीचर हूं, मुझे यहां तक पहुंचने में श्रेय में मेरे चचेरे भाई को देना चाहूंगा, जिसने मुझे बचपन से ही मुफ्त में पढ़ाया, मैं हमेशा प्रेरित करते रहे। उनका व्याकरण और अंग्रेजी का पकड़ बहुत अच्छी है, उनका नाम है जयप्रकाश मंडल। मैं उनके साथ साथ सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। रंजीत कुमार मंडल अरिया बिहार से लिखते हैं, सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से लिख रही हैं। वो कह रही हैं कि वीर दमन जी, सबसे बड़े शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, और टीचर्स भी स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं। बहुत खूब, आपने सही फरमाया। और मेरठ से संजय कह रहे हैं कि अपने दरबार में हमारी भी हाजिरी लगा दीजिए। अरे हमारा कहाँ दरबार है, आपकी महफिल है, आपकी महफिल पर हम आते हैं, तो आपकी महफिल में आपकी हाजिरी लगा रहे हैं जी। और टॉपिक की बात अच्छा है, मुझे बचपन के तो नहीं लेकिन कक्षा 10 और 12वीं के टीचर याद हैं, तो उनका नाम बता दीजिए, उनके नाम भी भेज सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रदीप सोनार डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से लिखते हैं, माय स्कूल सरोज कॉन्वेंट स्कूल टीकमगढ़, श्रीमती आशा सोनी जी, माय स्कूल टीचर। जोया मेलबर्न से लिखती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। मिसेस सरिता मिलर, इंग्लिश टीचर फ्रॉम 9th to 12th क्लास ऑफ फ्रांसिस। ओके, जो उनकी 9th और 10th क्लास की टीचर थी सरिता मिलर,
और शक्ति सिंह हिस्ट्री टीचर जो उनके कॉलेज टाइम की थी, दिस टीचर मेड मी रीच टू द फर्स्ट डिवीजन इन दीज सब्जेक्ट्स, आई लव एंड रिस्पेक्ट देम। क्या बात है। और अगला मैसेज हमें भेजा है राजेश भल्ला जी ने, एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से। लिखते हैं जी, जब हम क्लास में पढ़ते थे तब हिंदी के अध्यापक ने हिंदी की छोटी छोटी गलतियों के बारे में ध्यान दिलाया, हिंदी में सुधार किया। उनका नाम था श्याम बिहारी गुप्त, उनको नमन करता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। और आपके दोस्तों इतने मैसेज आए हैं कि मैं क्या कहूँ। भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू से डेट आई रिमेंबर द नेम ऑफ सम ऑफ टीचर हु रियली सपोर्ट मी। फर्स्ट टीचर जो उनकी थी मुकेश सर थे। और लिखते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं पा सकता, एंड उन्होंने ही मेरे लिए एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कंप्यूटर में, और उन्होंने ही मेरे को सिखाया था। जो हमारे सेकंड टीचर थी ऋचा मैडम, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, और वो मेरे रोल मॉडल बनी लाइफ में, और उन्होंने ही मेरे को सब कुछ सिखाया। क्या बात है। मुकेश जो उनके टीचर थे, और ऋचा मैम अगर ये सुन रही होंगी तो ये भुवनेश ने मैसेज भेजा है अशोक विहार से। और अगला मैसेज हमें भेजा प्रदीप सलूजा जी ने जनकपुरी न्यू दिल्ली से। लिखते हैं, नाम तो याद नहीं, और साथ में वो मेरे सर जी हैं मेरी शॉप पर अपनी, जो ये वैसे टेलर हैं और कहते हैं कि वाइफ का सूट सिलवाने भी आते हैं। सर जी का नाम है श्री आर आर सिंह, प्रदीप सलूजा जी। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। क्या बात है जी। और प्रदीप सलूजा जी का तहे दिल से धन्यवाद। और ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं हमारे साथ। और अगला मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद कासिम कीरतपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से। और ये लिखते हैं कि आप कैसे हैं, मैं बढ़िया हूँ। और लिखते हैं, गम की बदली में चमकता सितारा है, आज अपना हो ना हो पर कल हमारा है। गर्दिश में हार कर बैठने वाले मुझको खबर किया, अपने पैरों में भी छाले पर नहीं रुकते कि मंजिल ने पुकारा है, आज अपना हो ना हो पर कल हमारा है। क्या बात है। और अगला मैसेज लेने से पहले कुछ मैसेजेस आपके आ रहे हैं, लेकिन समय भी आगे आगे दौड़ रहा है, तो क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक ले लिया जाए, उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा।

और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, ये भेजा है हमें वी वगल ने। लिखते हैं, सर नमस्ते, पहले गुरु माता पिता हैं लेकिन अपने टीचर्स की बात तो हमारे गांव के पास ही हैं, आज भी आ रहे हैं। 1992 से 2026 टोटल 34 ईयर्स हो गए हैं जो मैंने टाइपिंग की है, और ना इसकी वजह से ही नाम के कर्शन भाई, गगल सुरेश भाई भुज कच्छ से 2003 से मेरे गांव अटल नगर में, कहते हैं कि करता हूं, उसकी वजह से ही आज मैं मोबाइल भी और मार्केट में भी कभी कभी दिक्कत नहीं होती है। क्या बात है, आपका भी मैसेज शामिल कर लिया। और श्याम सुंदर जी गोवा से हमारे साथ लिख रहे हैं कि हम भी शामिल है जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और प्रेमचंद प्रेमी जी लिखते हैं कि दो आदरणीय टीचर रहे हैं जिनको आज भी याद करते हैं, उन्होंने पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की थी, मेरी कुटाई भी बहुत की थी। एक हमारे गणित के टीचर थे आदरणीय मोहम्मद तहसीन जी और आर के कौशिक जी, और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। क्या बात है, कंसे मोहम्मद फुरकान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। और डॉक्टर देवेंद्र जो कि प्रोफेसर हैं HS प्रसाद और प्रो जैन वीरेंद्र शर्मा लिख रहे हैं कि उनके वीरेंद्र शर्मा जी की जो है उन्होंने काफ़ी हेल्प की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये डॉक्टर देवेंद्र जी ने मैसेज भेजा है, प्रोफेसर HS प्रसाद और प्रोफेसर जैन और वीरेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद किया है। और कृष्ण कुमार लिखते हैं, साहू बावन जो लिख रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, और लिखते हैं कि चतुर्वेदी सर और मास्टर हुआ करते थे, वे रोज़ पढ़ाते थे और पिटाई भी बहुत करते थे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत उनका धन्यवाद करता हूँ। और मिसेज धर्म भाटिया रोहतक से कहती हैं कि मैं पांचवी क्लास की टीचर श्रीमती बलवंत कौर, हाई स्कूल की प्रिंसिपल श्री सरला पुरी और इंग्लिश टीचर श्री हरमेल कौर, सभी का मिस करती हूँ और सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या बात है। और आदिल कुमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली लिखते हैं कि हमारे आदरणीय मास्टर जी का नाम था कालीचरण सिंह, वो उनको मतलब ये था कि उन्होंने हमें सिखाया था कि कभी झूठ मत बोलिए। क्या बात है, बहुत खूब। और हमारे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं दोस्त, और ये आलोक पवार मिस मिनी लिखते हैं देहरादून से, गुरु का हर किसी के जीवन में अहम रोल होता है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ, मोहम्मद आरिफ कमर आलम किशनपुर मुजफ्फरनगर यूपी से, कहते हैं कि कई अध्यापक हैं लेकिन मैं किन किन का नाम लेना चाहूँ, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। गंज डुंडवारा से शामसुल कमर्स राही लिखते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है मास्टर जी बनवारी लाल जी, शमीम जी, गुलाम अब्बास और ए के आदिल, ये चंद सितारे हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी रोशन कर दी। क्या बात है। और भी कई मैसेजेस आए हुए हैं, और किन्होंने हमें मैसेज किया है, और भी हमारे साथ मैसेज हैं। विवेक पीलीभीत से उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि मेरी टीचर का नाम है विनीता सिंह था, आठवीं क्लास में, और सोशल साइंस की टीचर थी, और जिन्होंने हमें मार्गदर्शन हमें दिखाया और आगे हम जिंदगी में बढ़ने की प्रेरणा मिली। रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं कि उनके जो टीचर ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे तब, इंग्लिश टीचर ने मुझे कहते थे कि मेहनत और ईमानदारी से पढ़ना और व्यापार में भी ईमानदारी रखना, उनका नाम था डॉक्टर KC शर्मा। अरे क्या बात है, इतने टीचर्स के आप आभारी हैं, और सच में टीचर्स हमारी ज़िंदगी में ना एक अहम रोल अदा करते हैं। गुड्डू धाकड़ लिखते हैं जिला मध्य प्रदेश उज्जैन जिले से, बेड़वान से, मेरे टीचर थे हेमंत जी, मेरी बहुत मदद की उन्होंने, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। क्या बात है। और चंद्रशेखर मिश्राम गोंदिया महाराष्ट्र से लिखते हैं कि मेरे फुटबॉल टीचर कोच थे इकबाल सर, जिन्होंने मुझे हमेशा भरोसा किया कि तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। और अगला मैसेज हमें भेजा है निम्रम भट्ट, और ये जट नागौर राजस्थान से, मैंने मेरी नादानियों की वजह से स्कूल छोड़ दिया था, मेरे गुरु ने मुझे समझाया, फिर मैं नहीं पढ़ा और उसका बाद में आज तक पछतावा हो रहा है, फिर मैंने ठाना कि मेरे बच्चों को पढ़ाना है। मेरी बड़ी बेटी कल राजस्थान थर्ड टीचर की रिजल्ट आया है, उसमें टीचर बन गई, तो बहुत बहुत बधाई आपको। और अगला मैसेज हमें भेजा है
कृष्णचंद श्रीवास्तव धामपुर से लिखते हैं कि मैं अभी अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं मैं, क्योंकि गोरख

मैं हूँ, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्नों ने, ये मैसेज भेजा है कृष्ण कुमार मिश्रा, मैं दिल्ली में रहता हूँ जी, मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाया, उनका नाम है मनीष सिंह पूना वाला, उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि आज मैं हिंदी का शिक्षक हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। और अनिल शर्मा लिखते हैं कि मुझे प्राइमरी क्लास गणित के अध्यापक मुन्ना लाल याद हैं, जो इस वक्त तो नहीं है, जिन्होंने उंगलियों पर गिन्ना और पहाड़े सिखाए थे। हाँ, पहाड़े जिन्हें हम टेबल्स भी कहते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल। और सच में ये जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत अहम रोल अदा करते हैं। माता पिता तो होते ही हैं, लेकिन टीचर्स जो होते हैं ना, टीचर्स हमें ज़िंदगी में सिखाते हैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी जो कमियां हैं उनको कैसे सुधारना है। सच में दोस्त, कभी भी कोई पुराना टीचर्स मिले ना, तो उनको दिल से धन्यवाद ज़रूर कहिएगा। और फिर आपसे मुलाकात होगी 8 बजे। अब अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाज़त। तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप भी हमारे टीचर्स हैं, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। 8 बजे आपसे मिलेंगे, 8:05 पर म्यूजिक मस्ती में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए

पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा?
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपडेट।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: Well, 7:45 p.m. by the studio clock. Well, taking those requests, and as Gurpreet requested for Daft Punk, here we go with Aerodynamics instead of Get Lucky, and back-to-back tracks, and the next one would be Rock You Like a Hurricane by the Scorpions, requested by Sriram. Here we go, two back-to-back tracks.

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त वीर दमन। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती चल रहा है और आज तो वैसे भी वीकेंड है दोस्तों, तो वीकेंड का पूरा मजा लीजिए, जिंदगी का जश्न मनाइए, खो जाइए और हमारे साथ आ जाइए कहां 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। तो आइए एक बार हमारे साथ फिर जुड़ जाइए डांस फ्लोर पर।
1: आह बेलिसिमो,
2: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त राजेश भल्ला, एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से, और हमारे साथ प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से जुड़े हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जोया ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। प्रदीप सलूजा जनकपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है।

0: उस खाए अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक, और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर आ जाइए हमारे साथ डांस फ्लोर पर।
3: जगाती है कयामत कोई

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती और मैं हूं आपके साथ आपका मस्त मलंग आरजे वीर तमन।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और दोस्तों, अगला प्रोग्राम जो आने वाला है वो है आपकी याद आती रही, और आपके साथ रहेंगे विकास राय। और उसके बाद रात को 11:05 पर फिर आपके साथ जुड़ेंगे विकास राय रंगे महफिल में।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 से 5 तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और दोस्तों, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, और वैसे भी वीकेंड है और वीकेंड में तो वैसे ही बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, क्योंकि पूरे एक हफ्ते के बाद एक दिन रिलैक्स करने का मिलता है। तो वैसे भी सोचते हैं ना कि आज तो आराम करेंगे, सुबह आराम से उठेंगे और कहीं जाने का प्रोग्राम हो तो वो भी हो सकता है। तो वीकेंड को खूब इंजॉय कीजिए, ज़िंदगी का जश्न मनाइए, खो जाइए और अपने स्ट्रेस को एक तरफ कर दीजिए और आ जाइए।

और फुल ऑफ एनर्जी है ना, और वीकेंड है, अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। और अगला शो विकास राय लेकर आ रहे हैं, आपकी याद आती रही। अब अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। लेकिन चलते चलते आपको एक ज्ञान की बात बता देता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब आपके फोन की बैटरी 1% हो, जी हाँ 1% हो, और आप दौड़कर चार्जर सही समय पर लगा दें। ये सच्चा सुख है। खैर, हम ज्ञान तो देते ही रहते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। अब आपसे मैं वीर धवन लेता हूं इजाजत, और हमेशा अपने आप को बेस्ट समझिए। लाइफ में कुछ भी हो, स्ट्रेस हो, टेंशन भूल जाइए। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक के लिए बाय।

नमस्कार सभी दोस्तों को, प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं आपकी याद आती रही। और मैं जानता हूं तमाम दोस्त जो मुझे आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से सुन रहे हैं इस वक्त, वो कह रहे होंगे कि बहुत दिनों बाद मैं इस प्रोग्राम को लेकर आया हूं आपके लिए। बिल्कुल, बहुत दिनों बाद। और मैं कौन? मैं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम आपकी याद आती रही। याद वो नहीं जो अकेले में आए, याद वो है जो महफिल में आए और अकेला कर जाए। यादों और जज्बातों की बातें जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे जाना ही पड़ता है, लौटना पड़ता है उस दौर में, उस पल में जो कभी हमने खूब जिया अपने दोस्तों के साथ, अपने उस खास दोस्त के साथ। और कई बार हमारी आंखें भी नम हो जाती है उन यादों को याद करके, लेकिन कई बार वो यादें हमारी ताकत भी बनती है, हमें मजबूती भी देती है। बस याद करना है उन्हें शिद्दत से।

क्यों सरकार कहीं ना कहीं चले गए ना अपनी उन यादों में जहां बहुत सुकून मिलता है। कभी लेटे हुए टहलते हुए कैसे भी किसी भी तरह अगर आप याद करते हैं अपने उन बातों को जज्बातों को तो कहीं थोड़ी सी आंखें नम भी हो जाती हैं। दिन हमारे कुछ भी हो सकते हैं, शायद स्कूल के दिन हो, कॉलेज के दिन हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां हम पहले रहते थे फिर हम वहां नहीं रहते, हम चले गए, हमने शिफ्ट किया, कहीं भी कोई भी वजह हो सकती है, कोई पुराना ऑफिस हो। मतलब कहने का यह है कि जिस भी तरीके से कोई पल हमने यादगार बनाया उन दिनों में, वो पल आगे जाकर कहीं ना कहीं एक हल्की सी, कहते हैं ना कि छेड़ते हैं हमें और कहते हैं कि हमें भूलना नहीं। और रिश्तों की बात करें तो कई बार जान पहचान वाले रिश्ते भी बहुत प्यारे होते हैं और कुछ रिश्ते जान पहचान के नहीं होते, यानी एक अजनबी भी हमारा बहुत प्यारा दोस्त बन सकता है। और जब वो बहुत प्यारा दोस्त बन जाए फिर वो अजनबी कहां से रहा, नहीं रहता ना। बिल्कुल। और इसी तरह जो हमारे यादें हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा शख्स, आपको कोई ऐसा इंसान जरूर याद आएगा अगर दिल से याद करेंगे। और कहेंगे कि न जाने कहां से वो हमारी जिंदगी में आया और रिश्ता ऐसा प्यार का बना, बहुत प्यारा। हालांकि उस वक्त शायद इतना एहसास नहीं था, लगता था कि हमेशा यही पल रहने वाला है और हम बस यूं ही सोचते थे कि ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। और बना कैसे ये भी कभी कभी खुद से पूछते थे कि हमारे बीच में ये अनजाना सा प्यारा सा रिश्ता कैसा है।

वेलकम टू द शो विथ फ्लास। आई एम अंशी विक्सर। शुक्रिया जी हमारे शो में शिरकत करने के लिए और इस महफिल में आने के लिए। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता ओखला संगम विहार दिल्ली से जुड़े हैं। और प्रेमचंद प्रेमी जी, क्या बात है, आपकी जो लाइन्स होती हैं बहुत, जो दिल से निकलती हैं बहुत ही हमेशा की तरह प्यारी होती है। और लिखा है आपने कि उम्र भर किसी की याद से इतना लड़े हैं, उम्र भर किसी की याद से इतना लड़े हैं हम कि तिनकों की तरह राह में बिखरे पड़े हैं। और तन्हाई के आलम की ये इंतहा है मेरे दोस्त के, अपनी ही महफिलों में अकेले खड़े हैं हम। क्या ये जो दिल की बातें होती है ना, बस इसकी जो तासीर होती है वो दिल से ही समझी जा सकती है। और एक प्यारा सा मैसेज आया है चेतन का, अपनी वाइफ ज्योति रानी जो कि पंचशील कॉलोनी में रहती है और बेटी का नाम उनका दिव्यापाल है। और कुछ रिश्तों में अनबन सी हो गई है, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर आप दोनों से कुछ कह

ना चाहूँगा और पूरे दिल से कहना चाहूँगा कि रिश्ते जो होते हैं ना, हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुसार पैदावार देती है। ये ज़रूर है कि उसमें गम और खुशी के मौसम जो होते हैं उनकी मार पड़ती रहती है, लेकिन ज़रूरी यह है कि बावजूद इसके यानी इस रिश्ते की जहाँ तक तो हो सके हिफाजत की जाए। धड़कनों को थाम लेती है ये दिल जो कि धड़कनों में तुम्हारा नाम लेती है।

0: आपकी याद आती रही का ये कार्यक्रम बिल्कुल बादस्तूर अभी चलता रहेगा। बहुत वक्त है हमारे पास इस पल को भी यादगार बनाने के लिए। लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
7: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही में। और आज मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स।

मेरा नाम नवाब है और मैं रोहिणी दिल्ली से जुड़ा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, जुड़े रहिएगा। फारूक अली खां, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा कस्बा गुन्नौर से लिखते हैं, हम भी आपको सुन रहे हैं, शुक्रिया जी। याद तेरी जब भी तन्हाई में आ जाती है, चांदनी रात भी आंखों को रुला जाती है, सारा शहर तो सो जाता है चैन से, लेकिन मेरी पलकों पे तेरी याद जगा जाती है। सारा शहर सो गया, रात की चादर ओढ़े, चांद भी थक के कहीं बादलों में जा छिपा। तेरी यादों ने मगर नींद चुरा ली मेरी, और आंखों से कोई दर्द का दरिया निकला। ये खूबसूरत यादों भरी लाइन जो है प्यारी सी भेजी है मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हर दर्शना बाजार, जिला अररिया, बिहार। किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़े हैं हमारे साथ। अपनी पसंद का कोई भी प्यार भरा गीत सुना दीजिए। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, तमाम गीत मेरी पसंद के तो होते ही हैं, और अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि वो आपको भी पसंद आ रहे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ सरकार, हाँ जी, एक महीने बाद आपने मेरी आवाज़ सुनी और मेरी भी मुलाकात आपसे हुई है। प्रदीप सलूजा जी, जनकपुरी, न्यू दिल्ली से। तो बात कर रहे थे गुजरे पल की और अपने कुछ खास रिश्तों की, तो तारीफ तो अपने अपने तरीके से हम सभी अपने दोस्तों की करते ही हैं, और जब कोई खास रिश्ता हो किसी के साथ तो तारीफ करने का भी अंदाज बहुत ही प्यारा हो जाता है। शब्द अपने अपने होते हैं, अल्फाज अपने अपने होते हैं, लेकिन जज्बात एक ही होते हैं। अल्फाज और जज्बात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वही है कि जो हमारे दिल की बात है, जो कहना चाहते हैं खूबसूरती तारीफ में, तो अपने अंदाज में ही कहते हैं। और मैं कहूं कि किसी के लिए क्या तारीफ करूं, तो इतना ही कह सकता हूं कि कहां से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, दुनिया देखे अपने चांद को, मुझे बस तू ही दिखाई दे। धड़कनों को थाम लेती है तेरी ये सादगी, गोरे बदन पर ये नजाकत कमाल की है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है

जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी

का काम पूरा हो गया है। वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही। हमारे एक दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि सर वफा के बदले वफा क्यों नहीं मिलती, क्या यही प्यार है? सतपाल वर्मा गितरबहा पंजाब से। तो यही कहूँगा सरकार की, सिर्फ पाने का नाम प्यार नहीं होता, प्यार है तो खोना भी होता है। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। सुनील कुशवाहा दिलखुश कुशवाहा बीकापुर उन्नाव से, और लिखते हैं, तेरे बिना जीना मुश्किल सा लगता है, हर पल तुझसे मिलने का दिल करता है। तू ही है ख्वाब, तू ही है हकीकत मेरी, तेरे बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। राधे राधे जी, राधे राधे सरकार, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर चयन प्रजापति दिल्ली भवाना से। मास्टर राधेश्याम शाकिया कासगंज से, मैं बहुत अच्छा हूँ सरकार, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा है और नाइस प्रेजेंटेशन, शुक्रिया सरकार, सब आपके लिए। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से लिखती हैं, दिल्ली में दिल में हजारों दर्द छुपाए बैठे हैं, लोग समझते हैं हम मुस्कुराए बैठे हैं, कौन समझेगा इस खामोशी की वजह, हम अपने ही जख्मों को दिल से लगाए बैठे हैं। जिंदगी लहर थी आप साहिल हुए, ना जाने कैसे हम आपकी दोस्ती के काबिल हुए, ना भूलेंगे उस हंसी पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। दोस्त आपकी इस बात पर तो यही कहना चाहूंगा, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है दोस्त, चलते रहिए जनाब।

और दोस्तों धीरे धीरे पल उस मोड़ पर आ गया है, तकरीबन अभी वक्त है कि मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन उससे पहले अभी जो पल है उसे यादगार बनाएंगे। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, प्लीज पास ऑन माय मैसेज टू आकाश, लव यू, थैंकफुल टू यू माय डियर। और बहुत अच्छा मैसेज दिया अपने दोस्त के लिए तुम्पा ने, उम्मीद करूंगा आपके दोस्त हैं जरूर आपको सुन रहे होंगे। संजय धमन गुवाहाटी से सुन रहा हूँ आपको और अपने दोस्तों के साथ हूँ, सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। बात हम जब करते हैं यादों की, तो तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, पास्ट में जो बीती हैं, तो कई चीज़ें अपने अपने हिस्से की सबको याद आती है। तो ऐसा ही एक किस्सा होता है या हिस्सा होता है कह सकते हैं, जब हम किसी दोस्त का इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार इसलिए कि भाई मिलना होगा तो फिर बातें होंगी, और बातें होंगी तो चाहे शिकायत हो, शिकवे हो, पर उसमें भी मिठास होगी।

कुछ दोस्तों के नाम जरूर ले लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। राजेश भल्ला जी एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से जुड़े हैं हमारे साथ और प्लेलिस्ट कहते हैं अच्छी लगी है, तो मैं बिल्कुल इस बात के लिए हूं कि भाई हम जो मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाती है, सार्थक होती है, मनोरंजक है और सुकून देने वाली है प्लेलिस्ट आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करूंगा रात 11 बजे जब मुलाकात होगी रंगे महफिल के प्रोग्राम में तो भी आप शिरकत करेंगे और आएंगे हमारी महफिल में, बनाएंगे फिर उस पल को भी यादगार।

आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा, वेरी नाइस था। सभी प्लेलिस्ट बहुत अच्छे थे। मैं नवलू वरक फ्रॉम मलपन गोवा से, रियली वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और यही कहना चाहूँगा कि जो मेहनत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, करते हैं आपके लिए, जब आप, आपको पसंद आता है प्रोग्राम, तो समझ लीजिए हमारी मेहनत वो कामयाब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए और तमाम दोस्तों के लिए। अब मैं अपने दिल की बात कहना चाहूँगा कि दिल तो चाहता है तुझसे मिलना, लेकिन फासलों की मजबूरी है। हम तो सदा तेरे साथ हैं, सिर्फ नजरों की दूरी है। और प्रोग्राम का आखिरी गाना आप सभी के लिए प्ले करूंगा। रात 11 बजे रंगे महफिल के प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी और 20 तारीख को भी दोबारा मुलाकात होगी। आपकी याद आती रही प्रोग्राम में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिम यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथूला मार्ग से यात्रा करेगा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। यह आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22वें ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: Well, time for a short break and we'll be back soon.
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
7: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों

0: स्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: Welcome back after the break, and we just came back from these couple of tracks that were played back to back. Yeah, Black Eyed Peas, Let's Get It Started, 50 Cent, AO Technology, and The Diner by Billie Eilish. And meanwhile, you've got some messages. Well, Mr. Premchand from Bijnor says, greetings to you and your team. I'm a regular listener of your wonderful program. Today, I would like to request a song by Lady Gaga. If possible, please play one of her popular songs. It would be a pleasure to hear it on your show. Thank you for entertaining us every day. Thank you so much, Mr. Premchandji, for tuning in and sending in the message. I shall definitely play a track by Lady Gaga. Meanwhile, we've got a pending track that's for Mr. M. Rajkumar from Trichy for requested for Guns N' Roses. And as well, we've got also Backstreet Boys and Pharrell Williams requested by Mr. Shyam Sundar. So those tracks will come right up after Eminem. And well, we've also got Michael Jackson once again, but maybe we'll play that a little later. As of now, Eminem, and then we'll quickly dive into those requests. And there's also a thought of the day that I'll share with you in a while. Here we go for the song first.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को

0: यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

के महफिल, और हमारी महफिल में कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही बहुत से साथी हमारे दोस्त शिरकत कर रहे हैं और आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं एक प्यारे से नज़्म के साथ, और कहना चाहूँगा इस बात पर कि बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा जब बहुत दिनों बाद हमें तू मिलेगा। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है इस प्रोग्राम के ज़रिए। हाँ बिल्कुल, तो इसी बात पर मुझे कुछ याद आया तो मैंने फरमाया, और आपके दिल की बात है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम रंगे महफिल।

हाँ जी सरकार, तो फिर मुलाकात तो हुई गई हमारी, और अब बात हो जाए, जज्बात हो जाए जो आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से लिखते हैं कि उजड़े शहर में उल्फते मकान ढूंढता हूँ, नामे वफा के गुमशुदा निशान ढूंढता हूँ, और नादा मैं भी हूँ कितना, तू देख मेरे यार, जो इन पत्थर की बस्तियों में आज भी एक इंसान ढूंढता हूँ, एक इंसान ढूंढता हूँ अपने निराले अंदाज के साथ हमेशा की तरह। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महफिल में बने रहने के लिए। मोहम्मद सरफराज आलम जोकिहार दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से लिखते हैं, सारा शहर था अंधेरों की पनाहों में, मगर मेरी पलकों पे तेरी याद का पहरा निकला, चांद भी हार गया रात की तन्हाई से, और आंखों से मेरे दर्द का दरिया निकला, याद की धूप ने हर जख्म चमकने ना दिया, वक्त ने लाख बुझाया मगर मुझे बुझने ना दिया, चांद हर रात मेरे घर की छतों तक आया, तेरा चेहरा मेरी आंखों से उतरने ना दिया। गहरी बात है दिल की, और यही कह सकता हूं कि जब दिल से अल्फाज निकलेंगे तो जज्बात जज्बात तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने अल्फाज अपने जज्बात हम तक पहुंचाने के लिए। और जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी न्यू दिल्ली से, बने रहिएगा महफिल में, अभी और भी बढ़िया अच्छे मीठे नगमे आपके लिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद

0: करती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का प्रोग्राम रंगे महफिल में। और आज के सफ़र में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, आपकी यादों के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से, और लिखा है आगे, यहाँ सबको मिले प्यार ये ज़रूरी तो नहीं, हो किस्मत पर इख्तियार ये ज़रूरी तो नहीं। जो कहते हैं साथ मरने की, जो खाते हैं साथ मरने की कस्में, हो साथ जीने की, जीने को तैयार हो ज़रूरी नहीं। हाँ, ये बात भी कह सकते हैं कि अपने अपने अल्फाज, अपने अपने जज्बात। तेरी यादों से निकलूं तो कैसे निकलूं, कह रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब। तेरी यादों से निकलूं तो कैसे निकलूं, वो जो गुजरे लम्हे याद आते हैं। बिल्कुल याद आएंगे तो फिर निकल कभी नहीं पाएंगे, और इसी को कहते हैं दिल का कहीं ना कहीं यादों में बस जाना, जो होता है हर एक इंसान के साथ कभी ना कभी

मैं नवलू वरक फ्रॉम मलपणा गोवा से संदेश भेज रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी प्लेलिस्ट, और एक गज़ल की फरमाइश की है दोस्त। वो गज़ल मेरी प्लेलिस्ट में तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो यकीनन आपको पसंद आएंगे। आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, नगमे दिल को बहुत सुकून दे रहे हैं। प्रेमचंद प्रेमी जी, बने रहिएगा, और भी बेहतरीन नगमे आपके लिए अभी आएंगे। कहते हैं कि अब और कितनों से दिल लगाओगे और यूं ही कितनों के दिल दुखाओगे, देखना किसी रोज किसी की खातिर तुम भी तरसते ही रह जाओगे। बेवफाई का आलम कुछ यूं दिल को छुआ या दिल को लगा, कि दिल से बस आवाज़ आती है, करते हैं हम दुआ उनके लिए, पर ना जाने क्यों निकलते शब्द कुछ और हैं। आप भी हो गए हमसे बेवफा, हमको यह एतबार ही नहीं होता, हम तो कोसते हैं अपने आप को ही, काश आपसे प्यार ही नहीं होता।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दिल की बातें कुछ आ रही है तो क्यों ना साझा कर ली जाए. थैंक यू सर, दिस इज़ वेरी नाइस गज़ल टच टू माई हार्ट. जो पंकज उदास वाली ना, मेरे भी बहुत क्लोज है, बहुत प्यारी गज़ल है वाकई में. एन्जॉय ये खूबसूरत गज़ल बाय पंकज उदास जी. प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से. जी बिल्कुल यही बात मैं अभी कह रहा था. खूबसूरत आवाज़ जो होती है और अंदाज़ वो कभी भी दिल से जुदा नहीं होते. और मैंने उनको इसीलिए आज डेडिकेट किया. हमारे बीच ना होकर भी हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे. नमस्कार जी, नाम छाया रानी, गांव नवली गाजीपुर उत्तर प्रदेश से. आपका कार्यक्रम हम 9 बजे से ही सुन रहे हैं. आपने 9 बजे भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए. चंद लाइन आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी. दिल ऐसे मुबतला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफ़ेद हो गई 20 साल में. मतलब कह नहीं सकता कि इतनी प्यारी सी लाइन जो है बहुत दिल से निकली है कह सकता हूँ. और जी ये तो मेरे दिल से निकल रही है जो आपने भी लिखा है. दिल से शुक्रिया आपका इतने बेहतरीन गाने सुनाने के लिए और बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए. और मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेरे साथ जब बने रहते हैं तो दिल से शुक्रिया भी निकलता है. और बस आप लोगों के बिना ये महफिल तो अधूरी रहेगी ना, तो आपका सबसे पहले दिल से शुक्रिया. तेरी जुदाई का गम उठा रहे हैं हम, हंसते चेहरों में भी आंसू छुपा रहे हैं हम. तेरे बिन सूना सूना है ये दिल का आशियां, रोज यादों के दिए फिर से जला रहे हैं हम. रात भर चांद भी तन्हा सा नजर आता है, अपनी तन्हाई को किससे बता रहे हैं हम. वो जो कहता था कभी साथ ना छोड़ूंगा तेरा, उसके वादों का जनाजा उठा रहे हैं हम. क्या बात है. जो कि है दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम जी. वो झील वो नदियां वो हवाएं, एक तरफ उसकी आंखें उसकी जुल्फें उसका चेहरा एक तरफ. वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ उसका सताना एक तरफ. क्या बात है. कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब. दिल के ऐसे जज्बात कभी कभी आप लोगों से जब मैं मुखातिब होता हूँ, जब इस प्रोग्राम में मिलता हूँ, तो कहते हैं ना, देखिए हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ होता है जी. और वो जो लफ्ज़ होते हैं ना, जो ये जो शब्द होते हैं हमारे, हमारे जज्बात को हमारे अंदाज में बयां करते हैं. चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, लव पे एक बात बड़ी देर बाद आई है. आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, और आज की रात बड़ी देर के बाद आई है.

सरकार जी तुसी नेक्स्ट फिर कदों एयर आओगे जी? प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी न्यू दिल्ली से 20 तारीख को मुलाकात होगी सरकार, बिल्कुल, और इसी प्रोग्राम के माध्यम से आपकी याद आती रही प्रोग्राम के माध्यम से। उफ क्या गीत सुनवा दिया, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, इस रात की तन्हाई को और भी खूबसूरत बना दिया। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, यही कोशिश करता हूँ जी, आपके दिलों को छूने की कोशिश करता हूँ, और जो वक्त बचा है इसे भी क्यों ना यादगार बनाया जाए।

आपके आने से हर वो दिन यादगार बन ही जाता है। आज भी दावत थी कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, जब भी जो दावत हो हमें याद ज़रूर कीजिएगा और समझिएगा हम आपके साथ ही हैं। और तकरीबन वक्त हो गया है आपसे विदा लूँ, मिलेंगे 20 तारीख को। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवार्ड गेफ्रे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, एल्प्स मैरीटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसो एडब्ले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सियोटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक

0: वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ओर से ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रहधर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच शुरू की गई। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत के दौरान मिले फीडबैक पर आधारित है, जिसमें दूर दराज और मुश्किल इलाकों में तेज और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर दिया गया था। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए डेब्यू करने वाले हर्ष दुबे और गुरनूर बड़ार ने 3-3 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 12:06 हो चुके हैं और अब शुरू होता है जीरो आर शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। तो ऐसे ही आप गानों के बीट्स पर झूमते रहिए और नॉनस्टॉप गानों का मजा लीजिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं जीरो आर शो, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक का मजा ले रहे हैं। ऐसे ही गाने सुनते रहिए और झूमते।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

या कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी। शरीफ हूँ मैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक जीरो आर शो में। टाइम हुआ है रात के 12:51 और फिर रात के 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, लेकिन तब तक ऐसे ही बॉलीवुड के हिट म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए और झूमते रहिए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यू ऑलरेडी नो बेबी, सोनू टुकराल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के

अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। कल बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे 1 जुलाई से पहले जमा किए जाने वाले सभी आवेदनों के लिए मौजूदा BLS इंटरनेशनल और SGIVS ग्लोबल केंद्रों का उपयोग जारी रखें और बदलाव से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप और आधी रात हो रही है यानी आधी रात के 1:06 हो रहे हैं। 14 जून रविवार की ये रात है और अब शुरू होता है सुहानी रात जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का आप मजा लेंगे हर रोज की तरह। तो ऐसे ही आप गानों को सुनते रहिए और बस अपनी गानों की दुनिया में खो जाइए।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर इस टाइम हुआ टाइम है रात के 1:29 और आप सुन रहे हैं सुहानी रात शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। ऐसे ही आप गानों का मजा लेते रहिए और झूमते रहिए। और अभी सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये बहुत ही प्यारा गाना।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर इस समय हुआ है रात्रि के 1:48 और सुहानी रात शो में आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप म्यूजिक। रात के 2 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा बिना रुके गानों का सिलसिला। ऐसे ही गाने सुनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि

अधिक प्रभाव न पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। ये टूर्नामेंट पूरे इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है और इसका फाइनल अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और आधी रात के 2:06 हुए हैं। आज 14 जून यानी संडे की रात है और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज, यानी इस पूरे घंटे आप सुनेंगे नॉनस्टॉप हिट बॉलीवुड के गाने। तो बस ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए और अपनी धुन में ऐसे ही झूमते रहिए और गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीश शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तथा तय केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन

ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के

घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। फीफा विश्व कप 2026 के तीसरे दिन सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स की भी श्री मोदी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी होटल नेग्रेस्को में उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। श्री मोदी ने इस स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि घर से हजारों मील दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की ही तरह मजबूत बना हुआ है। स्लोवाकिया में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने ब्रेस्टिलावा में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। असम के जोरहाट में कल सुबह वायुसेना के AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत की खबर है। विमान नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन समाप्त हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली और हविल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए मैचों में 16 में से 13 मुकाबले अपने नाम कर चुका है। शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 5 विकेट पर 161 रन बनाए। आयरलैंड की टीम 19 ओवर और 1 गेंद में 121 रन पर ही सिमट गई। शुक्रवार को ही प्रतियोगिता के पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रन से हराया। उधर फीफा विश्व कप के तीसरे दिन सैन फ्रांसिस्को बे एरिना स्टेडियम में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच ड्रॉ रहा। स्विट्जरलैंड कतर के खिलाफ 1 गोल से आगे था, लेकिन बाद में कतर ने बराबरी का गोल किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। कल ग्रुप सी में ब्राजील और मोरक्को का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे से होगा। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।